सुप्रभात। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58:40 हुए हैं। आप सबों का आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा हिंदी में समाचार।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों

0: और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयरना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का ये पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपुस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। बातें करेंगे झींगा पालन की। भारतवर्ष में पानी के झींगे 25 किस्में की पाई जाती है, जिसमें मात्र 10 प्रजातियां ही व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह मीठे पानी तथा हल्के लवणीय जलों दोनों तरह की परिवेशों में पाया जाता है। इसकी रोग विरोधी क्षमता खारे पानी के झींगों की अपेक्षा बेहतर होती है। यह 8 से 10 महीने में 70 ग्राम तक शारीरिक वजन प्राप्त कर सकता है। घरेलू एवं निर्यात बाजार में काफ़ी अच्छी मांग है इसकी। स्वादिष्ट होने के साथ ही झींगा एक पौष्टिक आहार भी है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 20-22% होती है। मीठे पानी में झींगे के पेट में दूसरा खंड पहले व तीसरे खंड पर चढ़ा हुआ होता है। शरीर लंबा एवं रंग हल्का नीला होता है। पैरों की दूसरी जोड़ी चिमटे समान होती है। नर की लंबाई मादा की सफाई से अधिक होती है। मीठे पानी के झींगों का जीवन चक्र 2 अवस्थाओं में पूरा आता होता है। पहली एस्क्यूरी अवस्था में और दूसरे मीठे पानी की अवस्था में। महाझींगा में 5-6 महीने में प्रजनन क्षमता हो जाती है। पूरे वर्ष में प्रजनन है, किंतु बारिश के आरंभ में प्रजनन क्षमता अधिक होती है। मोदा के केचुली के बाद 24 घंटे के भीतर नदी के मीठे पानी में अंडे अच्छे होने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में नर अपने शुक्राणु मादा के जनन छिद्र के पास जमा करता है, जिससे उत्पन्न होने वाली झींगा में लार्वा अच्छी गुणवत्ता वाली पाई जाती है। मछली एवं झींगों की फसल लेने के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस समय तापमान कम होता है तथा इस समय निकाली गई मछलियां और झींगे जल्दी खराब नहीं होती है। अंतिम फसली प्राप्त करने के लिए तालाब का पूरा पानी निकाल देना बेहतर होता है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपकी अपनी मछली एवं झींगों की पूरी पैदावार प्राप्त हो जाती है, और दूसरा यह कि तालाब की तली अनावतरित तो होने से अवांछित मछलियां एवं जीव जंतुओं का स्वतः उन्मूलन हो जाता है। सूर्य की रोशनी संपर्क में आकर तालाब की नित लिए मिट्टी ठीक हो जाती है। इस प्रकार आपका तालाब मछलियों एवं झींगों के अगले दौर के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तालाब का निर्माण कैसे करें? तालाब का आयताकार या वर्गाकार हो जिसका आकार 0.1 से 0.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के क्षमता वाला उपयुक्त होता है। इससे बड़ा तालाब में पानी एवं आहार पर नियंत्रण रखना कठिन होगा। तालाब की गहराई 1.5 मीटर से 2.00 मीटर तक होनी चाहिए। तालाब एक तरह गहरा होना चाहिए जिससे तैयार बड़े झींगों को पकड़ते समय जल निकासी के समय झींगे एक तरफ जमा हो जाए। बांध की ऊंचाई 2.50 मीटर से 5 मीटर और ऊपरी बांस की चौड़ाई 3 मीटर तक रखा जा सकता है। बांध की ढाल साधारणतः 1.5 से 2.1 तक रखा जा सकता है। तालाब के जल को सूखा कर उसकी जुताई कर देनी चाहिए। तत्पश्चात 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना का प्रयोग करते हुए गोबर, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट NP को मिला देना चाहिए। महाझींगा अंधकार एवं किसी छुपने की जगह को ज़्यादा पसंद करता है, जिसके लिए खराब टायर एवं खजूर, नारियल, ताड़ के पत्तों को तालाब में अच्छी संख्या में डाल देना चाहिए। इन पत्तों को 45 दिनों बाद बदल देना चाहिए। तालाब में 5 से 6 बीज प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से संचयन करना चाहिए। बीज छोड़ने के 2 माह पश्चात तालाब के जल को चूना और प्रत्येक पखवारे में 20-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल सकते हैं। ये झींगा पालन हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। किसान भाई अपना झींगा पालन कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जिला मत्स्य पदाधिकारी से मुख्य कार्यपाल पदाधिकारी पलामू से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं झींगा पालन के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरित।

बल तथा रूप के पुंज श्री राम और लक्ष्मण को तपस्वी वेश में वन में भटकते देख सुग्रीव को एक अव्यक्त भय हुआ। उन्होंने हनुमान को ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे मिलकर इस प्रकार वन में भटकने का कारण पूछने के लिए भेजा। श्री राम ने ब्राह्मण वेशधारी हनुमान को अपना परिचय देकर जानकी हरण की बात कही और फिर प्रश्नकर्ता का परिचय पूछा। प्रभु को पहचान कर हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा आज का चिंतन।
1: हमें जीवन में स्वाधीन होना चाहिए। एक मनुष्य के लिए पराधीनता अभिशाप की तरह होता है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं वे सपने में भी कभी सुखों का एहसास नहीं कर सकते हैं। जब व्यक्ति के पास सभी भोग विलासों और भौतिक सुखों के होने के बाद भी अगर वह स्वतंत्र नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए यह सब व्यर्थ होता है। पराधीनता एक मनुष्य के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। इस संसार में पराधीनता को पाप माना गया है और स्वाधीनता को पुण्य माना गया है। पराधीन व्यक्ति किसी मृत की तरह होते हैं। पराधीनता के लिए कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे स्वयं तो अक्षम होते ही हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं। भगवान केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, इस उक्ति का अर्थ होता है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता। सुख पराधीन और परावलंबी लोगों के लिए बना ही नहीं है। पराधीन एक तरह का अभिशाप होता है। मनुष्य तो बहुत ही दूर है, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। पराधीन व्यक्ति के साथ हमेशा शोषण किया जाता है। पराधीनता की कहानी किसी भी देश, जाति या व्यक्ति की हो, वह दुख की कहानी होती है। पराधीन व्यक्ति का स्वामी जैसा व्यवहार चाहे वैसा व्यवहार उसके साथ कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह कभी भी किसी के वश में या किसी के अधीन रहने को तैयार नहीं होता। एक स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उन स्वतंत्रता सेनानी का नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर कभी उसे पराधीन होना भी पड़ता है तो वो स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य, सभी को पराधीनता के कष्टों का पता होता है। जैसे एक पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसी तरह सोने के पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। सोने के पिंजरे में रहकर उसे व्यंजन पदार्थ

0: अच्छे नहीं लगते। वह तो स्वतंत्र रूप से पेड़ पर बैठकर फल फूल खाने से सुख का अनुभव करता है। उसे स्वतंत्रता में कड़वी निबोरी भी मीठी लगती है। पक्षी को सोने के पिंजरे में खाने को तो सारी सामग्री मिलती है, लेकिन वह स्वतंत्र होकर उड़ नहीं पाता है। मनुष्य की यह विडंबना होती है कि वह अपने ही कृत्यों के कारण पराधीनता के चक्र में फंस जाता है। अगर मनुष्य को स्वाधीनता को पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़े, तो वह पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पीछे हटना चाहिए। पराधीनता के समान अभिशाप कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पराधीनता एक व्यक्ति की हो सकती है, एक परिवार की हो सकती है, या फिर देश की हो सकती है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी, कभी भी, कहीं भी अपमान कर सकता है। प्रकृति का कण कण स्वतंत्र होता है। प्रकृति को अपनी स्वतंत्रता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। जब जब मनुष्य प्रकृति के स्वतंत्र स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करता है, तो प्रकृति उसे अच्छी सजा देती है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसका परिणाम प्रदूषण, भूकंप, भूक्षरण, बाढ़ें, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है। जब हम दो फूलों की तुलना करते हैं, एक तो उपवन में लगा होता है जो प्रकृति को सुंदरता और सुगंध प्रदान करता है, और दूसरा फूलदान में लगा होता है जो मुरझा जाता है। जो फूल उपवन में होता है खुशी से झूमता है, लेकिन जो फूलदान में लगता है वह केवल अपनी किस्मत पर रोता है। सर्कस के पशु पक्षी अगर बोल पाते तो उनसे हमें पराधीनता के कष्टों का पता चलता। वे बेचारे अपने दुखों को बोलकर भी प्रकट नहीं कर पाते। हमें कभी भी मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें पराधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति जो स्वतंत्र होकर अनुभव करता है, वह पराधीन होकर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आंधियों से लड़ सकते हैं, वे कभी भी पराधीनता से पराजित नहीं हो सकते। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हों सुख नाहीं।
1: आप सुन रहे थे हमारा आज का चिंतन, शीर्षक था पराधीन सपने हो सुख नाही। आलेख और वाचन स्वर था अनुपमा तिवारी का। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम।

0: भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मौसमी के स्वर में भगवान श्री कृष्ण की आरती। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। सुनते हैं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव से ली गई पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। विषय है मिर्गी कारण और उसका निदान। बातचीत कर रही हैं शर्मिला वर्मा।
1: मैं हूँ शर्मिला, स्वागत है आप सभी का कल्याणी कार्यक्रम में, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना।
2: मिर्गी देखिए कोई बीमारी नहीं बल्कि बीमारी का लक्षण है
1: जी।
2: मिर्गी किसी भी बीमारी में, बहुत सी बीमारी में उसका लक्षण मिर्गी के रूप में परिलक्षित होता है
1: जी।
2: तो हम लोग को समझना चाहिए कि आखिर मिर्गी किसको कहेंगे
1: जी सर।
2: तो दो तीन फैक्टर मिर्गी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा मूवमेंट जो उस आदमी के बस में ना हो, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट।
1: अच्छा।
2: ये एपिसोडिक हो, बार बार हो और रोके न रुके। ये आदमी बेहोश हो भी सकता है या होश में भी रह सकता है
1: जी।
2: तो एपिसोडिक पैरोक्सिज्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एपिलेप्सी
1: जी। सर मिर्गी के दौरे पड़ने की वजह क्या है?
2: हमारा शरीर जो है सो ब्रेन से कंट्रोल होता है
1: जी।
2: हाथ कैसे चलेगा, मुंह कैसे चलेगा, सबका सिग्नल हमारा ब्रेन देता है, उसके बाद ही इसका मूवमेंट हो पाता है
1: जी।
2: पैरालिसिस वाले व्यक्ति को आप देखते होंगे कि ब्रेन चाह रहा है कि मेरा हाथ चले, मेरा पैर चले, लेकिन नहीं चलता है
1: जी।
2: तो ब्रेन से लेकर के शरीर के आखिरी अंग तक, हाथ पैर तक, जो अगर कोई कहीं कमी आ जाए, उसका ट्रांसमिशन ना हो पाए, तो इसको है सो लकवा बोलेंगे
1: जी।
2: लेकिन अगर ब्रेन से ही गलत सिग्नल अपने आप

0: बिना उसकी इच्छा के उत्पन्न होने लगे तो उसको एक तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। पहले उसको पहचान के, उसका कारण जान के, उस कारण का इलाज करने से उसका इलाज होगा
1: जी।
0: तो इसमें डरने की बात नहीं है, इसको सामने आने की बात है। इसमें कोई लोक लाज की बात नहीं है, कोई भगवान का दिया हुआ श्राप नहीं है
1: जी, या कोई
0: सभी बीमारियों की तरह एक बीमारी है, लेकिन सौभाग्य से ऐसी बीमारी है जो ठीक हो जाता है
1: जी। श्रोताओं, जैसा कि सर ने अभी बताया कि यह क्योरेबल डिजीज है, यानी कि इसका इलाज संभव है, तो आप इस बीमारी को छिपाए नहीं, लोक लाज या किसी भी जादू टोने जैसी बातों में बिल्कुल ना आए, और जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे इसका अपने घर परिवार में या खुद में, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सर, हम राह चलते होते हैं और अचानक हमारे सामने कोई व्यक्ति गिर जाता है, लड़खड़ा के गिर जाता है, तो कैसे हम जाने कि हम मिर्गी का ही दौरा है, और मिर्गी का दौरा अगर किसी व्यक्ति को पड़ गया तो तत्काल हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग जूते सुंघाने जैसे कार्य करते हैं, तो कितना उचित है
0: ये? पूर्णतः अनुचित है
1: जी।
0: जूता सुंघाना, मुंह में चम्मच डाल देना
1: जी, सर कुछ लोग चम्मच
0: या और किसी इसी तरह का कुछ जो इमेच्योर एक्टिविटी करना मिर्गी के पेशेंट के लिए इस एक्टिविटी के चलते घातक हो सकता है
1: जी।
0: मिर्गी से अपने आप घातक नहीं हो सकता है। तो किसी को अगर मिर्गी का दौरा पड़ा है
1: जी,
0: तो सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए कि उसको सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। रोड पर गिर गया तो किनारे कीजिए, कोई गाड़ी मोटर से धक्का न लग जाए। कुआं के पास गिर गया तो अलग कीजिए, कुआं से नीचे के अंदर न चला जाए। छत पर गिर गया, बस में बैठा हुआ है कहीं पे, वहां पे अगर मुर्गी का दौरा पड़ गया है तो उसको गिरने से बचाइए। 2-3 मिनट के अंदर खुद ब खुद वो होश में उसको आना है
1: जी।
0: ये ऐसा दौरा 2-3 मिनट से ज्यादा जनरली नहीं चलता है। और इस बीच अगर आप उसको जूता सुंघाते हैं, मुंह में चम्मच डालते हैं, और या भी और कुछ भी काम करते हैं, तो आप जो 2-3 मिनट समय बर्बाद कर रहे हैं, इसके चलते वो अपने आप होश में आ जा रहा है
1: जी।
0: और आपको लगता है कि हम जूता सुंघाने में
1: जी जी बिल्कुल
0: इसके लिए आया है, उससे नहीं आया है। नहीं भी जूता सुंघाते तो उतना ही देर में होश में आता
1: जी।
0: तो होश में आने का कारण आपका जूता सुंघाना या मुंह में चम्मच डालना नहीं है। दूसरा प्रिकॉशन ये लेना चाहिए, उसका सांस की नली जो है, एयरवे है
1: जी,
0: वो सांस लेने में उसको कठिनाई न हो, क्लियर होना चाहिए
1: जी।
0: अगर सिर मुड़ा हुआ है तो सीधा कर लीजिए, मुंह से झाग फेन आ रहा है तो एक तरफ मुंह कर दीजिए कि वो झाग फेन उसके सांस के नली में
1: नहीं फंसे,
0: न चला जाए, या उसको उलट के रख लीजिए कि उसका जो लार जो आ रहा है वो नीचे चूते चला जाए, उसका सांस की नली है सो अवरुद्ध न हो, इसका हमको ध्यान रखना है।
1: सर,
0: तो हम लोग को दो चीज का ध्यान रखना है
1: जी।
0: एक उसको फिजिकल इंजुरी ना हो, कहीं चोट ना लगे, उसके सांस का नली अवरुद्ध ना हो, उसका ध्यान रखना है। और कोई भी जूता सुंघाना, चम्मच डालने वाली एक्टिविटी मत कीजिए
1: जी। सर, सर अधिकतम कितना समय लग जाता है इस दौरे को खत्म होने में?
0: जो जनरली जो हम देखते हैं कि जो सीजर आता है उसको हम लोग रखते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर के ग्रुप में।
1: अच्छा।
0: सबसे पहले पेशेंट को जब अटैक आने वाला होता है तो उसको कुछ अलग सेंसेशन होने लगता है, उसको पता चल जाता है कि अब हमको दौरा पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: इस फेज को ऑरा बोलते हैं
1: जी।
0: ये कुछ ही सेकंड का होता है, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का।
1: अच्छा।
0: इसमें बहुत से लोग जिनको दौरा पहले पड़ चुका है वो लोग संभल भी जाते हैं कि हम आपको अब दौरा पड़ेगा
1: जी।
0: दूसरा फेज आता है टोनिक फेज, इसमें हाथ पैर अकड़ जाता है।
1: अच्छा।
0: अकड़ जाता है, इसी समय होता है कि अकड़ने के चलते उसका जो चेस्ट का कंप्रेशन जो होता है, जो दबाव पड़ता है, उसके चलते गला से उस तरह की आवाज भी आ सकती है।
1: अच्छा।
0: वो होता है टोनिक फेज में
1: जी।
0: इसी फेज में उसके बाद आता है, ये करीब आधा मिनट या 1 मिनट का होता है। फिर आता है क्लोनिक फेज, जिसमें उसको झटका आने लगता है, ये झटका उसके मुंह में के जीभ में भी आता है।
1: अच्छा।
0: तो उस समय जो लार जमा होता है उस जीभ के झटका के चलते उसमें फेन पैदा हो जाता है, फोदिंग होने लगता है।
1: अच्छा।
0: वही झाग मुंह से बाहर निकलता है।
1: अच्छा।
0: तो आदमी को लगता है कि मिर्गी के चलते उसको है सो कहीं भीतर से

0: उसके मुंह में ही उसके जीभ के मूवमेंट से झाग बना है, यही इसी से बचाना है उसको, सांस के नली को अवरुद्ध नहीं करने पे। ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट से ज्यादा, कभी कभी ज्यादा भी, आधा घंटा भी हो सकता है, लेकिन 3 मिनट में जनरली चला जाता है। चौथा फेज आता है जो जब ये दौरा पड़ जाता है तो मरीज सुस्त हो जाते हैं, उनको बहुत नींद आने लगती है और वो सोना पसंद करते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट इक्टल फेज।
1: अच्छा,
0: ये जनरली हमारे समाज नॉर्मली जो देखने को मिलता है ये टोनिक क्लोनिक सीजर या ग्रैंड माल टाइप का सीजर होता है। एक और रेयर सीजर है, इससे कम जिसका ये है देखने को मिलता है, वो एब्सेंस सीजर, एब्सेंस अटैक, कि उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि हमको ऐसा सीजर डेवलप भी कर सकता है।
1: सर अगर किसी
0: तरह जो कॉमन टाइप है वो पार्शियल सीजर, पूरा शरीर में झटका नहीं आएगा।
1: अच्छा,
0: किसी एक अंग में, हाथे में झटका आ गया या पैर में ही झटका आ गया,
1: जी
0: 2-3 मिनट झटका आएगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा, ये भी एक तरह का सीजर है।
1: सर किसी व्यक्ति को अगर बचपन में मिर्गी की बीमारी हो गई, दौरे पड़ने लगे, तो क्या उम्र के साथ समय के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है या कंटिन्यू उसका इलाज चलता है और उसके बाद यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है?
0: ये बीमारी खुद ब खुद कभी भी ठीक नहीं होता है।
1: अच्छा,
0: इसमें इलाज आवश्यक है, इसीलिए इस फेर में न रहें कि बच्चा है बड़ा होते होते ठीक हो जाएगा,
1: जी
0: नहीं होगा, उसका इलाज करवाइए, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा
1: जी सर,
0: उसमें और भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है
1: जी सर। चलते चलते क्या मैसेज देंगे सर हमारे श्रोताओं को?
0: बस केवल एक लाइन का मैसेज है
1: जी,
0: कि मिर्गी जानलेवा या परमानेंट नहीं है, किसी के श्राप से नहीं होता है, कोई पाप इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, जनरल सौभाग्य से ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल है, इसलिए इसको छुपाएं नहीं, इलाज कराएं, आप ठीक हो जाएंगे, 100% लगभग ठीक हो जाएंगे, इसकी गारंटी है।
1: श्रोताओं, बहुत ही बेशकीमती जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी है कि मिर्गी को लेकर कोई भी भ्रांति पालने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से इलाज के योग्य बीमारी है, और अगर आप सावधानियां बरतते हैं, समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं और लगातार अपना इलाज करवाते हैं तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और जो सामान्य समाज में लोग करते हैं जूते सुंघाने और मुंह में चम्मच डालने जैसी चीजें, उसको बिल्कुल ही नहीं करना है, और अब तो डॉक्टर साहब ने भी आपको मना कर दिया है, तो हमें उम्मीद है कि आप उनकी बातों का पूरा पूरा पालन करेंगे, और अगर आप पालन करते हैं तो निश्चय ही आप इस बीमारी से उबर जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी सर आपकी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव। सिविल सर्जन से ली गई पूर्व शहीद भेंट वार्ता विषय था मिर्गी कारण और इसका निदान, बातचीत कर रही थी शर्मिला वर्मा। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनेगा क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
3: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। ब्रिक्स देशाः ह्यः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे नवदेहली घोषणाम् अङ्गीकृतवन्तः। घोषणापत्रे दृढतर बहुपक्षवादस्य, गहनतर सहकारस्य च प्रतिबद्धतायाः आह्वानमस्ति। सुदृढ आर्थिक विकासात्मक सहकारस्य उपरि बलं प्रदत्तमस्ति, तथा च वैश्विक विषयेषु निर्णय प्रक्रियायां विकासशील देशानां महत्तर प्रभावस्य कृते अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायाः समर्थनमस्ति। नवदिल्ली घोषणायाः स्वीकरणानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य समापन भाषणे उक्तवान् यत् एतत् सदस्य राष्ट्राणां सहभागित्व संकल्पाय स्पष्ट दिशां प्रददाति। सः अग्रे अवदत् यत् अधुना

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने का संकल्प दोहराया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शुरू हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास का संकल्प दोहराया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता

0: हर वर्ष बदलती हैं, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल ब्रिक्स नेताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह पुस्तकालय का अवलोकन भी करेंगे। गृह मंत्री एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों के निरीक्षण के बाद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियानों के कमांडर को पद से हटा दिया है। साथ ही ईरान के साथ लगी शलाम चे सीमा चौकी को एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस बीच हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के तटवर्ती इलाकों में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बढ़त हासिल कर ली है। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा विजेता श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का विजेता भारत ग्रुप में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। वहीं श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अलीना राबाकीना ने अम्बिकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की राबाकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। राबाकीना का ये पहला अम्बिकी ओपन खिताब है, जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने इसी वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Today is the second and final day of the BRICS summit. The two-day summit began yesterday at Bharat Mandapam in New Delhi. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration 2026 on the first day of the summit itself. The BRICS nations reiterated their commitment to the peaceful resolution of international disputes through dialogue, consultation and diplomacy. The leaders also expressed their concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint, as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They also strongly condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms and reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. India is organizing the summit for the fourth time. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible

खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम ज्वार पलामू आप सुनते हैं सुबह के 9 बजे से। नौ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत। दिन के 10 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 से। 10:10 पर हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनेगा विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर में आप सुनिएगा 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 से प्रादेशिक समाचार, और समाचारों के बाद पुनः विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

लौटेंगे स्टूडियो शाम 5:30 पर कार्यक्रम ब्यूरोन के साथ। पाँच बजकर 35 मिनट पर आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 से ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम आप सुनिएगा जननी 6:30 से। 6:55 पर हम शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से ठीक 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 से।

7:15 पर हम आपको सुनाएंगे गीत गजलों का प्रोग्राम स्वरांजलि। सात बजकर 30 मिनट पर हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा दुबई में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जो आज खेला जाएगा भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच, उसका आंखों देखा हाल आप सुनिएगा 7:30 से, जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे, और उर्दू में खबरें 9:15 से। समाचारों के बाद पुनः हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से पुनः आप सुनिएगा दुबई में खेले जा रहे हैं भारत महिला T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण जो आज खेला जाएगा फाइनल मैच। ये फाइनल मैच है भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

बाल सभा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। सभी बच्चों को जय हिंद। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 14 सितंबर है और कल हम सभी मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। वह दुनिया भर में हमें सम्मान भी दिलाती है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मसी यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वर्धा अनुरोध पर 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। हिंदी का महत्व धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और इस भाषा ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका एक कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए, साथ ही हिंदी का सम्मान हम सबों को करना भी चाहिए। हिंदी दिवस भारत में 14 वर्ष को मनाया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक, प्रत्येक व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल समझ लेता है। यही इस भाषा की पहचान भी है कि इसे बोलने और समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। पहले के समय में अंग्रेजी का ज़्यादा चलन हुआ करता था, तब यही भाषा भारतवासियों या भारत से बाहर रह रहे हर वर्ग के लिए सम्माननीय होती थी। लेकिन बदलते युग के साथ अंग्रेजी ने भारत की जमीन पर अपना पांव खड़ा कर लिया, जिस वजह से आज हमारी राष्ट्रभाषा को हमें एक दिन के नाम से मानना पड़ रहा है। पहले जहां स्कूलों में अंग्रेजी का माध्यम ज़्यादा नहीं होता था, आज उसकी मांग बढ़ने के कारण देश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में पिछड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ठीक से हिंदी लिखना और बोलना भी नहीं आता है। भारत में रहकर हिंदी को महत्व नहीं देना हमारी बहुत बड़ी भूल है। आजकल अंग्रेजी बाजार के चलते दुनिया भर में हिंदी जानने और बोलने वालों को अनपढ़ या एक गंवार के रूप में देखा जाता है, या यह कह सकते हैं कि हिंदी बोलने वाले को कुछ लोग तुच्छ नज़रे से भी देखते हैं। यह कतई सही नहीं है। हमारे ही देश में अंग्रेजी के गुलाम हम बन बैठे हैं और हम ही अपनी हिंदी भाषा को वह मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो भारत और देश की भाषा के प्रति हर देशवासियों की नज़र में होनी चाहिए। हम या आप जब भी किसी बड़े होटल या बिजनेस क्लास के लोगों के बीच खड़े होकर गर्व से अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में आपकी छवि एक गंवार की बनती है। घर पर बच्चा अतिथियों को अंग्रेजी में कविता आदि सुना दे तो माता पिता गर्व महसूस करते हैं। इन्हीं कारणों से लोग हिंदी बोलने से घबराते हैं। आज हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं। इन स्कूलों में विदेशी भाषाओं पर जो ध्यान दिया जाता है, लेकिन हिंदी की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों को लगता है कि रोज़गार के लिए इसमें कोई खास मौके नहीं है। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है गुम हो रही हिंदी को बचाने के लिए एक प्रयास है। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी के अलावा अन्य भाषा में पारंगत है तो उसे दुनिया में ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने की बुलंदियाँ नज़र आने लगती है, चाहे वह कोई भी विदेशी भाषा हो, फ्रेंच, जर्मन या कोई भी अन्य भाषा। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हमें
सम्मान देना चाहिए, और सम्मान देते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि ये हम सबों को जोड़ती है। हमारी भाषा जो है

सबको एक पहचान देती है, हम समझने की, एक दूसरे को समझने में ये हमारी मदद करती है। तो सदैव हिंदी भाषा का सम्मान करें, यही हम बच्चों से आग्रह करेंगे।

0: में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती।
0: अरे बोला ना अगरबत्ती,
1: मगरबत्ती,
0: अगरबत्ती,
1: मगरबत्ती,
0: अगरबत्ती,
1: मगरबत्ती,
0: अगरबत्ती। अगरबत्ती का छुआछाप, आग पे बैठा पानी ताप। अगरबत्ती

0: बच्चों, इस गीत के बाद हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक स्वरचित कविता गरिमा प्रिया से।
1: बताने वाली हूँ कि यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है, यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकते चिड़ियों की चहचहाहट, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर, कुछ कहना चाहती है हमसे ये प्रकृति, शायद कुछ कहना चाहती हैं। अब मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हरे भरे ये हमारी धरती, हर मन को अपनी सुंदरता से हरती, पेड़ पौधे नदियाँ और झरने हरते हैं मन को सबके, पेड़ हमें देता फल और मधु छाया, विशाल है इसका रूप हर दिल को है या भाया, अपने साथ है रंगों भरी खुशियाँ ये लाया, फूलों की अपरंपार खुशबू मन को है सबको भाई, हर दिल खुशहाल हो जाए, हरी भरी ये हमारी धरती। अब मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पर्यावरण बचाओ।

जागरूकता फैलाओ, पेड़ लगाना का महत्व समझाओ, पर्यावरण बचाओ, ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाओ।

0: सारा संसार। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। सूर्य की चमक में तुम्हारा ताप है, हवाओं में तुम्हारी सांस है, पंखुड़ों की कोमलता में तुम्हारा स्पर्श, सुगंध में तुम्हारी पहचान। जब जीना होता है तुम्हें, प्रकृति में खड़ी हो जाती हूँ और आंखें महसूस करती है अपने भीतर तुम्हें। मैं अपनी परछाई में देखती हूँ, तुम्हें परछाई के कागज पर लिखती हूँ, गहरी परछाई के प्रणय जीवी सब। तुम मेरी आँखों के भीतर जो प्यार की पृथ्वी रचते हो, उसे मैं दिल की प्रकृति में घटित करती हूँ। अब शीर्षक है, हे वसुंधरा, तुझे मेरा प्रणाम है। हर मनुष्य का जीवन परवाह है तेरे हाथ में, ईश्वर अल्लाह का आशीर्वाद है तेरे साथ में। हे जीवन दायिनी वसुंधरा, तुझे मेरा प्रणाम है। सागर, शिखर और नदियाँ तेरी समृद्धता को दर्शाती हैं। अकल्पनीय ऐसी वन संपदा हर कण कण को हर्षाती हैं। हे सुशोभनीय वसुंधरा, तुझे मेरा प्रणाम है। अभेद शिखरों की कठोरता के जैसे तेरा धर्म है, हर मनुष्य प्राणी जन की सेवा ही तेरा कर्म है। हे निस्वार्थ सेविका वसुंधरा, तुझे मेरा प्रणाम है।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे गरिमा प्रिया की कविता, और इसी कविता के साथ ही हमारा और आप सबों का कार्यक्रम बाल सभा समाप्त होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर अनिता सेन से राग कजरी।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनीता सेन से कजरी। तो इसी के साथ ही हमारा आज का यह प्रोग्राम अब समाप्त होता है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहाँ से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience.

0: innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद डीआरडीओ का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास। रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आर्यना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. BRICS leaders condemn 2025 Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism, also express concern over escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purva Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today. Elena Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening. And now the news in detail. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. More from our correspondent.
8: The New Delhi Declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The attack was later traced to terrorists backed and trained in Pakistan. The declaration also called for action against the cross-border movement of terrorists, terrorism financing, and safe havens. BRICS leaders also urged the member nations to ensure zero tolerance for terrorism and reject double standard in countering terrorism. They further called for concerted actions against all UN-designated terrorists and terrorist entities. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. It said the BRICS countries will increase efforts through dialogue and diplomacy towards a long-term understanding that will contribute to lasting peace, security and stability in the region. Saklayan Akhtar, Kashwani News, Delhi.
7: In his remarks yesterday, Prime Minister Narendra Modi noted that the New Delhi Declaration provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
9: बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
7: Mr. Modi has proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the chairship changing every year. The Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Torioka.
9: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले. अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा. इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी. ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए.
7: Today is the second and final day of the BRICS summit. Our correspondent has filed this report.
10: Today, BRICS member and partner countries will participate in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. The 10 partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi. He will also hold meetings with vice presidents of Nigeria and Uganda. The summit is being held under India's BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with Dipendra Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
7: Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with leaders of BRICS countries yesterday. A report.
11: Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping have reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. The two leaders expressed commitment to a fair, responsible and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and their long-term interests of the two peoples. The two leaders agreed that both sides must continue to expand common ground on regional and global issues and in addressing challenges. Earlier in the day, Prime Minister Modi met his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali, Malaysian counterpart Anwar Ibrahim and Vietnamese counterpart Lee Minh Hung. The leaders reviewed cooperation in trade, defense and security, people-to-people ties and also covered regional and global issues. Mr. Modi also held talks with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Both sides reiterated the importance of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and agreed and also welcomed the UAE's International Holding Company's planned $11.5 billion investment in an integrated greenfield aluminium project in Odisha. With BRICS Team's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
7: A special cultural performance, Navras,
11: The universe of shared emotions was presented during the BRICS Leaders Summit Gala dinner hosted by the Prime Minister at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. The cultural event featured the BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures, bringing together

0: Reached the final unbeaten, topping Group A with 3 wins before defeating Bangladesh by 40 runs in the semi-final. Sri Lanka also secured their spot in the final, winning all 3 of their group matches before defeating Pakistan by 4 wickets in the semi-final. In men's cricket, India will begin their 3-match 2020 international series against Afghanistan at Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The first match will start at 7 p.m. Indian time. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Shagun. One acronym is flashing in bold headlines everywhere you look. BRICS. It is the story of the day, taking over front pages nationwide. Border peace crucial to ties. PM in Xi meet welcome the steady progress in bilateral ties, leads the Hindustan Times. Big win for India, terror stand gets global backing, reports the Pioneer. In line with the commitment, the multilateral forum launched the BRICS mission for healthy lifestyle and the BRICS roadmap for the joint initiative on healthy lifestyle promotion 2026 to 2029, writes the Asian Age. On the sidelines of summit, world leaders' families hosted at BRICS Bazaar, informs Hindustan Times. And finally, trainees have become trainers, thereby providing India's excellence in the niche field of fighter jet flying. In a historic first, 3 Indian Air Force pilots will train the young Royal Air Force pilots in the UK, reports the Pioneer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS leaders condemn 2025 Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism, also express concern over escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purva Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today. Alina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
3: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
5: बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर।
7: चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई।
8: पर खर्चा?
7: बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में, माँ और बच्चे दोनों की देखभाल।
8: वो तो ठीक है, पर खर्चा?
7: अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
9: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना?
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का प्रसव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
12: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे 2 दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद 2 दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: के दिए निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध पत्थर खनन मामले में कार्रवाई, चुट्टूपालू और ओरमांझी में 8 स्टोन क्रशर सील, 11 यूनिट ध्वस्त। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज, 21 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए होगा मतदान। और राज्य में अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान, आज बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने वाली नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है, चाहे उसकी वजह कुछ भी क्यों न हो और उन्हें अंजाम देने वाला कोई भी हो।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जिला नोडल प्रभारी सुनील वर्णवाल ने आकांक्षी जिला गिरिडीह में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समाहरणालय में आयोजित बैठक में डीसी रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी समेत सभी अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरिष्ठ अधिकारी सुनील वर्णवाल ने कहा कि गिरिडीह में काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह 117वें नंबर पर था, जो घटकर 77वें नंबर पर आ गया है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह को 25वें नंबर पर आने की जरूरत है।
2: हमें 25 के अंदर लाना कि हमारा ये इंडिकेटर्स पीछे चल रहा है, इसमें मेहनत करने की जरूरत है। एंटीनेटल चेकअप केवल अवेयरनेस क्रिएट करने से ही काफी इंप्रूवमेंट। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाना, स्कूलों में ट्रांजिशन रेट बढ़ाना, इसमें बहुत रिसोर्स नहीं चाहिए बट एफर्ट चाहिए। हमारे पदाधिकारियों को गांव-गांव विजिट करना चाहिए, लोग इसके महत्व को समझें और इसका लाभ लें।
0: पूर्व मध्य रेल का महाप्रबंधक डिम्पी गर्ग ने धनबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने पतरातू स्टेशन पर यात्री सुविधा, सुरक्षा, संरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया, साथ ही एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गर्ग ने बताया कि हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के लिए कई प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं।
3: पूरे सेक्शन का जायजा ले रहा हूँ, कहाँ पे हमें क्या इश्यूज हैं और कैसे हम अपना मूवमेंट बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लोडिंग बढ़ा सकते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट सैंक्शनड हैं, हम लोग धीमे धीमे करके कंप्लीट करेंगे। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन में ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट एक साल में हम लोग तेजी पकड़ेंगे इन प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में और लास्ट माइल प्रोजेक्ट्स उनको सबसे पहले उनको कंप्लीट करेंगे और साथ में बाकी प्रोजेक्ट्स को भी टेकअप करेंगे।
0: उच्च न्यायालय के आदेश पर चुट्टूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग के खिलाफ संयुक्त जांच दल ने 19 इकाइयों पर कार्रवाई की। जांच में सीटीओ लैब्स मिलने पर 8 क्रशर सील किए गए, जबकि अवैध रूप से संचालित 11 क्रशर को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और नियमों तथा पर्यावरण मानकों की नियमित निगरानी की जा रही है।
4: हाईकोर्ट का निर्देश है, इस एरिया में बहुत माइंस चल रहा है, तो उनको आदेश दिया गया कि आप एक टीम बना के इसका जांच कराइए। तो उसी के अंतर्गत ये जांच हो रहा है, जिनका वैध वैध मतलब कि जिनके पास लाइसेंस है और उनका कोई कागज फेल हो गया है तो वो फिर जमा करेंगे, वो विभागीय प्रक्रिया है।
0: रांची जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई, जिसमें नोटिस वितरण और सुनवाई की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में डीसी ने कहा कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 तक होगी और राजनीतिक दलों से मतदाताओं तक सूचना पहुंचाने, दस्तावेज के साथ सुनवाई में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करने और BLA 2 के जरिए BLO को सहयोग करने का आग्रह किया। आकाशवाणी।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन। नई दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से मंजूर। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का आह्वान। आकांक्षी जिला गिरिडीह के विकास की हुई उच्च स्तरीय समीक्षा। केंद्रीय प्रभारी सुनील बर्नवाल ने सुधार

0: के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और इंस्टाग्राम पेज यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 के लिए आज चुनाव होगा। 21 कार्यकारिणी सदस्यों और 3 प्रमंडलीय क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के लिए निर्वाचन के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रांची स्थित मारवाड़ी भवन में मतदान होगा। मतदान समापन के बाद मतों की गिनती कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रभारी पवन शर्मा ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस हॉल के अंदर जो व्यक्ति आ जाएंगे उनको वोट देने के अधिकारी रहेंगे। जो इस हॉल के अंदर आएंगे उन्हीं को। दूसरी बात, 40 काउंटर हमने बनाए हैं। चार चार वोटरों के लिए एक एक रूम तैयार हमने किया है और उसमें 4 केबिन बने हुए हैं। हर केबिन में एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और एक बैलेट बॉक्स डालने के लिए बक्सा रखा हुआ है।
0: लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मासियातू गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कल स्कूल में छुट्टी के बाद दोनों बच्चियां गांव के पुलिया के पास नहाने गई थीं। इस दौरान गहरे गड्ढे में डूबने से दोनों की मौत हो गई। धनबाद के गोमो स्टेशन पर आरपीएफ ने वन्यकारी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन WILP के तहत दून एक्सप्रेस के जनरल कोच से 48 जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। कछुओं को 3 थैले और एक बैग में भरकर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था। तलाशी के दौरान कछुओं के मिलने के बाद आरपीएफ ने सभी को जब्त कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। और अब मौसम। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के प्रभाव से झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। रांची के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय पावर ग्रिड अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2026 का सफल समापन हुआ। प्रतियोगिता में पावर ग्रिड के विभिन्न क्षेत्रों की टीमों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों में खेल भावना और टीम वर्क को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक नितिन कुमार श्रीवास्तव ने विजेता और उपविजेता टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पुरुष टीम वर्ग में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और महिला टीम वर्ग में कॉर्पोरेट सेंटर विजेता बने। वहीं पुरुष एकल में हिमांशु और महिला एकल में प्रोनामी बोरा ने खिताब जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर लगी मुहर, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अगले वर्ष अप्रैल मई में पंचायत चुनाव, चल रही तैयारियों में जिलों में लिया जा रहा है जायजा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राधास्वामी संगठन के खिलाफ FIR दर्ज, 12 नामजद। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड चेंबर चुनाव जारी, तैयारियां पूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन, नई दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से मंजूर, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का आह्वान। आकांक्षी जिला गिरिडीह के विकास की हुई उच्च स्तरीय समीक्षा, केंद्रीय प्रभारी सुनील बर्णवाल ने सुधार के दिए निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध पत्थर खनन मामले में कार्रवाई, चुटुपालू और ओरमांझी में 8 स्टोन क्रशर सील, 11 यूनिट ध्वस्त। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज, 21 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए होगा मतदान। और राज्य में अगले 4 दिन तक मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान, आज बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है। रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता।
3: कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है?
2: विटामिन ए वो क्या होता है बहन?
3: विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है?

0: चार वर्ष अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ। ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तुम्हारी माताजी का स्वास्थ्य अब कैसा है?
3: क्या बताऊं भाई, कल माताजी के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें गाँव के सरकारी अस्पताल में ले गया था, पर वहां तो डॉक्टरों ने उनकी ठीक से जांच ही नहीं की। अब आम आदमी कहां फरियाद करे?
2: अरे डायल करो 104 नंबर।
3: वो क्या है भाई?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन, जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों से संबंधित शिकायत, जैसे अस्पताल में डॉक्टर का न होना, दवाई का न होना या अन्य कोई गड़बड़ी की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।
4: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय सिन्हा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं कुमार सानू की आवाज से। फिल्म है क्रिमिनल। गीतकार है इंदिवरा संगीतकार MM करीम।

कुमार सन और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे क्रिमिनल फिल्म का गीत, बोल थे इंदिवर के और संगीतकार थे MM करीम। अब आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ है, फिल्म है दस्तक, गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

दस्तक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में। गीत के बोल थे जावेद अख्तर के और संगीतकार थे राजेश रोशन। प्रोग्राम के आखिर में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ है फिल्म है कसूर। गीत रचना समीर के हैं और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: कसूर फिल्म के इसी गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इन डाल्टनगंज केंद्र से, प्रस्तुत है हमारा नियमित प्रोग्राम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, कल है 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। आज हिंदी सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नई पीढ़ी की रोज़मर्रा की भाषा और अभिव्यक्ति का हिस्सा बन रही है। इंस्टाग्राम की पोस्ट से लेकर पॉडकास्ट, ब्लॉग और डिजिटल स्टोरी लेटिंग तक हिंदी नए अंदाज में सामने आ रही है। इस बदलाव को गति देने में युवा लेखक भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सरल, सहज और बोलचाल के शब्दों के साथ कहानी, कविता

नए प्रयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि डिजिटल दौर में पली बढ़ी पीढ़ी इन रचनाओं से जुड़ रही है और हिंदी साहित्य को नए पाठक और नया विस्तार भी मिल रहा है। हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि संवेदनाओं और संस्कारों की वाहक भी है, इसलिए युवाओं का हिंदी से जुड़ना केवल भाषा से जुड़ाव का विषय नहीं है, वरन यह उनके अधिक संवेदनशील और संस्कारवान होने का विषय भी है। यह पीढ़ी केवल प्रेम कहानियों तक सीमित नहीं बल्कि वह सब कुछ पढ़ना चाह रही है जो ईमानदारी पूर्वक वर्तमान समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को बयां करती है। पिछले कुछ वर्षों में युवा लेखकों की रुचि हिंदी साहित्य में बढ़ी है। उनकी लिखी रचनाएं न केवल युवाओं बल्कि अन्य पाठकों द्वारा भी पसंद की जा रही है। नई उम्र के लोगों का हिंदी से जुड़ना केवल हिंदी के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए भी सकारात्मक है। हिंदी एक वैज्ञानिक एवं प्राणवान भाषा है। हिंदी अपनी ग्राहकता का एवं देश काल के अनुरूप स्वयं को उदारपूर्वक ढालने की योग्यता के कारण अधिक लोकप्रिय हो रही है। युवाओं को दृष्टिगत करके बेहतर रचनाएँ हिंदी को युवाओं के मध्य और अधिक लोकप्रिय बना रही है, इसलिए हिंदी के प्रति हमारी जो रुचि बढ़नी चाहिए। हिंदी हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो हिंदी की बातें करते हैं। और आज है श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल भी हरितालिका व्रत है, महिलाएं ये पूजा करती हैं जिसे हम सभी तीज भी कहते हैं, हरितालिका तीज। दो दिन का यह तीज मनता है और आज न्यायिक है। पति के दीर्घायु होने की कामना के लिए की जाने वाला यह व्रत होता है। इसमें जो है महिलाएं अपने आप को संवारती हैं और अपने पति के दीर्घायु के लिए उनके स्वस्थ जीवन की कामना भी करती हैं। तो श्रोताओं, तो ये हो गई आज की बात और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा फिल्मी गीत।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार परामू। डालते हैं एक नज़र स्थानीय खबरों पर। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पलामू ने जिला प्रशासन के सहयोग से 3 छोटे बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा है। 8 वर्षीय बालक के लिए झारखंड बाल प्रयोजन योजना के तहत 4,000 रुपये प्रति माह की राशि स्वीकृत की गई है। उनका नामांकन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सुबह में कराया गया है। दोनों बच्चियों को भी योजना से जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और आधार कार्ड के जरिए निबंधन कराया गया है। 5 वर्षीय बच्ची के नामांकन की अनुशंसा अनुसूचित जाति बालिका आवासीय विद्यालय लेस्लीगंज के लिए भी की गई है। ये 3 अनाथ बच्चे हैं जिसका सरकार और झालसा के सहयोग से सेवाएँ मुहैया कराई जा रही है। हाल ही में मोहम्मदगंज में इन बच्चों के दादा की सांप कांटे से मौत हो गई थी। परिवार में कोई वयस्क सदस्य नहीं होने से बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा का संकट उत्पन्न हो गया था। PDJ राम शर्मा के प्रयास से बच्चों की व्यवस्था कराई गई है। जानकारी जो है प्रभारी सचिव गौरव खुराना ने यह सूचना दी है। रेल कर्मियों की मांग, ईस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन डाल्टनगंज शाखा के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। शाखा सचिव ने कहा कि बरवाड़ी एवं डाल्टनगंज सेक्शन में निर्माणाधीन रेलवे आवासों का शीघ्र पूरा कराया जाए, पुराने क्वार्टरों की जर्जर छतों को मरम्मत कराई जाए। बरवाड़ी में लोको पायलट कर्मचारियों के अधूरे मोटरसाइकिल स्टैंड का निर्माण पूरा हो। लालगढ़ बिहार हॉल्ट एवं कजरी में नए गैंग हट बनाए जाएं। उकामाड़ हेगड़ा एवं मंगरा में बोरिंग कर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो। बरवाड़ी रेलवे क्लब का जीर्णोद्वार कराया जाए। सहायक मंडल अभियंता डाल्टनगंज के अधीन कर्मचारियों में साइकिल भत्ता भी बकाया राशि का भुगतान हो। बालूमाथ लॉबी को फिर रनिंग रूम में स्थापित किया जाए। डाल्टनगंज में उच्च श्रेणी के निजी अस्पताल को रेलवे से जोड़ा जाए। ये मांग पत्र रखा है रेलवे कर्मचारियों ने। राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स में जिले के खिलाड़ियों ने जीते 6 पदक। जिले के खिलाड़ियों ने बोकारो के चंदन क्यारी स्थित स्पोर्ट्स परिसर में आयोजित 3rd झारखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण समेत कुल 6 पदक जीते हैं। खिलाड़ियों की उपलब्धि से जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह है। शनिवार को पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अपने कार्यालय कक्ष में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

और इनकी उपलब्धियों की सराहना की। इस दौरान शॉट फुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुहानी सिंह और क्रिस्टस थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली शिवानी कुमारी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पलामू के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि इससे अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और लगातार मेहनत की भावना भी विकसित होती है। उन्होंने खिलाड़ियों से इस उपलब्धि को अंतिम मंजिल नहीं बल्कि आगे बढ़ने की शुरुआत मानने की अपील की है। कहा कि खिलाड़ी बड़ा लक्ष्य तय करें, नियमित अभ्यास करें और अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का भी प्रयास करें। उपायुक्त ने कहा कि पलामू में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें उचित मंच, बेहतर मार्गदर्शन और लगातार प्रोत्साहन देने की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेहनत, अनुशासन और लगन से जिले की खिलाड़ियां राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पलामू जिले का नाम रोशन करेंगे। तो श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं फिल्मी गीत।

अब बातें करेंगे, खेल से जुड़ी हुई बातें करेंगे। अब खेल स्टेडियम में शनिवार को प्रखंड स्तरीय शहीद स्मारक नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। ये बातें हैं महुआडांड की। इसका उद्घाटन थाना प्रभारी अमित कुमार ने किया। मैच महुआडांड फुटबॉल क्लब और अक्सी फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबला में महुआडांड फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए अक्सी फुटबॉल क्लब को 3-0 से पराजित कर दिया। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 31,000 रुपये नगद और ट्रॉफी, उप विजेता को 21,000 रुपये और ट्रॉफी प्रदान किए गए। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाले टीमों के लिए सांत्वना पुरस्कार निर्धारित किए गए थे। आयोजन समिति के संचालक सर इख्तार अहमद ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं में खेल भावना, सहनशील और आपसी भाईचारे की भावना मजबूत होती है। हेमंत सरकार ने खेल एवं खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कर रही है काम। प्रखंड के जमीरा पंचायत अंतर्गत रक्सी सरना खेल मैदान में शनिवार को मुस्कान क्लब के बैनर तले दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सेरेन स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद केंद्रीय उपाध्यक्ष बैजनाथ राम, विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रंजीत उराव, मुखिया दुर्गावती देवी, उपाध्यक्ष सीत मोहन मुंडा, अध्यक्ष मनोज चौधरी, राजकुमार साहू ने स्वर्गीय शिबू सेरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इन्होंने बताया कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। सरजू प्रखंड के लाई गांव में खेल मैदान में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर 6 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन चौराहा पंचायत के मुखिया अंकिता देवी ने किया। इसके बाद मुखिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के माध्यम से ग्रामीणों और ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करती है। और हम अंतर्राष्ट्रीय बातें करें तो आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान में रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे वुमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट फाइनल का आंखों देखा हाल। ये मैच रात्रि 8 बजे से प्रसारित होगा और आज सेम फाइनल मैच है और इसमें भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला जाएगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामो और मैं हुसैन जय सिन्हा। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं क्या कहता है 13 सितंबर का इतिहास। महान क्रांतिकारी जतिन दास ने लाहौर जेल में 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज ही के दिन 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई थी। 2000 ईस्वी में दिग्गज भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने अपना पहला FIDE शतरंज विश्व कप खिताब जीता था।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे आपकी परछाई, और वो कौन थे फिल्म का गीत। गीत के बोल थे राजा मेहंदी अली खान के और संगीतकार थे मदन मोहन। लीजिए सुनिए प्रेम पत्र फिल्म का गीत लता मंगेशकर और तरत महमूद की आवाज़ में।
1: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

प्रेम पत्र फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ है, बोल समीर की और संगीतकार नदीम श्रवण। फिल्म है साजन।

साजन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। सुनते हैं अलका याग्निक के साथ एम जे श्री कुमार की आवाज़। गीत की बोल समीर के हैं। फिल्म है सात रंग के सपने।

सात रंग के सबने इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और एमजी श्री कुमार की आवाज़ों में। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़, गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म है राम अवतार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं।

0: MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। दिन के 10 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहाँ से
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
2: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। ये उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। योजना के अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जलसीमा के भीतर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलेना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रायबाकिना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्पुस्की ने जर्मनी के केविन क्रार्वेटेस और टिम पुइट्स को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ तीन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. The declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. Today is the second and final day of the BRICS summit. Our correspondent has filed this report.
6: Today, BRICS member and partner countries will participate in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. The 10 partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi. He will also hold meetings with vice presidents of Nigeria and Uganda. The summit is being held under India's BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With Dipendra Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
5: Union Home Minister Amit Shah has paid tribute to freedom fighter Jatindranath Das on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that even at a young age, Jatindranath Das chose the path of struggle against British rule. The tortures of jail could not shake his resolve. The minister said that his hunger strike in protest against the inhuman treatment of freedom fighters in jail stands as an example of patriotism and indomitable courage. India will get another weapon and missile testing range in Bengal's Jonpur coastal village in Purba Medinipur district. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has approved Defence Research and Development Organisation's proposal to set up weapon and missile testing range in the state. The Chief Minister said this will be a big project for West Bengal's development. Iran and Oman have agreed on new entry and exit shipping routes for the Strait of Hormuz, which they plan to present to other Gulf nations at an upcoming regional meeting. A report.
7: Under this new plan, the entry route into the Gulf will sit entirely within Iranian territorial waters, and a section of the exit route will also fall under Iranian control. Once this new system starts operating, the waterway's southern route

0: will be closed, directly opposing the United States' demands to keep it open. Furthermore, Iranian official emphasized that this agreement does not mean that the Strait of Hormuz is being reopened. Iran has set 7 conditions for the US before the waterway can open. Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghai announced that Gulf littoral states' foreign ministers are scheduled to meet in Oman tomorrow to exchange views on regional issues. Vishal Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: In tennis, Kazakhstan's Elena Rybakina defeated Belarusian Arina Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to win US Open Women's Singles Final at Arthur Ashe Stadium in New York last night. This is Rybakina's first US Open title and her third career Grand Slam championship, following her Australian Open victory earlier in the year. With the win, Rybakina officially takes over the WTA World No. 1 ranking from Sabalenka. The men's singles final will be played between Germany's world number 2 Alexander Zverev and local favourite Ben Shelton in New York tonight. The match is scheduled to begin at 11:30 p.m. Indian time. And the India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places in Gujarat today. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over Madhya Pradesh, West Madhya Pradesh, Saurashtra and Kutch during the day. Meanwhile, in the national capital, very light to light rainfall is expected during the next 3 days. And that is the end of this news bulletin.
2: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का।
3: बड़ी बात है ये।
4: बिल्कुल,
3: वो भी तो मर्द ही है ना।
4: बिल्कुल,
3: शायद मेरा पति ये बोल दे पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है। थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है, पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को। आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा। आपको यही पता है, बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है। और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद। बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, यू नो। तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते जाओ उड़ो। बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो, यू नो। बचपन में हमारे पापा का, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर, तो हमें वो भी रोपना होता था। आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पज स्टूडियो है जैसे ये, कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था। हमें खुद का काम खुद करना है। तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे। ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे,
4: और इसलिए आप संभल गए।
3: इसलिए हम संभल गए।
4: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
3: बिल्कुल,
4: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई?
1: बिल्कुल, पूरी तरह से।
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार?
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट 2017 में वापसी हुई मुंबई में, वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया, और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है। क्योंकि

0: ये जो 1 साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया था एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में। इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहां के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
1: वाह वाह वाह।
0: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था, तो आई डिड इट। और 1 महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहां के फोक म्यूजिक को सुने। और जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है, उसमें बिहार का नाम नहीं था। और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इस योग्य भी नहीं है। झारखंड है,
1: झारखंड था
0: यूपी है,
1: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था?
0: मध्य प्रदेश है, पर बिहार नहीं। अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता। और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहां पे एक्चुअली वहां कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं। ये बात हमको बहुत चुभी, ये बात सच है। मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट उस फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है, तो बोला वहां पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है। मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं, पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन? हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहां पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम। और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, या बनी जई हो बनी के जोगिनियार हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है, या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी, दादी गाती थी, वो गाने, उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी। जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए।
1: ओहो, ये बहुत बड़ा झटका था।
0: बहुत बड़ा झटका था। सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है। और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक YouTube चैनल है, उर्दू पोएट्री,
1: मनीष
0: जिसपे
1: गुप्ता का।
0: मनीष गुप्ता का, उनके लिए एक किस्मत से एक गजल, आपकी याद आती रही रात
1: अच्छा,
0: भर।
1: ओ हो, वो आपने किया था।
0: जी
1: देखिए, मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक हैं।
0: जी तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये। और क्योंकि हम जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है YouTube पे वीडियो में है और आज भी हमको
1: खूब चलता है वो।
0: खूब चलता है, हमको आज भी बहुत
1: ओरिजिनली
0: मैसेज
1: छाया
0: आता
1: जी
0: है।
1: ने गाया है,
0: जी
1: और मजेदार बात यह है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही हैं।
0: ओ, कैसा ये सर्कल है
1: हाँ
0: देखिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि YouTube का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है। और हमको फेसबुक पे, और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
1: और मैंने क्या समझा पता है,
0: हाँ
1: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने
0: जी
1: वो वीडियो बहुत देखा है,
0: अच्छा
1: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ कुछ
0: अच्छा
1: कविताएं पढ़ी हैं।
0: ओ हो, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था ना, हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया है
1: दो कैमरों से,
0: दो कैमरास लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माई ओन लैंग्वेज। भोजपुरी में अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में, तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा। उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन, उनको चाहिए थे लोकगीत,
1: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे,
0: ढूंढ रहे,
1: ऐलान किया था।
0: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन,
1: वो भी हमारे दोस्त।
0: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है, तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट, तो लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा एंड वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा, और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
1: क्या बात है, और वो खूब चला,
0: खूब चला
1: और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
0: बहुत चला।
1: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
0: पार्किंग लॉट
1: वो भी मजेदार है, उसमें तो आपने पता नहीं क्या क्या गाया है।
0: हाँ उसमें तो
1: जब जो मर्जी आई है गाया है,
0: जब जो दिल में आया। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
1: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
0: ये दोनों पैरेलली शुरू हुआ,
1: पैरेलली शुरू हुआ और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये
0: हाँ, ये
1: मतलब ये बहुत मजेदार है। मुझे ये आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूँ।
0: ये कमाल है, 2017 पार्किंग लॉट सीरीज शुरू,
1: और वो भी बहुत चली थी,
0: बहुत चला,
1: बहुत ज्यादा।
0: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था, तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, ए आर रहमान सुन ले हमको, बस, और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी।
1: और उन्होंने सुन ली,
0: और उन्होंने सुन ली।
1: उन्होंने क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना?
0: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको।
1: अच्छा,
0: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
1: उनका भी
0: जन्मदिन है,
1: ये भी इत्तेफाक है।
0: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
1: अरे बाप रे
0: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे ए आर रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, ए आर रहमान स्टार्ट्स फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि ए आर रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे, एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने
1: सारे सुने होंगे।
0: और यू नो ए आर रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमको समझ आया कि ये यू नो जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माई इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक

0: अवेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है। अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
1: ये एक जरिया बना।
0: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और यार रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है। किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे हैं।
1: वाह।
0: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में, अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा। ये जो
1: लेकिन ये 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के,
0: हाँ
1: कंफ्यूजन के साल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है, तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए। आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके? अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी। लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था। और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है। और दिल के अंदर दम कोने में ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना यार रहमान के पास, प्लीज।
1: वाह वाह वाह।
0: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं,
1: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम,
0: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम।
1: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था।
0: तो ये 3 साल पहले की बात है। मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही। पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था कि पहुंचेगा।
1: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था।
0: ओहो कैसे बताया हम हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहां रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी और वहां पर हमको बुलाया गया था
1: चेन्नई में, एआर रहमान स्टूडियोज।
0: एआर रहमान जी का जो स्टूडियो है, पंचतन नाम है उसका, वो उनका घर है, होम स्टूडियो है उनका
1: बिल्कुल।
0: और जब हम पहुंचे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में एआर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला लें तो तुमको क्या लगता है, तुमको क्या चाहिए? तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए। तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और ए आर रहमान का एक गाना हो सोलो।
1: एग्जैक्टली ये बोला,
0: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: जेवा पे सरस्वती बिराजती हैं भाई, बिराजती।
1: क्या बात है, क्या बात है। और ये संभव हुआ।
0: ऐश्वर्य ने बोला भी कि यू नो ए आर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में ढिडोरा पीटता है कि अब तुम सबको बता दो कि यू नो तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उन लोगों की नजर में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर ए आर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे, आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा ए आर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
1: अरे गजब।
0: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था।
1: एग्जैक्ट 6 महीने।
0: एग्जैक्ट 6 महीने।
1: वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
0: जादुई है, जादुई है सर, इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
1: दीपाली ये एक ऐसा गाना है मैं वापस आऊंगा।

0: का ना कि आज इस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गईं, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुन कर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ हम आपसे वो गाना लाइव सुने।
1: जी जरूर अपनी।

0: जब आप ये सारे गाने एक के बाद एक गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं, ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं है
1: जी।
0: ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है।

0: तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे, क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीजों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट है हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में, वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बहुत बड़ी
0: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके
1: संशय था।
0: हाँ, कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं,
1: बिल्कुल
0: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है, ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं ये लोग। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है, और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है, कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो,
1: वाह वाह।
0: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूं, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूं। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा। ये
1: बिल्कुल
0: सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की, इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार, ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सर के पास,
1: बिल्कुल
0: और
1: वो सुन के
0: इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
1: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी हैं
0: आ
1: जो, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
0: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
1: कंप्लीट एल्बम है,
0: कंप्लीट एल्बम है। यस,
1: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
0: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना। जिसने
1: अच्छा,
0: गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका,
1: बिल्कुल
0: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट,
1: उसको ये मौका दिया गया।
0: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है, रहमान
1: पर
0: सर
1: हमको तो आपकी आवाज में सुनना है।

0: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थी तब रहमान नहीं थे सामने।
1: नहीं थे जी।
0: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
1: जी,
0: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
1: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हमको यू नो 10 साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
0: क्या बात,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
0: बिल्कुल,
1: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी,
0: बोला ना,
1: सपने में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, और हम लोग चलना शुरू किए। और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उसके बाद हम लोग अंदर गए, और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं, और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है।
0: उनके लिए एक समाधि जैसा है,
1: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद।
0: वाह वाह।
1: और उसके अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम एआर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम।
0: ओ हो हो हो हो।
1: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने।
0: क्या बात है, क्या गाया?
1: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है।

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक ये मेरा स्टाइल है वैसे। किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मैं भी इसलिए शायद, वेरी गुड, एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, मछली के कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है। और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के, असली रूह इनमें है, तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था। और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास, उस समय 500 व्यूज से 5000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही सारे एहसास है, मुखड़ा तो रिपीट होता है।
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस था, क्या बात है।
1: वो लोग अटकते हैं इसमें,
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
1: जी,
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
0: वाह,
1: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहां तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
0: क्या बात है,
1: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
0: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की, हमने ऐश्वर्या की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए।
1: ऐश्वर्या से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी और

0: कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्य ने एक रियलिटी शो जीता था, वो बिहार से पहले थे। और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्य भी खड़े थे।
1: अच्छा।
0: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्य को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्य का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली हैं, बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था, तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है। पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
1: मतलब बरसों बाद
0: 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्य को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्य से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्य जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं। जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे। मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम होली डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: रफी भक्त हैं।
1: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त एक किशोर भक्त।
0: हाँ, ये
1: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
0: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, घर ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
0: बहुत,
1: है ना, बहुत। अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
0: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है। हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्य एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार हैं, और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहाँ एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
1: वाह वाह वाह,
0: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
1: वाह,
0: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है। क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले पापा मम्मी पापा माँ पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं। पर ऐश्वर्य से मिलके समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है,
1: बिल्कुल,
0: और पूर्णता से है,
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम। वो जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने। तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
1: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो
0: हाँ।

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ गया।
1: यस, ये पार्किंग लॉट सीरीज में था।
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर डी बर्मन
1: जी,
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो इसकी धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: दीपाली, बहुत प्यारी बातें आपके साथ हुई, और कुछ बातचीत ऐसी होती हैं कि ये लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो खत्म ना हो, लेकिन कहीं तो खत्म करना पड़ेगा।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किए हैं। इम्तियाज सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज हम जरूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं। चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों ना खड़े हों, वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया।
1: अमेजिंग।
0: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रस्तुत है विशेष रूपक साहित्य कल और आज। दोस्तों हिंदी दिवस केवल हिंदी बोलने या हिंदी में भाषण देने का दिन नहीं है, ये दिन हमें एक छोटा सा सवाल पूछने का अवसर देता है। क्या हम अपनी भाषा से उतना ही प्रेम करते हैं जितनी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं? भाषा तभी जीवित रहती है जब वो बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। 14 सितंबर हमारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है। हिंदी की कहानी सिर्फ 1949 से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि उन्हें तलाशते तलाशते हम संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तक पहुंच जाते हैं। समय बदला, बोलियां बदली, शब्द बदले और भाषा भी अपना रूप संवारती गई। ब्रज ने इसे माधुर्य दिया, अवधि ने उसे लोक की आत्मा दी।
1: पिपुरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो।
0: खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी को स्वरूप दिया। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और भारत की अन्य भाषाओं से आए शब्दों ने उसके शब्द भंडार को और विस्तार दिया। यही तो हिंदी की खूबसूरती है, वो अपने भीतर बहुत सारी भाषाओं को समेट कर चलती है, इसलिए हिंदी भाषा से बहुत जल्द प्यार हो जाता है।

0: दोस्तों, हिंदी आज हर वर्ग हर दौर के लिए कितना, कैसे और क्यों आवश्यक है, हिंदी किस तरह समृद्ध है, आइए जानें एक ऐसे साहित्यकार से जो लेखन की दुनिया के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पढ़कर युवा लेखकों की कलम समृद्ध होती है। आप हैं प्रियमवत जी।
1: किसी पीढ़ी के मन से जुड़ने के लिए किसी साहित्य या कहानी की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाता। पीढ़ी से जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ना कि ये कि कहानी या कि साहित्य अपने आप में समर्थ, प्रभावी और विस्तृत हो। भाषा को आप पीढ़ी के हिसाब से या समय के हिसाब से नहीं बदल सकते, बेशक कथ्य को बदल सकते हैं। कथ्य इसलिए बदल जाता है कि समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति बदलती है और चीज़ों के विश्लेषण और उसके अर्थ बदलते हैं। यदि नई पीढ़ी इनको समझती है तो वो अपने आप साहित्य से और कहानी से जुड़ेगी, और यदि मुद्दों को नहीं समझती तो वो कुछ भी करने पर इससे नहीं जुड़ेगी। प्रचार और प्रसार तो किसी भी भाषा का तब होता है जब वो रोजी रोटी से जुड़े या कामकाज की भाषा बने, या फिर लोग उस भाषा को स्वयं बनाए और स्वीकार करें, जैसा कि उर्दू के साथ उसने किया और जिसे अब हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। ये वही भाषा है जिसे लोग ने खुद गढ़ा। इसमें विदेशी शब्द भी हैं, इसमें फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली भी हैं, इसमें बंगला, मराठी भी हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, इनके शब्द भी हैं। ये भाषा लोक की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार अपने आप होता चलेगा। बाकी इसके अलावा सिनेमा ये काम करता है, रेडियो ये काम करता है, दूरदर्शन ये काम करता है, मनोरंजन के साधन ये काम करते हैं जो सब जगह पहुंचते हैं। साहित्य का ये काम मुख्य रूप से नहीं होता और वो ये काम इसलिए करता भी नहीं।
0: हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी, केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भाषा को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में नए विचारों के लिए मंच तैयार किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हम सबको याद आती है, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल। आज भी हिंदी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भी हिंदी की मशाल बुझी नहीं। सन 1993 में क्वींस कॉलेज वाराणसी के तीन विद्यार्थियों श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से हिंदी के विकास को नई दिशा मिली। देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य के संरक्षण और शब्द संपदा को समृद्ध करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के अनेक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और प्रकाशन हुआ यहीं से। शब्दकोश और साहित्यिक सामग्री तैयार की गई। इस तरह नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा से आगे बढ़ाकर ज्ञान, साहित्य और विचार विमर्श की सशक्त भाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिंदी के विकास में पत्रकारिता ने बड़ी भूमिका निभाई। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसके प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 1826 को कलकत्ता से इसका पहला अंक निकला। कल्पना कीजिए, उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न टेलीविजन। एक छपा हुआ पन्ना ही विचारों को दूर दूर तक ले जाने का माध्यम था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचारों का इतिहास नहीं है, ये जागती हुई भाषा और जागते हुए समाज का इतिहास भी है। हिंदी की यात्रा में कितने ही साहित्यकार आए, कबीर, सूर, तुलसी से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक का हिंदी में रचा गया साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह था। मुंशी प्रेमचंद ने किसान, मजदूर, स्त्री, गरीब और मध्यम वर्गीय जीवन की पीड़ा को साहित्य की आवाज बनाई। गोदान का होरी हो या कफन का संसार, प्रेमचंद ने हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे समाज का आईना बना दिया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर फिल्म बनी गोदान, जिसके निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। आइए यहाँ पर गोदान फिल्म का गाना सुनते हैं।

इसके बाद हिंदी में आई एक नई संवेदना, महादेवी वर्मा। उनकी लेखनी में करुणा थी, संवेदना थी और स्त्री मन की गहरी अनुभूति। महादेवी वर्मा का एक गीत फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल था, जिसे बड़े ही सुंदर ढंग से छाया गांगुली ने स्वर दिया और जयदेव का संगीत था।

मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र और समाज की चेतना को स्वर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने ओज भरा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने हिंदी कविता को अलग अलग रंग दिए और इसीलिए हिंदी साहित्य कोई एक रंग की तस्वीर नहीं, ये तो रंगों से भरी एक विशाल चित्रशाला है। यहाँ आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, जिसे आशा भोसले ने गाया है।

आज हिंदी भारत की सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैको जैसे अन्य कई देशों में भारतीय मूल के समुदायों के बीच हिंदी की अपनी अहम उपस्थिति है। डिजिटल युग ने तो हिंदी को एक नया आकाश दे दिया। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, हिंदी के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में देखी जा रही है। हिंदी किताबों के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी सांस लेती है। फिल्मी गीतों ने हिंदी के शब्दों को उन श्रोताओं तक भी पहुँचाया जिन्होंने शायद कभी कविता की किताब भी न खोली हो। और यहाँ हमें याद आते हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविता मंच से लेकर सिनेमा तक पहुँची, वो है बाल कवि वैरागी। उनके साहित्य में मालवा की मिट्टी की खुशबू थी, लोक जीवन की सहजता थी और शब्दों में आत्मीय मिठास। फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्होंने लिखा ये गीत।

0: गीत केवल एक फिल्मी गीत बनकर नहीं रह गया दोस्तों, उसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति का ऐसा सम्मोहन था कि गीत सुनते ही लगता है जैसे रेगिस्तान की रात में चांद उतर आया हो। बाल कवि बैरागी ने दो बूंद पानी, वीर छत्रसाल, क्षितिज, रानी और लालपरी, जादू टोना और अनकही जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। अनकही में उनका गीत मुझको भी राधा बना ले नंदलाल बहुत ही पसंद किया गया। हर दौर में कवियों का कविता के साथ साथ गीतकारी का सफर चलता रहता है और कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। जाने माने लेखक, फिल्म समीक्षक, गीतकार और लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने अपने विचार साझा किए हैं।
1: जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हिंदी में हजारों किताबें आई, थोड़ा सा अगर बढ़ के हम 25 से 30 साल का दायरा करें तो मैंने कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं किताबें। उसमें अगर हम नॉन फिक्शन या कथेतर के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी, जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है, जो किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब, अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर।
0: जी जी।
1: दूसरी किताब शेखर पाठक की दास्ताने हिमालय मुझे लगती है भाषा के स्तर पर भी और हिमालय को समझने के लिए, उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में।
0: जी।
1: और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
0: क्या बात है।
1: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टर पीसेस मुझे लगते हैं, एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ध्यान का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उस पर लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादंबरी, दूसरा है अनामिका जी का त्रिनधरी ओठ, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मातृसत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का अर्धसत्य बहुत समझ में आती है, इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो, और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से एक पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की आलो अंधारी, दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की उड़ान, जिसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेकर, राजनीतिक पक्षों लेकर बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का। और वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैलांचल, गोदान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वेदिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की डायरी और संस्मरणों की किताब है धुंध से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह भाष्य के तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाएं तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो तीन वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेनजी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की तीठिका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए। और सारी किताबें

0: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए
1: जी जी।
0: और राहुल जी की किताब वॉल जैसे गंगा, तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बोलती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की
1: जी।
0: अच्छी
1: जी।
0: हिंदी कैसे सीखें, पढ़ें, समझें, ये बातें। जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत होती हैं।
1: बिल्कुल। और हमें नैनन में आन बान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
0: नैनन में आन बान मैंने बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी, उसमें 12 मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञों पर लेख हैं, जिसमें पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, केसर भाई केरकर, रसूलन बाई, बेगम अख्तर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में निबंध है। और 100 पेज का उसमें नोट्स है भारतीय संगीत को, फोक म्यूजिक को, ज्यादातर शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल की बात है। ये समझने की दृष्टि देने के लिए उस किताब के लिखने के पीछे का ध्येय था कि हम गाना सुनते क्यों हैं और गाना सुन के सराहते क्यों हैं। उस किताब को लिखने की प्रेरणा जॉन बर्जर की किताब वेज ऑफ सिंग के ऊपर आधारित है, किस तरह से पेंटिंग को देखना समझना चाहिए, किस तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनना चाहिए। और अगर मेरी किताब पढ़ते हुए किसी युवा व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में, किसी संगीतज्ञ में, जो बच्चा सीख रहा है, जो गाने की तैयारी कर रहा है, भले वो प्लेबैक सिंगर बन रहा हो या शास्त्रीय संगीत रागदारी में सीख रहा हो, उसे ये मन कर जाए कि हमें रसूलन बाई की ये ठुमरी सुननी चाहिए, या हमें बड़े गुलाम अली खां का ये दादरा सुनना चाहिए, या हमें पंडित कुमार गंधर्व का ये निर्गुण सुनना चाहिए, तो वो किताब एक रीडर की तरह, एक सहायिका की तरह आपके साथ चलती। और मैं ये जरूर कहूंगा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि किसी भी किताब को, किसी भी कलाकृति को, किसी भी संगीत को, किसी भी सिनेमा को, किसी भी रचनात्मक कार्य को खारिज करने से पहले उसे एक बार देखें, उसे पढ़ते, उसके साथ हम कदम चले, सुनी सुनाई बातों पर, रिव्यू पर, या इसे इसलिए कि फला ने इसकी चर्चा नहीं की तो हमें नहीं देखना चाहिए, इस तरह का कोई निर्णय ना ले। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, आपके अकेलेपन की साथी, और वो आपको कहीं ना कहीं से संस्कारवान बनाती है।
1: एक अच्छी कविता जब गीत बनती है तो वो किताब के पन्ने से निकलकर लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसे ही कवि हुए गोपाल दास नीरज, जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता था। नीरज के गीतों में ललित काव्य दृष्टिगोचर होता है। नीरज के गीतों में कविता थी, दर्शन था, प्रेम था और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत अंदाज। फिल्म मेरा नाम जोकर हो या फिर हो प्रेम पुजारी, उनके गाने कालजयी होते हैं। उनके गीत जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ते हैं। आइए सुने प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत।

0: नीरज का ही लिखा ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन की क्षण भंगुरता पर सोचने के लिए विवश किया।
1: स्वप्न झरे फूल से।

साहित्य और सिनेमा दो अलग अलग संसार नहीं हैं। हिंदी साहित्य में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां किताबों से निकलकर जन जन की आवाज बन गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उन्हीं में से एक थे। 1920 और 30 के दशक में हिंदी कविता के मंच पर

उनकी कृति मधुशाला ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता सिर्फ मधुशाला तक नहीं ठहरी, उनकी कविता अग्निपथ ने संघर्ष और जीवन के प्रति अदम्य विश्वास जगाया। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और दोस्तों देखिए कितना सुंदर संयोग है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की यही कविता हिंदी सिनेमा तक पहुंची और फिल्म अग्निपथ के साथ एक नई पीढ़ी की जबान पर चढ़ गई। इस फिल्म में उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। यही तो हिंदी की ताकत है, कविता किताब से निकलती है, गीत बनती है, सिनेमा तक पहुंचती है और फिर लोगों के दिलों में बस जाती है। दोस्तों विविध भारती के संग्रहालय में कुछ ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता उन्हीं के स्वर में।

0: इस कार्यक्रम में अब जरा चर्चा कर लें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। आपको जानकारी दे दें, सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला ज्ञानपीठ, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1992 में नरेश मेहता को, 1999 निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में मिला केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2017 में कृष्णा सोवती को, 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा हमें किताबों से किस तरह जोड़ती है, इन दिनों कौन कौन सी किताबें पढ़ी जा रही हैं, बता रहे हैं एक विलक्षण कथाकार मनोज रूपड़ा।
1: पच्चीस साल का वक्त तो काफी लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि भाई मेरी अपनी जो पसंद है या जो मैंने बहुत मन से जो बहुत गहराई से जिन किताबों को पसंद किया, तो उसमें मंजूर एहतसाम की किताब है बशारत मंजिल, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का अस्सी, फिर रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, और शिवमूर्ति का तो अभी हाल ही में आया है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं इन 25 सालों के, क्योंकि वो एक क्लासिकल उपन्यास है वो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मैं अब उन उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूँ जो समकालीन होते हुए भी क्लासिकल दर्जा पा चुके हैं। तो शिवमूर्ति का उपन्यास है गंभ है दरियाओ, और नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है पारिजात। तो ये पांच उपन्यास पसंद के जो मैंने जिक्र किया, और उसके अलावा क्योंकि मेरा अध्ययन जो है ना अनुवादों पर भी बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, तो पांच ऐसी किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए, उसमें हंगरी की एक लेखिका है मागदो साबा, उसका उपन्यास है दरवाजा। नॉर्वेजियन राइटर है थारियो वेसास, बहुत प्यारे लेखक हैं, और उसका बहुत खूबसूरत अनुवाद तेजी ग्रोवर ने किया है। उपन्यास का शीर्षक है परिंदे। समरसेट मॉम का उपन्यास है चांद और छह आने, ये कला की दुनिया के बहुत अलग तरह के जो कश्मकश होती है उसका उपन्यास है ये। फिर उसके बाद मार्गो वर्सेस लोसा का उपन्यास है किस्सा वो, और हमारे जो सबसे बड़े इन 25 सालों के बीच के जो अंतराल के जो मास्टर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनका उपन्यास है एकांत के 100 वर्ष। ये तो सबको पढ़ने चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। इन उपन्यासों को पढ़कर कई तरह के मतलब परिप्रेक्ष्य खुलते हैं।
0: आपने एकांत के 100 वर्ष का जो जिक्र किया मार्केस, तो इसका अनुवाद उमा शर्मा जी ने किया, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक किताब और आपको याद दिला रही हूँ मैं, काला बछड़ा सफेद बर्फ,
1: हाल ही में अनुवादित हुआ है, पढ़ा है मैंने वो भी, मतलब अगर इन 25 सालों में उसको हम रखें तो वाकई वो एक क्लासिकल उपन्यास है। हमारे यहाँ इस तरह की राइटिंग है नहीं, हमारे यहाँ अंदरूनी जो संश्लिष्ट यथार्थ है उसकी जो बारीक परतें हैं उसको खोलने का हुनर अभी तक हमारे लेखक में नहीं है। इसलिए हिंदी के लेखक को खास तौर से वो उपन्यास पढ़ना चाहिए कि अंदरूनी जो परतें होती है यथार्थ की उसको कितनी महीनता से कितनी बारीकी से एक लेखक खोलता है, ये अगर जानना है तो ये उपन्यास पढ़ना चाहिए काला बछड़ा, और इसका अनुवाद भी बहुत खूबसूरत हुआ है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एक लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं होता, एक लेखक का काम रचनात्मक माहौल बनाना भी होता है। अगर हम अपना लेखन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बाद के लेखकों के लिए कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा रचना कर्म भी अधूरा है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मैंने सीखा है मेरे से जो सीनियर थे मंजूर एहतसाम, सत्येन कुमार थे, कमला प्रसाद जी थे, इन लोगों ने हमेशा युवा लेखकों को जिनको कुछ भी नहीं आता था, जैसे मैंने लिखना शुरू किया था एक वर्कशॉप में शुरू किया मैंने, वो वर्कशॉप यानी कहानी का एक छोटा सा मतलब एक प्रशिक्षण। अब आप सोचेंगे कि भाई लेखन का भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है, हाँ मैंने प्रशिक्षण शिविर में कहानी लिखना सीखी है, वो युवाओं के लिए था जिन्होंने एक कहानी भी नहीं लिखी थी, पहली कहानी उसमें लिखी गई उस प्रशिक्षण शिविर में। तो हमारे यहाँ परंपरा है मतलब युवा लेखन को प्लेटफॉर्म देने की, ये कोशिश होती रहनी चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा के विचार। दोस्तों, किताबों से नाता जोड़कर हम समाज से जुड़ते हैं, हम संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। इन दिनों कौन कौन सी जरूरी किताबें आईं जिन्हें पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने साहित्यकार कैलाश वानखेड़े। आइए सुनते हैं कैलाश वानखेड़े के विचार।
1: ये एक बेहद मुश्किल सवाल है कि एक किताब का नाम बताया जाए और भारत में जिस तरह से जटिलता है और जो सामाजिक परिवेश है, मुझे लगता है कि पाठकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन नाम की जो आत्मकथा है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि भारतीय समाज की जो अंतर्निहित व्यवस्था है और जिसमें जो प्रताड़ना और उपेक्षा के साथ साथ एक संघर्ष का हिस्सा है वो इस किताब में है। और मुझे लगता है कि हर पाठक को भारतीय समाज को समग्र रूप से समझने के लिए जरूरी है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जरूर पढ़े। उसी तरह से तुलसीराम की मुर्दहिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो कि हमारे परंपरागत समझ और जो हमें विरासत में मानसिकता मिलती है उसकी जड़ता से प्रहार करने के लिए और समग्र समाज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब को भी जरूर पढ़े। एक भारतीय समाज के उस रूप को और व्यवस्था को उजागर करती है जिससे कि अमूमन सामान्य पाठक अछूता रहता है। इन किताबों को इस लिहाज से पढ़ा जाना चाहिए कि समग्र भारत, समग्र समाज किस तरह से है और उसकी क्या क्या दिक्कतें, परेशानी, संघर्ष और सपने क्या क्या है। सारे पाठकों को हिंदी की किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, जो उसकी पसंद सुविधा हो उस दिशा में उन्होंने अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी पसंदीदा किताब इसी तरह से बनती जाएगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, किताबों के संसार में दाखिल होते जाएंगे तो नई नई किताबों का भी उन्हें दर्शन होगा और वो इन किताबों को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अपने मानस को समझने के लिए, अपने दृष्टिकोण को व्यापक, उदार और समतामूलक बनाने के लिए वो इस दिशा में जरूर एक प्रभावी कदम उठा सकेंगे। कुछ मराठी साहित्यकार है जिनको कि बचपन के समय में पढ़ा था, वामन निंबाळकर हो, नामदेव ठसाल हो, मनोहर वाकोड़े हो, या फिर अगर मैं बात करूं दया पवार की, इन लोगों को बचपन और किशोरावस्था में पढ़ा था। बाद में प्रेमचंद से जो है कहना चाहिए कि एक अच्छी मुलाकात हुई, जिनके की समग्र साहित्य को पढ़ा गया, राजेंद्र यादव को पढ़ा, तरह के लेखक रहे हैं जिन्होंने मेरे अपने लिखने और समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति को जो है किताब जरूर पढ़नी चाहिए, अपने साथ अपनी यात्रा में किताबों का साथ रहना चाहिए। जब भी मौका मिला वो किताबों के पन्ने उल्टे और उसको पढ़ने में अपना वक्त दे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है, उससे दोस्ती जो करेगा वो आदमी, वो इंसान जिंदगी भर व्यस्त रहेगा, खुश रहेगा, यही मुझे लगता है।
0: आप सुन रहे थे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने कथाकार कैलाश वानखेड़े के विचार। अब एक ऐसे साहित्यकार के विचार जिन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है और अनुवाद भी किया है। ये है उर्मिला शिरीष।
2: हिंदी साहित्य में कहानी कहने के नए माध्यम आ गए हैं। मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आज जो भी पाठक हैं, श्रोता हैं, वो इस तरह के साहित्य की तरफ उन्मुख हो रहे हैं जिसका कट सीधे सीधे भाषा के माध्यम से उनके दिल दिमाग में उतर जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कसाव होगा कथ्य में और भाषा जितनी रोचक होगी, संप्रेषणीय होगी, उतने ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी को आत्मसात किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाकर और कहानी को यदि हम कहते हैं तो जो मूल कहानी का भाव है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। और मुझे लगता है कि आज के इस बदलाव के समय में जब मीडिया और सोशल मीडिया चारों तरफ हमारे है और हम उन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कथ्य के कसाव पर, कथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भाषा पर भी बहुत

0: ध्यान देना चाहिए, जो भाषा सीधे सीधे हमारे श्रोताओं को और हमारे पाठकों को हमारी रचना का जो मूल भाव है, जो केंद्रीय भाव है, हम कहानी में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो रोचकता के साथ उनके अंतरतम में पहुंच सके। दूसरी बात ये कि साहित्यकार, मीडिया और नई पीढ़ी, ये बिल्कुल सही बात है कि तीनों आज बराबर से साहित्य जगत में अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं और इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कहानी या कविता जब हम लिखते हैं तो यदि वो श्रोताओं या दर्शकों तक नहीं जाती है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हमें अपनी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जो आधुनिक नए माध्यम आए हैं उनको भी अपनाना जरूरी है। तो दोनों परंपरा और आधुनिकता नए माध्यमों के बीच इस तरह का तालमेल बैठाकर हम चल सकते हैं कि उसकी भाषा और शैली अक्षुण रहे और हमें ये लगे कि हम स्तंभ में जो हमारी कहानी की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आधुनिक माध्यमों के रूप में भी हम कहानी को सुन रहे हैं। जैसे मैंने अनुभव किया है कि प्रेमचंद की कहानियां आज भी उतनी ही अच्छे ढंग से नए माध्यमों के द्वारा सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो आधुनिकता का और परंपरा का दोनों का समन्वय मैं मानती हूँ कि होना चाहिए।
1: तो ये थे जानी मानी कथाकार उर्मिला शिरीष के विचार। दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि रहे जिन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी यादगार गीत दिए। कुछ कवि और गीतकारों का जिक्र हमने पहले किया। एक जाना माना नाम है कवि और गीतकार शैलेंद्र, प्रगतिशील कवि और गीतकार जिन्होंने गीत लिखा आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो।

शकील बदायूनी, नक्श लालपुरी, शायरी के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि प्रदीप का नाम भला हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई और बाद के दिनों में उन्होंने ललित गीत लिखे।

0: लीजिए अब सुनिए उनकी बात, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, सुधी पाठक हैं और हैं रेडियो प्रेमी विनीत कुमार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी, शुक्रिया ममता जी। पिछले 15-20 साल में जो किताबें जो मुझ पर बहुत असर कर पाई, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तुलसीराम जी की मुद्दैया और मणिकर्णिका, ये दोनों किताबें उनकी आत्मकथा है। और एक तो ये जीवन संघर्ष और जीवटता की किताब है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसीराम जी के बचपन के जीवन संघर्षों को बताती है। छात्रों को ये किताब हर हाल में, या फिर युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं करियर बनाने की, छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में जद्दोजहद करें, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत एक हौसला उनका बढ़ता है, मिलता है। और तुलसीराम ने उत्तर प्रदेश के जिस छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक हुए, लेखक हुए, पूरी किताब की यात्रा से जब गुजरेंगे हमारे युवा और युवा पीढ़ी के लोग, बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरी किताब आई दाता पीर, और पटना की पूरी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई हृषिकेश सुलभ का ये उपन्यास है। ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इसमें जो भाषा की मिलावट और घुलावट है, आमतौर पर हम भाषा में मिलावट शब्द को बड़े ही निगेटिव, बहुत नकारात्मक ढंग से देखते हैं, कितनी अलग अलग खित्ते की भाषा बड़ी ही खूबसूरती के साथ आती है। और ये किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि गलत और सही की बहस से अलग कैसे अलग अलग जनपद की भाषा, उसकी बुनावट एक मुकम्मल, एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे ऊपर असर करती है। तो ये किताब मैं चाहूंगा दाता पीर लोग पढ़ें, और मुझ पर असर करती है ये किताब बहुत गहरे जाकर। चौथी किताब रेडियो कोसी, पुष्यमित्र ने लिखी है, पेशे से पत्रकार। रेडियो कोसी के बहाने एक मार्मिक कथा बिहार की तो लिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के जो थोड़े उजास पक्ष हो सकते हैं, जो उजले उसके रूप हो सकते हैं, और उससे कैसे जिंदगी बेहतर हो सकती है, एक तरफ वो कहानी बताती है और दूसरी तरफ इसके जो साफ पक्ष है उसकी कहानी बताती है। तो नए लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी और पढ़ी जानी चाहिए। कविता में ईश्वर और बाजार मैंने काव्य संग्रह जयंतिता केरकेटा की पढ़ी है, और जो तार्किक समझ होती है जल जंगल जमीन के बीच की, हमारी जो जिंदगी है उसे किस तरह से बचाया जाना चाहिए, उसके क्या तर्क हो सकते हैं, और कैसे वो हमारे पैदा होने के साथ ही सवालों के साथ ये चीजें जुड़ती है, इसके लिए ईश्वर और बाजार किताब मुझे बहुत पसंद आई। एक आखिरी किताब की मैं चर्चा करना चाहूंगा, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये हृदय जोशी हैं जो पेशे से पत्रकार रहे हैं।

0: भी पत्रकार रहे हैं और हृदेश जोशी ने 2013 में जो उत्तराखंड में भारी तबाही हुई, साइक्लोन जाने गई, उस दौरान वो कवर करते रहे और तब से लेकर कई सालों तक बार बार फॉलो अप करते रहे, देखते रहे उस घटना के बाद की जिंदगी को। तो उस सिरे से इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, तुम चुप क्यों रहे केदार। और यहाँ केदार एकदम बिल्कुल मानवीकृत रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लगता है कि जितनी जिंदगी हमें कीमती लगती है, उतनी जिंदगी पहाड़ की भी, जंगल की भी, खेतों की भी, नदियों की भी है और होनी ही चाहिए।
1: जी क्या बात है, बहुत अच्छा लगा इतनी सारी किताबों का आपने जिक्र किया। यहाँ पर दो किताबें हम भी अपनी ओर से जोड़ दें, एक तो ऋषिकेश सुलभ जी की दातापीर का आपने जिक्र किया, तो उन्हीं की किताब जूठी गली, उन्हीं का उपन्यास है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कैलाश बानखेड़ी की किताब उजला अंधेरा, ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खुद एक युवा हैं, तो आप युवाओं और आपसे बाद की जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए हिंदी पखवाड़े पर, हिंदी दिवस पर क्या संदेश देंगे, कैसे आप हिंदी से जोड़ना चाहेंगे उन युवाओं को जो पढ़ने से, किताबों से कहीं दूर जा रहे हैं?
0: ममता जी, मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, टेलीविजन, रेडियो और क्लासरूम के बीच जो मेरी दुनिया है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे किसी भी रूप में आपको मीडिया और अभिव्यक्ति दिखाई देती है, लेखन और भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप दुनिया की तमाम चमकीली चीजों को ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ पाएंगे, उसके अंदरूनी दुनिया को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी की जो पूरी बनने की यात्रा रही है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संघर्ष है इसमें। मैं चाहूंगा कि रील्स, वीडियो और नए माध्यमों की चमक के बीच इसे खोने मत दें, वापस मुड़कर पुस्तकालय की तरफ जाएं, किताबों की तरफ जाएं। लेखक पत्रकारों की लिखी दुनिया भर की चीजें हैं, आप एक बार जरूर देखें।
1: जी
0: गुजरे,
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें आपने बोली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। आप सुन रहे थे प्रोफेसर और सुधी पाठक, रेडियो प्रेमी विनीत कुमार के विचार, हिंदी साहित्य कल और आज। आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। आज के विविधा कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को हमने शामिल किया उनके नाम हैं प्रियमवद, यतीन्द्र मिश्र, मनोज रूपड़ा, कैलाश वानखेड़े, उर्मिला शिरीष और विनीत कुमार। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
2: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
3: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
1: जी,
3: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल

0: फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत दाग द फायर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे चंदा की डोली एल्बम का नाम। नुसरत बद्र ने इसे लिखा, संगीत सोनू निगम का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी चुनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना दीवाना एल्बम से, सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर ने उसे लिखा और साजिद वाजिद का संगीत था।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने ये साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
0: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रादेशिक समाचार नमस्कार नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। भारत के संयुक्त सचिव ए. मुथु कुमार का पश्चिमी

0: भूमदौरा, प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना की समीक्षा की, जागरूकता रथ को किया रवाना। दुमका का मसानजोर डैम बनेगा मत्स्य उत्पादन और व्यापार का बड़ा हब। केंद्र की इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग योजना से रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। झारखंड के हर जिले में आईसीयू की सुविधा सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, टेली आईसीयू से लोगों को मिल रही मदद। चतरा पत्थलगढ़ा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे ने तेज की सर्वे प्रक्रिया, रेलखंड की ड्रोन वीडियोग्राफी को मिली मंजूरी। और रांची में खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक साइकिलिंग झारखंड लीग का आयोजन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हुए सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और कृषकों को योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान भारत सरकार के संयुक्त सचिव ए. मुथु कुमार भी मौजूद थे। श्री मुथु कुमार ने कहा कि किसानों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी सहज एवं सरल माध्यम से पहुंचाना आवश्यक है। इससे पहले श्री मुथु कुमार ने कल प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कृषकों से योजना के क्रियान्वयन के दौरान आ रही समस्याओं एवं चुनौतियों की जानकारी लेने के साथ सुझाव प्राप्त किए।
1: पेंशन को हम लोग टैप कर पाए, इसके विवरण में काफी विस्तृत चर्चा हुआ। डिपार्टमेंट के लोग भी थे, हमारे किसान बंधु लोग भी थे, पॉजिटिव वे में हम लोग चर्चा किए हैं। और जिला के स्तर से भी जो उपाय पूरे समय दिए हैं, मैं सबको धन्यवाद दूंगा और इसको हम लोग और ऐसे आगे बढ़ाएंगे।
0: दुमका का ऐतिहासिक मसानजोर डैम अब केवल सिंचाई और पर्यटन तक सीमित न रहकर आधुनिक मत्स्य उत्पादन और व्यापार के एक बड़े हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: केंद्र सरकार की इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग योजना के तहत मसानजोर डैम के समीप 4 हेक्टेयर क्षेत्र में अत्याधुनिक हैचरी, प्रोसेसिंग यूनिट, फीड मिल और फिश मार्केटिंग सहित पूरी सप्लाई चेन विकसित की जाएगी। 110 करोड़ रुपए की इस केंद्र प्रायोजित योजना से स्थानीय विस्थापितों और मछुआरों को उनके मत्स्य उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा। दुमका से बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों तक मत्स्य व्यापार के नए द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही जिले के 10 अमृत सरोवरों और अन्य जलाशयों में भी मत्स्य पालन और झींगा पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्षेत्र में आजीविका और रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाएगी। हजारीबाग में इसे लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप यादव ने कार्यक्रम की जानकारी दी।
3: सेवा संकल्प अभियान पूरे एक महीने तक पूरे देश में मनाया जाएगा। 2047 में जो विकसित भारत का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसमें कैसे आमजन लोग जुड़े, हमारे बच्चे कैसे जुड़े और देश में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी देने का कार्यक्रम करेंगे। फिर रक्तदान शिविर लगाएंगे, वृक्षारोपण के माध्यम से इस तरह विभिन्न तरह का 25 तरह का कार्यक्रम है। अभी
0: रांची में 14वें ईस्ट जोन क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के बाद अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि झारखंड के प्रत्येक जिले में आईसीयू की सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही दूरदराज तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 बेड वाले टेली आईसीयू के माध्यम से जिला स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 150 से अधिक विशेषज्ञ और 200 से अधिक चिकित्सक भाग ले रहे हैं। रांची में रिंग रोड स्थित ट्यूलिप हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 सितंबर को अस्पताल में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के निर्देश पर रांची के सिविल सर्जन ने अस्पताल का पंजीकरण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन विस्तृत जांच पूरी होने और सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 2,64,89,400 रुपए की राशि जारी की है। इस राशि से सभी जिलों में सेमिनार, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग और पंपलेट के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रखंड में 5 नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन होगा। विभाग ने संबंधित गतिविधियों के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा पत्थलगढ़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे ने सर्वे प्रक्रिया तेज कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: चतरा को बिहार के गया जिले के परैया से जोड़ने वाली परियोजना को पूर्व में ही रेल मंत्रालय ने विशेष रेल परियोजना घोषित किया है। वहीं अब चतरा पत्थलगड्ढा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के सर्वे की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इस रेल खंड के लिए जल्द ही सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सर्वे के लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जाएगी। जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने इसकी अनुमति दे दी है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: FSSAI ने भ्रामक दावों, मिस लेबलिंग और खाद्य मानकों के उल्लंघन समेत 115 खाद्य उत्पादों को चिन्हित किया है। रांची समेत पूरे झारखंड में इन उत्पादों की बिक्री और स्टॉक की जांच तेज कर दी गई है। रांची के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सौरव सिंह ने बेड़ो और इटकी में खाद्य संस्थानों में छापेमारी की और विक्रेताओं को इससे जुड़े निर्देश दिए।
5: रिटेल आउटलेट जितने भी हैं, स्टोर हैं, वहाँ पे जांच किया। जो भी फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, लेबल वाले हैं या मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट वाले, FSSAI ने 115 प्रोडक्ट का जारी किया था लिस्ट, जिसमें से हम लोग रेगुलर इंस्पेक्शन करके उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं और बेचने पे भी रोक लगवा रहे हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, तो उसको अभी हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं।
0: 5 दिन बाद भी कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में डूबे जहानाबाद के छात्र सागर कुमार का शव अब तक पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका है। पटना से आई NDRF 9 बटालियन की 30 सदस्यीय टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। NDRF के टीम कमांडर मुकेश कुमार ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
6: हम लगातार यहाँ अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको ढूंढ करके निकाले। पहाड़ी के साइड साइड में जो खेत हमारे डीप डाइवर्स ज्यादा करके वहाँ पे अपना खर्च किए हैं। वाटरफॉल है जो काफी ज्यादा वेग से बह रहा है, तो हमें नीचे जाने में, ट्रेवल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मार्केशन में अपना काम कर रहे हैं।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल समापन पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड देवघर द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मेला के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले विद्युत विभाग के अधिकारियों, कर्मियों और मानव दिवस कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान करीब 120 लाइनमैन और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरायकेला छऊ को देश की सीमाओं से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाले प्रख्यात नर्तक, कलाकार और छऊ के गहरे जानकार अंचित कुमार आचार्य का निधन हो गया। उन्होंने 87 वर्ष की आयु में राउरकेला स्थित अपने आवास पर सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन से सरायकेला के छऊ कलाकारों और कला जगत में शोक की लहर है। खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक साइकिलिंग स्टेट लीग 2026 का रांची के खेलगांव स्थित सिद्धू कानू वेलोड्रोम स्टेडियम में शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्य के 15 जिलों की महिला साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में वुमेन एलीट और वुमेन जूनियर वर्ग की विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ए मुथु कुमार का पश्चिमी सिंहभूम दौरा, प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना की

0: समीक्षा की, जागरूकता रथ को किया रवाना। दुमका का मसानजोर डैम बनेगा मत्स्य उत्पादन और व्यापार का बड़ा हब। केंद्र की इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग योजना से रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। झारखंड के हर जिले में आईसीयू की सुविधा सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, टेली आईसीयू के माध्यम से लोगों को मिल रही मदद। चतरा पत्थलगढ़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे ने तेज की सर्वे प्रक्रिया। रेलखंड की ड्रोन वीडियोग्राफी को मिली मंजूरी। और रांची में खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक साइकिलिंग झारखंड लीग का आयोजन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हुए सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत जो है प्यार के उस सबसे पावन और परिपक्व रूप को दर्शाती है, जहां पा लेने से ज्यादा महत्व है महसूस कर लेने का। और इस कहानी में मिलना, बिछड़ना और फिर तड़प तो है ही, लेकिन आखिर में कोई शिकायत नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार जवाब या हक नहीं मांगता है, वो सिर्फ मौजूदगी का एहसास मांगता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसे, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वक्त अपनी रफ्तार से चला जा रहा है, वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। ये इबारत से उन्होंने पंक्ति उठाई है और कहा है कि इस इबारत में ये जो रंग शब्द है, इससे हमने ये रंगीला रे गीत जो है अभी आपको सुनवाया। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा और सही लिखा है। और आपके जो अनुभव उस पहली मुलाकात, या यूं कहिए कि एक मुलाकात के, वो किसी से भी हो सकते हैं जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो, आपको बदल दिया हो, आपके सोचने के नजरिए को बदल दिया हो। इस तरह के संदेश आप मुझ तक पहुंचाएं। हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ, दूसरे यानी कि अगले गीत की तरफ इस प्रोग्राम के।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत शक्ति फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और मुलाकात जिसने बदल दिया हो या जो याद रह जाए, उसमें एक संदेश आया है हमारे श्रोता का। लिखते हैं कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले वो सिंगापुर गए थे और वहां 3 साल की मासूम जापानी बच्ची साशा से मुलाकात हो गई थी, जिसने उस सफर में अपनी बाल लीलाओं से दिल लुभा दिया था। और अब तो साशा काफी बड़ी हो गई होगी, 20-25 साल की युवती हो गई होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ उसकी सुंदर तस्वीर और यादें ही रह गई है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो एक लड़की जिसका न्यू एडमिशन हुआ था, वो एक सप्ताह तक स्कूल आई लेकिन फिर उसको स्कूल में नहीं देखा। शायद वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हों और उस समय तो नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। एक सप्ताह में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आज तक उन्हें वो बात याद है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ लोग जरा देर से खुलते हैं तो पहली मुलाकात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन वो अगली मुलाकात आनी भी तो चाहिए। अगले हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि पहले सफर में किसी अजनबी से मुलाकात का एहसास दिल में एक अनूठी हलचल, अनजाना सा अपनापन और एक खूबसूरत याद छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता का लिखना है कि परिपक्व प्रेम मुलाकातों का मोहताज नहीं होता, अदृश्य रहकर भी समर्पित प्रेम किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर भाव। हमारी एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सभी को यथा योग्य सप्रेम अभिवादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज जागो सुबह हो गई से जगे कुछ अपने ही पग में पगे, संगीतमय सुरों की सरिता में घुलकर, भूले बिसरे गीतों की चांदी में नहाकर और हम हराई प्यार की आंधी में त्रिवेणी तट से सुबह कालीन चित्र लोग के साथ फिर आज के फनकार से मिलते हुए और गीतों के पिटारे को खोलते हुए साहित्य परिचर्चा यादों की महफिल से उबरते हुए अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम तक वो पहुंच चुकी हैं, वो शामिल हैं हमारे साथ। जी हाँ, हमारे सभी सुबह से जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उनका एक सुंदर, कहते हैं एक सुंदर माला बना दी है आपने इन शब्दों को जोड़कर, उन शीर्षक को जोड़कर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। फिलहाल हम ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारी श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात की जब बात चली है तो एक बहुत ही खास मुलाकात उन्हें याद आती है और वो अपनी शादी का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जो शादी हुई है वो भी विविध भारती के जरिए ही हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको सुनवाते हैं कि ये भी विविध भारती के फैन रहे हैं और इनकी जो अर्धांगिनी है वो भी विविध भारती की दीवानी थी और बस ऐसे ही धीरे धीरे विविध भारती से जुड़ाव होता रहा और नज़दीकियाँ हुई और फिर शादी हो गई। आज हम साथ साथ हैं और साथ साथ में ही ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर हमें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें बस याद बनकर रह जाती है, आज लगता है उस धुंधली यादों से कोई चादर हटा दे और हम खो जाएं उन पुरानी मुलाकातों में। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि अहमदाबाद जाते हुए परिवार से ट्रेन में हुई, जो सामने की बर्थ पर जा रहे थे वहाँ उनसे मुलाकात हुई और वे सज्जन तो भद्र पुरुष थे ही, उनकी श्रीमती जी बड़ी हंसमुख और मिलनसार महिला थी और वो अकेले जा रहे थे, मैगजीन में डूबने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों से इतने घुल मिल गए कि बातों ही बातों में घंटों का सफर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा होता है अक्सर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात तो सभी करते हैं लेकिन मुलाकातों में जीते भी हैं, लेकिन ये मुलाकातें कैसी हैं और उसके मूल्यांकन क्या है ये कितने सोच पाते हैं, किंतु ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ मुलाकातें याद बनकर हृदय में बस जाए तो उसका क्या ही कहना। सदियों से विभिन्न मुलाकातों के बीच ऐसी मुलाकात की तो प्रतीक्षा रहती है हमेशा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ट्रेन में सफर करते हुए एक लड़की और उनकी सहेलियों से मुलाकात हुई और अंताक्षरी वगैरह खेली और अभी उन्हें वो याद आती है, वो सुनहरी मुलाकात आज तक भुलाए नहीं भूलती है। हमारे एक और श्रोता है, उनका कहना कुछ अलग तरीके से है। वो कहते हैं कि सफर में न जाने कितने लोग साथ आते हैं, कितने साथ छोड़ देते हैं, कभी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, वो इसमें बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं, सफर तो हमें करना ही है, कभी कोई साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो हमें अकेले ही चलना है, लेकिन ये सफर जो है वो जरूर तय करना है। फिलहाल सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: अभिमान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज थी।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम याद, प्रोग्राम सुरीला सफर। यादों की बात चली है तो यादों की महफिल बोलने वाली थी, लेकिन सुरीला सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे यानी अनुराधा के संग। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि ट्यूशन पढ़ते समय शिक्षक द्वारा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते देखकर उसकी नज़रें उठाना और फिर मुस्कुराना और फिर मुझसे नज़रें मिलते ही नज़रें झुकाकर बस मंद मंद मुस्काना, जाने कैसी बिजली सी कौंद गई थी दिल में और दिल रोशन हो गया था। संवाद का लेन देन तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन

ये सुनहरी यादें बनकर अब तक दिल में बसी हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातों का मौसम आ गया है तो गाने तो बनते हैं, बिल्कुल गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आप कौन से गीत का इंतजार कर रहे हैं ये जरूर लिख भेजिए। देखते हैं अब फहरिस्त जो बाकी की बची है उसमें वो गीत आता है या नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अजनबी था मगर कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब अचानक सामने आ गया। मुलाकात तो बस चंद लम्हों की थी पर उसकी खामोशी देर तक मेरे साथ चलती रही। जी हाँ बिल्कुल, कुछ मुलाकातें एकदम खामोश रहती हैं, संवाद भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक चेहरा, वो एहसास कभी नहीं भूल पाता। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

से अभी आप सुन रहे थे, इंदिवर ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरी सोच और शख्सियत को ही बदल दिया है। कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एलिफेंटा केव्स जाने के लिए बोट की कतार में खड़े थे और वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और ठीक उनके पीछे खड़े हैं और इन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप लाइन में खड़े होने के बजाय पहले बोट में बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मना किया और ये कहा कि मैं यहाँ एक आम नागरिक के तौर पर हूँ और मैं लाइन में ही खड़े रहूँगा। ये कहीं का जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर के रख दिया और तब से उनकी सादगी के और भी ज़्यादा फैन हो गए। जी हाँ, ये तो है कि सादगी तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए जहाँ से भी हमें सीखने को मिले और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती इस वक्त न जाने कितने सारे करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पेश हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वो रिलेट कर पा रहे हैं गीतों से और बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखती हैं कि वो और उनके पति भी उन्हें रेडियो से ही मिले। सूरत FM पर उन्होंने ये गीत पसंद किया था और सामने जो बैंक में बैठे उनके पति हैं उन्होंने सुना था और बात भी पैसों पैसों की हुई थी क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका मिलना हुआ, बातचीत हुई और आगे उनकी शादी हुई। बहुत अच्छा लगा कि रेडियो के मार्फत आप मिले। हम चलते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

किशोर कुमार की आवाज में गीत गोलमाल फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो सुरीला सफर है इसमें गीत तो सुनने को मिलते ही अच्छे अच्छे, लेकिन साथ ही साथ हम संदेश भेजें या ना भेजें, लेकिन जो बाकी श्रोता लोग हैं उनके संदेश पढ़कर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने संदेश अगर यहाँ पर लिखें तो कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे को श्रोता लिखते हैं कि मोहब्बत का अर्थ हमेशा साथ पाना नहीं, कभी कभी मिले हुए खूबसूरत पलों को मुस्कुराकर संजो लेना भी है, और ऐसा ही कुछ इबारत में एक छोटी सी मुलाकात के द्वारा बताया गया है। बिछड़ने की कसक तो है, लेकिन जाते जाते उन खूबसूरत याद जो है वो दिल में हमेशा जीवित रहनी चाहिए, ये भी बताया हुआ है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मंजिल नहीं बनते मगर सफर को यादगार बना जाते हैं। वक्त उन्हें दूर कर देता है लेकिन उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती है, और बस जब मन करता है हम उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे पलों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर के दौरान किसी अजनबी से सिर्फ एक मुलाकात होने के बाद कभी दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो बहुत से खूबसूरत पलों से जिंदगी को भर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने।

किशोर कुमार की आवाज़ में पड़ोसन फिल्म का ये छोटा सा गीत का छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया। फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हमें अलविदा कहना पड़ेगा। आपने आज का ये सफर, सुरीला सफर, तय किया अनुराधा के संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन

0: यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिशकनक, आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिकी है, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन

0: टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
1: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत तेरे घर के सामने फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मधुमति फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच में लीपापोती किए जाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों के नाम सामने आने पर बयानों से उन्हें हटाने और छोटे आरोपितों पर कार्रवाई कर बड़े आरोपितों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री मरांडी ने आज कहा कि बयानों की पूरी वीडियोग्राफी हो और मूल वीडियो बयान तथा सभी डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं ताकि जांच में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का आग्रह किया है। धनबाद जिले के कतरास स्थित केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंसने से 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। वहीं कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष बिमलेश चौबे ने मृतकों के परिजन के लिए मुआवजा और स्थानीय प्रबंधन से बचाव कार्य तेज करने की मांग की है।
1: मांग हम लोग कर रहे हैं, लोकल जो मैनेजमेंट है और स्थानीय प्रशासन आके कम से कम जो भी यदि है तो उसको रेस्क्यू करके निकाला जाए। अब इसका तो अब कोई विकल्प है नहीं, और हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो गरीब लोग को मुआवजा मिलना चाहिए उसको चिन्हित करके उसको मुआवजा मिले, किसी का परिवार पेट पालने के लिए कर रहा है।
0: धनबाद के नीरसा स्थित चापापुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में कोयला चोरी के खिलाफ छापेमारी के दौरान सुरक्षा टीम और ग्रामीणों के बीच आज झड़प हो गई, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल में सूखी लकड़ी चुनने गई 70 वर्षीय एक आदिवासी महिला के साथ सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट की। ग्रामीणों ने सीआईएसएफ की त्वरित कार्रवाई टीम और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल सुरक्षा के 3 वाहनों में तोड़फोड़ की तथा कई सुरक्षाकर्मियों को घेर कर बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने महिला से मारपीट करने वाले सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी, महिला के इलाज और मुआवजे की मांग की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। माल ढुलाई से रेलवे की आय में भी 6.27% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेलवे ने अगस्त में 5 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए, जिससे 31 अगस्त तक इनकी कुल संख्या 149 हो गई है। रेल मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने 14 अमृत भारत विशेष ट्रेनों को नियमित सेवाओं में बदला गया, जिससे देश में अमृत भारत ट्रेनों की कुल संख्या 86 हो गई है। रक्षाबंधन के दौरान भी यात्रियों की बड़ी मांग को देखते हुए रेलवे ने 25 से 31 अगस्त तक विशेष ट्रेनों में 144 फेरे चलाए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 48 फेरे चलाए गए थे। जामताड़ा जिले के गांधी मैदान में आज से 10 दिवसीय भव्य गणेश महोत्सव और मेला शुरू होने जा रहा है। महोत्सव और मेला आयोजन समिति के सचिव अरूप मित्र ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि मेला परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा मेला परिसर में कई मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं।
2: हम लोग मेला का आयोजन कर रहे हैं और विशेषकर हम लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये पूजा का आयोजन पवित्रता को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता भी बहुत बड़ी चीज है। साफ सफाई जगह जगह छोटे छोटे डस्टबिन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। नगर पंचायत को भी हम लोग आग्रह किए हैं, नगर पंचायत की तरफ से समुचित व्यवस्था हम लोग को मुहैया कराया जाएगा, ये आश्वस्त किया गया है।
0: झारखंड में अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। लातेहार के बालूमाथ में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में 2 बच्चियां डूब गई। दोनों पोटमाही खड्ड पुल के पास गड्ढे में नहा रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। वहीं दूसरी घटना में खूंटी की रिमिक्स झील में नहाने के दौरान रांची निवासी 20 वर्षीय युवक की गहरे पानी में डूब जाने से मौत हो गई। पुलिस ने आज पत्रकारों को इन दोनों घटनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मन चाहे गीत,
4: मन चाहे गीत।
3: मन चाहेगी।
0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहे गीत। आपके फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा उपाध्याय सुनवाने वाली हूं आपके पसंदीदा गीत। और लीजिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ और उसके बाद हम नाम लेंगे उन श्रोताओं का जिन्होंने उसकी फरमाइश लिख भेजी है।

अमित कुमार की आवाज़ में गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था समलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नासिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिशा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और अक्षय ने इसे सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनना चाहा था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे इस गीत में। अनुरोध फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग ने, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने इसे सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बेंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी भचाऊ कच्छ भुज से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल खलील और महबूब दल ने। पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और बिटिया सोनम ने। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से, इंदी वर्ने से लिखा, उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था लावरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और उनका समस्त परिवार, कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक, वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत ने, डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू ने, और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुम्भार, पद्मावती कुम्भार, विशाल, ज्योति, मधुर और उनके परिवार ने।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन चाहे गीत।

चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल नेशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाझूरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने, रामना हल्ली बेंगलुरु से महमद आरिफ, अरफा फातिमा, एमएच शरीफ और आरिफ हुसैन ने, तालुका उमरखेंड ढांकी से राम गाड़ेकर, सुनीता गाड़ेकर और अभिजीत, साथ ही कोमल अभिषेक, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, साथ ही उनका समस्त डागला परिवार इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

0: यार घोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉट्सबाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।

0: काम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके।
1: लेकिन गोटी, इसमें पार्क की खूबी कहाँ से आ गई?
0: देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते। इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं। और जब यहाँ से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। अब बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात?
1: वाकई वाकई बहुत बड़ी बात है। और गौश भाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहां क्यों तशरीफ लाए हैं।
0: मैं?
1: हाँ, तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
0: कैसे?
1: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहां आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
0: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं है। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चले आएगी।
1: अच्छा, ऐसा?
0: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
1: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
0: अब फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
1: अच्छा?
0: यहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे हैं।
1: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है, उसका चेहरा क्या बता रहा है?
0: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किराएदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ, देखना।
1: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था। पता नहीं यार, तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
0: नहीं दोस्त, नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है, ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
1: अरे गोटी, हाँ। भाई तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चलें यहां से।
0: हाँ चलो।
1: देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
0: नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन।
1: क्यों भाई, आज क्यों नहीं?
0: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा।
1: मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो, आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले।
0: हाँ चलो।
1: अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगर्ड के पास जाना है, वहां थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
0: नहीं नहीं नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
1: ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आता हूं।
0: हाँ।
1: लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना। हाँ।

0: आइए आइए।
1: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा।
0: ऊपर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते हैं, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
1: और कहाँ जा सकता हूँ, किस तरह वक्त तो काट नहीं है।
0: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या?
1: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी।
0: ओह,
1: घर में दो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं।
0: अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
1: अपनी अपनी नौकरी पर।
0: ओह अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता, और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
1: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं, सच मानो ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या, सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
0: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
1: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
0: श्रीमान इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
1: मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो।
0: श्रीमान आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते, बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, फिर देखिए ना आपको वक्त का पता चलेगा ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों, क्या सोचने लगे श्रीमान?
1: नौजवान तुम्हारी बात में वजन है, इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा अब चलूंगा।
0: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं।
1: आज कुछ जल्दी है, ये थैला देख रहे हो ना?
0: हाँ
1: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
0: अच्छा अच्छा
1: इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा भाई फिर मिलेंगे।
0: हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर फिर मिलेंगे। ये फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटाऊंगा, इतनी देर हो गई लेकिन उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा, एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे, जरा पार्क का एक चक्कर लगाकर आता हूं।

0: बेटा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए।

0: अरे ये मेरी बेंच पर अब ये कौन जनाब आकर विराजमान हो गए? लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार उन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अभी ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
1: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
0: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप

0: किससे बातें कर रहे हैं?
1: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूं। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूं।
0: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
1: जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूं, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
0: अच्छा,
1: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
0: ओ, किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
1: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूं।
0: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
1: अरे क्या बताऊं, दरअसल बात यह हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
0: अच्छा।
1: और क्योंकि मैं यहां पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
0: हाँ, वो कौन सा होटल?
1: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
0: पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
1: हाँ वही तो, स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां ठहरूं।
0: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
1: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। खैर, मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
0: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
1: हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
0: अच्छा अच्छा।
1: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया, और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
0: साबुन खरीदने?
1: जी
0: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
1: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूं?
0: हाँ, गोट्स भाई, नॉर्मन गोट्स भाई।
1: okay,
0: वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं।
1: ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूं। होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
0: अजीब आदत है।
1: हाँ है तो अजीब ही। वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ, इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया। सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
0: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहाँ रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: वो कैसे?
1: अब वही बता रहा हूँ। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए। बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ।
0: अरे
1: अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क, उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहाँ वो होटल था।
0: तो फिर आपने क्या किया?
1: क्या करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया। और तब से मैं यूं ही भटक रहा हूँ। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया, जिसका यहाँ ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
0: हाँ वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
1: हाँ,
0: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
1: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है।
0: वो कैसी मुश्किल?
1: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी, तब तक मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
0: देखिए इस तरह परेशान

0: में से क्या होगा। शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
1: क्या?
0: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल।
1: मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है। इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है। दरअसल मैं एक शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये दो पेंस पड़े हुए हैं। ये देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
0: कहीं ये आदमी छूट तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
1: मिस्टर गोटी,
0: हाँ, आप
1: क्या सोचने लगे?
0: जी वो
1: समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं। ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
0: नहीं साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ हाँ,
1: अच्छा?
0: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था।
1: हो,
0: और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
1: अच्छा?
0: हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे। बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
1: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं।
0: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
1: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था।
0: हाँ,
1: लेकिन यहां तो मैं अपने ही देश में हूं। गोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ।
0: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
1: नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामा खा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर गोटी,
0: हाँ कहिए।
1: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो।
0: हाँ, बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना।
1: अब क्या आप मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ एक दो दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतने कि दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं, बस।
0: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
1: मिस्टर गोटी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं।
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब, मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
1: शुक्रिया।
0: हाँ, शुक्रिया
1: इस भल मनसाहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
0: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
1: जी,
0: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है।
1: कहानी?
0: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
1: मैं कुछ समझा नहीं।
0: साइमन साहब, आप वो साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था, है? मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
1: वो साबुन की टिकटिकिया हाँ, मेरी मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ। यहाँ इस जेब में नहीं है। इसमें भी नहीं है।
0: कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ हाँ,
1: वही वही वही देख रहा हूँ। नहीं, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई है।
0: खो गई? एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
1: जी
0: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
1: लेकिन मैं आप मेरी बात
0: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो पिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना अरे कहाँ कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मून कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखा धड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है।
1: अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई? क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज?
0: साबुन की खुशबू भी आ रही।
1: अरे ये तो साबुन की टिकिया है।
0: अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी।
1: इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था।
0: ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी जाता हूं।
2: अरे साइमन साहब, साइमन साहब रुकिए।
1: साइमन साहब, मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए।
0: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
1: ये आप क्या कह रहे हैं?
0: देखिए, आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है। ये देखिए साबुन की टिकिया आपकी कोट से गिर गई होगी। देखिए मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
1: हाँ, वो पता नहीं कब जेब से गिर गई। वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
0: खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए।
1: जी,
0: मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको। ये इससे काम चल जाएगा आपका?
1: जैसा आप ठीक समझे।
0: नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको दो गिन्नियां दे देता हूँ। उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अब हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
0: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। अच्छा, ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड।
1: थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
0: अच्छा, अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए।
1: लाइए। थैंक यू वेरी मच।
0: और देखिए, अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय। बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया। चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था, ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए, अरे वहाँ पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे फौरन वहीं पहुँचना चाहिए। चलता हूँ मैं।

0: फिलिप, फिलिप, फिलिप माफ करना, मैं जरा बाजार की तरफ निकल गया था। अब आए, ये तो फिलिप नहीं कोई और ही साहब है। ओह, ये तो वही बुजुर्गवार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे, लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्गवार, लगता है आपका कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था,
0: हाँ,
1: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी, वो कहीं गिर गई।
0: लेकिन वो
1: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है, बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता न करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
0: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच में लीपापोती किए जाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों के नाम सामने आने पर बयानों से उन्हें हटाने और छोटे आरोपितों पर कार्रवाई कर बड़े आरोपितों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद जिले के कतरास स्थित केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंसने से 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। वहीं कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष विमलेश चौबे ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा और स्थानीय प्रबंधन से बचाव कार्य तेज करने की मांग की है। धनबाद के निरसा स्थित चापापुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में कोयला चोरी के खिलाफ छापेमारी के दौरान सुरक्षा टीम और ग्रामीणों के बीच आज झड़प हो गई, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल में सूखी लकड़ी चुनने गई 70 वर्षीय एक आदिवासी महिला के साथ सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट की है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। माल ढुलाई से रेलवे की आय में भी 6.27% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेलवे ने अगस्त में 5 नए गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए गए, जिससे 31 अगस्त तक इनकी कुल संख्या 149 हो गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया है कि देश में 2,80,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सहायता सुविधाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सहायता को मजबूत करने के लिए देश के विभिन्न

0: विभिन्न हिस्सों में 142 नए वरिष्ठ नागरिक गृह स्वीकृति किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी
2: हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं उनके साथ। उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा, हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
3: जी।
2: बहुत ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो
3: जी।
2: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
3: एक रूप ही बदल जाता था।
2: रूप ही बदल जाता था।
3: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे
2: जी। सही बात है
3: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
2: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं, हम बहुत ही, इस वेले मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
3: जी,
2: ट्रूली ब्लेस्ड
3: जी जी। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माता जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही
2: जी। लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
3: जी,
2: शी वॉज ए फोटोग्राफर, और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं। उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है, और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने, मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स है उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
3: जी।
2: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
3: जी,
2: बहुत सुंदर रिश्ता था।
3: क्या नाम था आपकी माँ का?
2: मेरी माता का नाम था मनोबीना रॉय
3: जी।
2: जी,
3: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी, और उनका एक व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे?
2: मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ
3: जी, जी। तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ, किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी, ऐसा कुछ हुआ कभी?
2: नहीं, पिताजी हमेशा, पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखे।
3: अच्छा।
2: और हम कभी, हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर में
3: जी।
2: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरा तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है
3: जी।
2: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में, कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं करती थी।
3: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा,
2: बहुत प्रभाव। हाँ,
3: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
2: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर, कोई भी कल्चरल कोई भी कल्चरली होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली, तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता ना,
3: बहुत एथिक्स थे,
2: एटीट्यूड, हाँ उनका एटीट्यूड ही अलग था इस सबके बारे में। और हम लोग ने वही सीखा है पिताजी, वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब चले गए, तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका उसका नाम था अमृत कुंभ।
3: अच्छा,
2: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था
3: जी।
2: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिता का ये हो गया, कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे
3: जी।
2: उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना उसमें से सिगरेट निकोटिन का दाग हो गया था इतना, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको
3: जी।

0: भीमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगी?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन विमल राय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि असली गुरु का हिसाब जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से, हाँ। तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था।

0: सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे, तो उसको जो फिल्म बनाए पिताजी, उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
1: जी।
0: हाँ उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दुबे के जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह की घटनाक्रम में वो फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
0: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी का बहुत असर है,
1: जी
0: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के, तो वहाँ से उनको निकाला गया था, तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था वो ट्रेजिडी था, हाँ तो वो भूल नहीं सके थे, तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गया है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था, वो भूल नहीं पाए कभी भी, हमेशा चाहते थे कि जाएं, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे सोचते थे कि हम जाएंगे वहाँ पे, तो उसका वो ट्रेजिडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया
1: मन में रहा
0: वहाँ मन में रहा,
1: और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा।
0: जी जी
1: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
0: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे फिल्म विल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूँगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी सबसे फिल्म सब फिल्म सुजाता बंदिनी सबको लेके जब लोग देखते हैं ना, तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी, हाँ उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के।
1: जी जी जी। तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है?
0: जरूर, मैं तो बोलूँगी ये बहुत सच बात है, हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे ही फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
1: जी,
0: इतना उसका प्रभाव था।
1: हाँ,
0: एक इंडियन फिल्म कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकते, आप वो देखने वाली एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ वहाँ फेस्टिवल, मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये।
1: जी। तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें, आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप?
1: जरूर मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था, लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी।
0: और ये लोरी बहुत, हाँ आप बता रही थी,
1: लोरी बहुत, हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ मुझे पता नहीं कौन से स्टूडियो, शायद दादरा में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह चार बजे रिकॉर्डिंग।
0: तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है ये, तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली
0: हाँ,
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगे मतलब?
1: नहीं बहुत टेक नहीं, वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे, फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे। एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार,
1: और एक चीज, फर्स्ट टाइम साहिर लुधियानवी ने गाना लिखा था उसमें।
0: हाँ जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत है, और इतना यूनिक संगीत है, और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है, गीत तो पसंद है ही, और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसके कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, बड़ुआ के देवदास का।
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ ही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक्कड़ के ऊपर
0: जी।
1: लेकिन ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने हैं।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है
1: जी। मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी, और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र तो कुछ ज्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
0: जी,
1: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
0: अच्छा।
1: दूसरा, हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में
0: जी।
1: तो जब एक दफे वो उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं, पारू का ये जो किया था
0: अभी नहीं था,
1: हाँ
0: वो कोई और कर ही नहीं सकता था, ऐसा बिमल रॉय साहब का मानना था,
1: कोई कर नहीं सकता था।
0: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती
1: जी,
0: है
1: जी,
0: जी। लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के?
1: लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था, लेकिन मेरा हिसाब से पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो सामाजिक जब ये है ना समस्या
0: है, व्यवस्थाएं थी उस वक्त,
1: हाँ, उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई, मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत एक इम्प्रेस करता है
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी।
1: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंती माला भी जस्ट उसके पहले ही मधुबन किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसीलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
0: बहुत सुंदर है। तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
1: नहीं, पिताजी जो काम करते, काम काम को अलग ही रखते थे वो घर से। हमारा घरेलू जो ये है ना,
0: वो अलग था,
1: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
0: जी,
1: कि इतना डिसिप्लिन थे। उनको कहाँ पे कब जाना है, क्या करना है, सब उनको बहुत पता था। हाँ, तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी का सब शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया काम
0: जी।
1: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे
0: जी। जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
1: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है, जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
0: जी,
1: तो देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था। तो पिताजी हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
0: अच्छा।
1: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसका स्टोरी का तो एडल्ट, उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी, मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
0: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ही फिल्म देखी होगी। हाँ, तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें। एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
1: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
0: आगे तेरी मर्जी जी, बिल्कुल। हाँ।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा? पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा।
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था। तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, और
1: फिल्मी दुनिया में स्पेशली
0: सबसे बड़ी बात है कि फिल्मी दुनिया में रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आना देखते थे, मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी हमारे बिमल रॉय में, बिमल रॉय फिल्म्स का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे?
0: जी जी,
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है, वो उनका फिल्म का ये है
0: लोगो
1: तो है। ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
0: जी जी, जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
0: जी,
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए, बंगाली लिटरेचर से। सुजाता का बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो ये है रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम, और सब जो आए थे सबको सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
0: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रही होंगे आपके पिता के?
1: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया।
0: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को, बहुत ही बोल्ड विषय था, और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी की किरदार को जीवंत किया। और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना, इसके पीछे क्या कुछ खास कारण?
1: नूतन पिताजी के सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
0: जी।
1: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का, तो वो नूतन को साइन करने को गए। तो नूतन ने बोला, दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला, क्यों, क्या बात है
0: जी?
1: तो बोले, हम प्रेग्नेंट हैं, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट है तो मैं फिल्म में काम नहीं करूँगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूँगी बंदिनी। तो उनका हस्बैंड जो थे, उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला बिमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए, तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी। तो वही हुआ बात
0: जी जी,
1: शी वॉज प्रेग्नेंट व्हेन शी वॉज शूटिंग बंदिनी
0: जी। और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया। और

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स, जरूर, क्योंकि पिताजी जो पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मैं तो मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और हाँ ये सभी रहे
1: था। उनके पसंदीदा जो थे ना
0: संगीतकार भी एस जी बर्मन और सलील चौधरी साहब।
1: संगीतकार सलील चौधरी, एस जी बर्मन।
0: बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी जो है संगीत में ढाली है, और एस जी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं।

0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इससे फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा,
1: हाँ, मुझे
0: इस कहानी को,
1: इस कहानी
0: किताब को,
1: उसकी कहानी को, तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्लानी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरा संध करके, इनका नाम था जरा संध, पेन नेम, हाँ, तो उन्होंने लिखा था, तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्लानी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
0: तो उस वक्त तो उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक एक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
0: अच्छा,
1: जैसे राज कपूर है ना,
0: हाँ।
1: राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
0: जी। तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया ये बहुत लाजवाब था गुलजार का।
1: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हुआ तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया, ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी मोरा गोरा अंगलेला। अच्छा, तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी वो सब जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी का गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ वो था नॉट मोरा गोरा अंगले, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर इज फर्स्ट सॉन्ग फॉर विमल रॉय प्रोडक्शंस। हाँ, पिताजी का बोलने पर फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम से ज्वाइन कर लिए।
0: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब ये चूज़ किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बांधने के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है, उसका केस एक केस हिस्ट्री था, ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए बहुत इसका बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमति के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमति का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमति का जो मधुमति लिखा गया था खाली पिताजी का प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बिकॉज ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है, मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन, हाँ
1: वो तो, सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए,
0: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए। तो मधुमति उसी हिसाब से बना गया
1: जी। तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त?
0: हाँ, हाँ,
1: में आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं, आप कहें। हाँ,

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना, तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी, तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बात है।
0: कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4। इधर है एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके,
0: अच्छा,
1: तो शिवेंद्र ने इसको किया है, रिस्टोर किया है 4 फिल्में। नेक्स्ट ईयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी, DVD नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा,
1: सबकी हाँ
0: जी, बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी।
1: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ, यू नो, इतना उसका असर है, और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ। हाँ, ये तो मधुमती के साथ है। दो बीघे जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है
0: जी।
1: हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और दो बीघे जमीन दोनों।
0: हाँ, कभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
1: नहीं नहीं, ये कभी नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
0: अच्छा।
1: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
0: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है।
1: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया है NGO के साथ
0: जी,
1: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके, और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूँगी
0: जी,
1: कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, DVD में है वो।
0: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में आपने काफी, और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है, काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं, बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
1: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखा है, दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमती, खास मधुमती का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
0: जी,
1: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं, बिहाइंड क्लोज्ड डोर, ये दोनों बहुत खास है।
0: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला?

0: जब ये किताबें दुनिया के समक्ष कई लोगों की और खासतौर से महिलाओं का
1: बहुत अच्छा, इट इज वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
0: जी हिंदी भाषाओं में।
1: हाँ, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाए।
0: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
1: नहीं नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए फिल्में। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, वो मुझे करना ही था, क्योंकि उसके लिए मेरे फंडिंग मिली, गवर्नमेंट फंडिंग।
0: अच्छा।
1: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया। और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है, उनका जो ये है फिलोसफी है, उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा, जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं? फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की, या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को वही करूं।
0: जी, और उसमें आप लगी भी हैं आज भी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं। रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार

विमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के, अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच में लीपापोती किए जाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों के नाम सामने आने पर बयानों से उन्हें हटाने और छोटे आरोपितों पर कार्रवाई कर बड़े आरोपितों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद जिले के कतरास स्थित केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धसने से 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। वहीं कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन की क्षेत्रीय अध्यक्ष विमलेश चौबे ने मृतकों के परिजन के लिए मुआवजा और स्थानीय प्रबंधन से बचाव कार्य तेज करने की मांग की है। गिरिडीह के बनियाडीह में आज झारखंड सरकार के दिवंगत मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को श्रद्धांजलि दी गई। छामुमो की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मंत्री हफीजुल हसन सहित पार्टी के कई नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सुदीव्य सोनू के निधन से झारखंड को अपूरणीय क्षति हुई है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। माल ढुलाई से रेलवे की आय में भी 6.27% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेलवे ने अगस्त में 5 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए, जिससे 31 अगस्त तक इनकी कुल संख्या 149 हो गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि देश में करीब 87,000 स्वच्छता कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय के अनुसार 76,000 से अधिक स्वच्छता कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि 983 स्वच्छता कर्मचारियों के लिए करीब 34 करोड़ रुपए की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: रात चांदनी बनकर ठहर जाती है, मोहब्बत में इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है। महफिल में महबूब के आने से बहारें भी फूल बरसाने लग जाती हैं।

चाहट पे लगता है शायद वो आए हैं। हर हवा के झोंके में उनकी खुशबू तलाशते हैं और हर धड़कन से बस यही सवाल करते हैं, काश वो आए और इस इंतजार को मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दे जाए।

0: तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

दिल की इसी अनकही कहानी में कुछ ख्वाब हैं, कुछ अरमान हैं, कुछ बीती हुई शामें हैं और एक ऐसे मिलन की आस है जो शायद इस रात की खामोशी में कहीं दूर से चली आ रही है।

अंतराल के बाद हम और आप साथ साथ, कार्यक्रम चल रहा है छाया गीत। खुद पर यकीन हो चला है कि ये दिल तुमसे ही मोहब्बत करने लगा है। कोई कह दे जाके किसी से भी तो क्या फर्क पड़ता है, बाहरें तो फिर भी आएंगी। जब तुम्हारा साथ मिल गया तो मंजिलें खुद ब खुद करीब आएंगी। रंग प्यार का ऐसा छाया कि चांद को देखकर ये दिल कुछ इस तरह से शर्माया।

जिस चाहत के लिए कभी रातें लंबी लगती थी, आज वही चाहत एक खूबसूरत सुबह बनकर जिंदगी में ठहर गई है। जहां कोई दूर था तो ख्वाब था, पास आया तो हकीकत बना, और मिलकर ऐसा लगा जैसे दिल को आखिरकार अपना हम सफर मिल गया।

कितनी अजीब है ना इश्क मोहब्बत प्रेम की गलियां। मिलन अभी हुआ नहीं मगर दिल ने उसे न जाने कितनी बार जी लिया है, जैसे कोई भटकी हुई राह अपनी मंजिल पाले, जैसे बरसों से प्यासा दिल उसके मिलने पर झूम कर संग संग गीत गुनगुना ले, जैसे किसी अधूरे गीत को अचानक उसका आखिरी सुर मिल जाए। बस लगता है वक्त यहीं थम जाए और इन मोहब्बत भरे दिलों को यूं ही धड़कने दे।

रात अपने पूरे शबाब पर है, हमसे कह रही है तुम सबको सोना नहीं है क्या? चलिए छाया गीत के सफर से विदा लेते हैं और प्यार भरे नमस्कार के साथ मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाली शेष कार्यक्रमों की।

शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी का समय होगा शाम 6:02 से।

शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर जिले में आजकल गीत गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि आप सुन सकेंगे शाम 7:15 पर।

शाम 7:30 पर हम सुनेंगे विमेंस आईसी कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का आंखों देखा हाल। समाचार संध्या रात 8:45

26 का फाइनल का आंखों देखा हाल। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:10 पर हम पुनः शामिल होंगे विमेंस आईसी कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में। और हमारी सभा का समापन होगा आज रात 11:45 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल हमारी भाषा से नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, विषय है हिंदी का महत्व और स्वरूप तथा हिंदी दिवस के बारे में। दोस्तों, हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राज्यसभा के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक अवसर की याद में हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी का महत्व क्या है इसके बारे में जानते हैं। हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह केवल बातचीत का माध्यम नहीं बल्कि भारत की विविध संस्कृति और भावनाओं को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हिंदी ने साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा, शिक्षा, रेडियो और संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और सहजता है। यह अलग अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। हिंदी में हमें कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं, जिन्होंने समाज और जीवन को समझने के लिए एक नई दृष्टि दी। दोस्तों, हिंदी का स्वरूप। हिंदी का स्वरूप समय के साथ लगातार बदल रहा है। आज की हिंदी केवल पुस्तकों और कविताओं तक सीमित नहीं बल्कि यह डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया, फिल्मों, समाचार माध्यमों और इंटरनेट में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज का युवा हिंदी में ब्लॉग्स लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हिंदी ने तकनीक और साथ ही स्वयं को जोड़ा है, यह इसकी जीवंतता का प्रमाण भी है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भाषा का विकास तभी संभव है जब वह समय के साथ बदलती हुई नई पीढ़ी से जुड़ा हो। दोस्तों, युवाओं के लिए हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी जानते हैं। आज के युवाओं के सामने अंग्रेजी साहित्य, कई भाषाएं सीखने और उनका प्रयोग करने के अवसर हैं। दूसरी भाषाएं सीखना निश्चय रूप से अच्छी बात है, लेकिन दूसरी भाषा सीखने का अर्थ है अपनी भाषा को भूल जाना नहीं है। युवाओं को हिंदी इसलिए जानना चाहिए क्योंकि भाषा हमारी सोच, संस्कृति और जड़ों से जुड़ी हुई होती है। अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ होने से हम अपने विचारों और भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। आज के युवा यदि हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी में लिखेंगे और हिंदी की आधुनिक तकनीक से जोड़ेंगे तो वे इस भाषा को आने वाली पीढ़ियों तक और मजबूत तरीके से पहुंचा सकते हैं। हिंदी के केवल हिंदी दिवस के दिन याद करना पर्याप्त नहीं बल्कि हमें अपने दैनिक जीवन में हिंदी का सम्मान करना चाहिए। हिंदी में अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, सही शब्दों का प्रयोग

करना चाहिए और अपनी भाषा को लेकर हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। हिंदी और आधुनिक भारत। आज हिंदी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं, दुनिया के अनेक देशों में हिंदी सीखने और बोलने ते भी हैं। भारतीय सिनेमा, संगीत, साहित्य और डिजिटल माध्यमों से हिंदी को वैश्विक स्तर तक पहचान दिलाई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें हिंदी को आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और रोजगार के अवसरों से भी जोड़ें। हिंदी में गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार हो और युवा इनमें नया प्रयोग करें। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, विरासत और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हमें हिंदी का सम्मान देने के लिए किसी एक दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हिंदी दिवस हमें अपनी भाषा के प्रति जागरूक होने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर देता है। युवाओं के लिए विशेष यह संदेश है कि दूसरी भाषा सीखिए, दुनिया से जुड़िए, लेकिन अपनी भाषा और अपनी जड़ों से कभी मत भूलिए। दोस्तों, इस हिंदी दिवस हमें संकल्प लेना चाहिए कि सम्मान करेंगे हम अपनी भाषा का, उसे सही और प्रभावी रूप से प्रयोग करेंगे तथा आधुनिक तकनीक और रचनात्मकता के माध्यम से हिंदी की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान भी करेंगे। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे हिंदी दिवस के बारे में। दोस्तों, चर्चा के बाद आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस गाने के बाद आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है देश के विकास में हिंदी का महत्व। वार्ताकार है अनीता शुक्ला।
1: हिंदी हिंदी है, जननी है, सुखद स्वप्न है, भगिनी है, तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त प्रवाहमयी निर्झरणी है। हमारा देश भारत विभिन्न भाषाओं और बोलियों का उपवन है। इतना ही नहीं, हमारे देश ने अनेक नई संस्कृतियों और रीति रिवाजों का भी स्वागत किया है। वह अपनी विशाल भुजाओं को फैलाए, सबको अपना बनाए, विभिन्न रंगों की निराली छटाओं के साथ खुद को समृद्ध किया है। अतः भारत जैसे बहुभुज देश में रहने वाले लोगों के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की बात करना निश्चय ही बहुत कठिन रहा होगा। सन 1947 में देश की आज़ादी के साथ ही भारत एक सार्वभौमिक संपन्न राष्ट्र बन गया और तब उसे एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस हुई जो जन जन के कंठों का हार हो, जो नदी की धारा की तरह प्रवाहमयी हो, जो हमारी वेदों की संस्कृति की अक्षुण्णता को बनाए रखे और जो राष्ट्र की एकता और विकास की सीढ़ी बन निरंतर विकसित होती हुई कोटि कोटि कंठों की पुकार और उनका हृदय हार बन सके। सभी की निगाहें हिंदी की ओर थीं, क्योंकि हिंदी अपने उद्भव काल से ही विभिन्न प्रदेशों की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगी थी। रामविलास शर्मा के अनुसार अकबर के महल में बोलचाल की भाषा हिंदी थी। अमीर खुसरो तुर्क थे, लेकिन लिखते थे फारसी और हिंदी में। उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम था। उन्होंने लिखा है, चूमन तूतिये हिंदम अर रास्त पुरसी जेमन हिंदवी पुरस, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो। चाहे प्राचीन संतों की वाणी हो, चाहे सूफी की प्रचार भावना, चाहे मुगल और बहमनी बादशाहों की काव्य भाषा हो, सूरदास जी का सूर सागर हो, तुलसी का मानस हो, या कबीर और रहीम के उपदेश हो, ये हिंदी के बिना कहाँ गाहे हो सकते थे। यह अकाट्य सत्य है कि भाषा ही वह सशक्त माध्यम है जो मानव समूह में विचार विनिमय का कार्य करती है। भाषा ही व्यक्ति को व्यक्ति से, राष्ट्र को राष्ट्र से जोड़ने का कार्य करती है। भाषा ही देश की संस्कृति की संवाहिका होती है। किसी भी राष्ट्र की वैचारिक और सामाजिक एकता का आधार भाषा ही तो है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज की बुनियाद भाषा है। यही कारण है कि हिंदी भाषा को सर्वमत से स्वीकार किया गया। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई। कारण यह है कि यह विश्व की प्राचीन, सरल और समृद्ध होने के साथ साथ जन जन के समझ के साथ विकसित हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग के लोग हिंदी को आसानी से समझ सकते हैं और बोल लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। हिंदुस्तान के लिए देवनागरी लिपि का ही व्यवहार होना चाहिए। निश्चय ही हमारे राष्ट्र के निर्माण में हिंदी की वही भूमिका है जो एक पेड़ के निर्माण में जड़ की भूमिका होती है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संपूर्ण देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधना। राष्ट्र भौगोलिक सीमा ही नहीं होता, अपितु यह हमारी संस्कृति, जातीय गौरव तथा जातीय स्वाभिमान और चरित्र को भी स्पष्ट करता है। हिंदी भाषा साहित्य के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता, कला, व्यापार तथा घर घर में प्रवेश कर चुकी है। जब कभी भी विश्व सम्मेलन हुआ, हिंदी ने अपने विजय का परचम लहराया है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अतः हम जिस प्रकार तिरंगे को सम्मान देते हैं, वैसे ही हमें हमारी भाषा को सम्मान देना चाहिए। 14 सितंबर 1949 का वह महत्वपूर्ण दिवस जब हमारी मातृभाषा को ससम्मान राजभाषा के सिंहासन पर आसीन किया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के संबंध में व्यवस्था की गई तथा संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। और यह भी घोषित है कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग किए जाएं। धीरे धीरे यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रवाहित होती रही, हमारे संस्कारों, विचारों और हमारी एकता को प्रचारित करती रही और आज हमारी हिंदी स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। बड़े से बड़े पद पर पहुंचने का मार्ग भी हिंदी भाषा बन रही है। यह माँ की रसोई से संसद की बहस की भाषा बन चुकी है। यह स्वप्न संगीत और नृत्य बनकर जन जन को जोड़ रही है और कृष्ण की मीरा राधा बनकर प्रेम की मुरली बजा रही है। परंतु दुख और चिंता का विषय यह है कि अत्याधुनिक युग में लोग अंग्रेजी भाषा में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। युवा वर्ग यह सोचते हैं कि हिंदी मातृभाषा है, इसे बोलना चाहिए, परंतु कैरियर बनाने और बेहतर नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। आज कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश में कार्य कर रही हैं जिसकी भाषा अंग्रेजी है। यदि हम इसे अपनी निगाहों से देखें तो हम स्वावलंबन के लिए भले ही इसकी आवश्यकता समझें, लेकिन तकनीकी एकता से अधिक महत्वपूर्ण है मानवीय एकता, जो नींव है, जीवन का आधार है। हिंदी पूरे विश्व में बोले जाने वाली तीसरी भाषा है, जिसे 500 से 600 मिलियन लोग बोलते हैं तथा अधिकांश राज्यों में बोले जाने वाली यह पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। यदि हिंदी को अलग कर दिया जाए तो गांव और शहर, शहर और महानगर और महानगरों से देश सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। भाषा ही व्यक्ति, समाज, परिवार और राष्ट्र को एक दूसरे से जोड़ती है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में जाकर हिंदी में अपना भाषण दिया और देश की गरिमा को बढ़ाया। आधुनिक भारतीय चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्पष्ट कहा था, अंग्रेजी माध्यम भारतीय शिक्षा में सबसे बड़ा विघ्न है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, राष्ट्र की सच्ची एकता तब पैदा होगी जब भारतीय भाषाएं अपना स्थान ग्रहण करेंगी। हिंदी प्रेमी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने 4 मार्च 1925 को जनभाषा के रूप में हिंदी को शिक्षा और कामकाज का माध्यम बनाने की जोरदार मांग उठाई थी।
0: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता, विषय था हिंदी का महत्व। वार्ताकार थी अनीता शुक्ला। दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए अब हम बातें करते हैं युवा और संस्कार के बारे में। दोस्तों, आज किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा होते हैं। युवाओं में ऊर्जा, उत्साह, नई सोच है और कुछ नया करने का जुनून भी है। लेकिन केवल ऊर्जा और प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं, उस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए अच्छे संस्कारों का होना भी उतना ही ज़रूरी है। संस्कार का अर्थ केवल बड़ों के पैर छूना या अभिवादन करना नहीं, संस्कार हमारे व्यवहार, विचार, बोलचाल, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सम्मान में भी दिखाई देते हैं। एक संस्कारी युवा वह है जो अपने माता पिता, शिक्षक और बड़ों का सम्मान करता है, छोटों से प्रेम करता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। दोस्तों, आज का युवा आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। मोबाइल और इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत आसान बनाया है, लेकिन इनसे गलत उपयोग भी हमारी सोच और व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए युवाओं के लिए समझना ज़रूरी है कि तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान और विज्ञान के लिए किया जाना चाहिए, न कि अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करने के लिए। दोस्तों, अच्छे संस्कार हमें यह सही और गलत के बीच अंतर समझना सिखाते हैं। जब कोई युवा जिम्मेदारी को अपनाता है, मेहनत के पीछे नहीं हटता, सफलता से निराश नहीं होता और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, तो यह उसकी संस्कारों की ही पहचान होती है। युवाओं को अपने शब्दों में यह भी ध्यान देना चाहिए कि आजकल बातचीत में अपशब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी भाषा हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है। मीठे और सम्मानजनक शब्द किसी के दिल को जीत सकते हैं, जबकि गलत शब्द किसी की गहरी चोट भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, युवा संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुशासन। समय पर उठना, पढ़ाई या काम को समय पर पूरा करना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना, ये सभी अच्छे संस्कार हैं। जिस युवा में अनुशासन होता है, वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अपने रास्ते से भटकता नहीं है। इसके साथ ही युवाओं में देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए। हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। देश का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की विशेषकर युवाओं की ही जिम्मेदारी है। आज के युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं, प्रतिस्पर्धा, तनाव, सोशल मीडिया का दबाव, गलत संगति, भविष्य को लेकर चिंता। ऐसे समय में अच्छे संस्कार उन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि सफल होना ज़रूरी नहीं, लेकिन सफलता के साथ अच्छा इंसान बने रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि युवा देश का भविष्य है, वर्तमान है और शक्ति भी है। अगर युवाओं के पास ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार, प्रतिभा के साथ अनुशासन और सपनों के साथ जिम्मेदारी होगी तो वह अपने परिवार, समाज और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे युवा और संस्कार के बारे में। अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी गाने के साथ हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। आपकी दोस्त आराध्या माही को खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। धनबाद जिले के कतरास स्थित केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंसने से 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। वहीं कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। गिरिडीह के बनियाडी में आज झारखंड सरकार के दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को श्रद्धांजलि दी गई। झामुमो की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मंत्री हफीजुल हसन सहित पार्टी के कई नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बोकारो परिसदन में आज प्रदेश भाजपा की एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से शुरू होने वाले एक महीने के सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी गई। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने बताया कि अभियान के तहत आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत, नमो सेवा, आंगन मिलन सेवा और रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यों और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 330 लीटर देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल एक वाहन जब्त कर 2 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था सुमित कुमार ने बताया कि तलाशी में वाहन से 11 बोरों में रखी शराब के अलावा 2 मोबाइल फोन और 7,550 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। चाईबासा में जापान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से एक दिवसीय जूनियर कलर बेल्ट कराटे ग्रेडिंग परीक्षा आयोजित की गई। संत जेवियर स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित परीक्षा में विभिन्न विद्यालय और कराटे प्रशिक्षण केंद्रों के करीब 170 कराटेकारों ने भाग लिया। परीक्षा में प्रतिभागियों की तकनीकी दक्षता, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का आकलन किया गया। इस दौरान किहोन, काता और कुमिते के साथ शारीरिक एवं मौखिक परीक्षा भी ली गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डालरगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

खेती बाड़ी सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सूकर पालन। किसान भाई, पशुपालन के क्षेत्र में सूकर पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी पृष्ठभूमि में कुछ खास से उद्देश्य होते हैं, जैसे एक लाभप्रद व्यवसाय की शुरुआत, बेरोजगारी की वजह से मजदूरों के पलायन को विराम देना, कम पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त कर आर्थिक स्तर को बेहतर बनाना, प्रचुर मात्रा में मांस का उत्पादन कर स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ताओं के लिए खाद्य पूर्ति करना, मांसाहारी लोगों के बीच व्याप्त कुपोषण को अच्छा जैविक प्रोटीन उपलब्ध कराकर कुपोषण का निवारण करना, पर ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता हासिल कर उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और लघु एवं सीमांत कृषकों एवं भूमिहीन ग्रामीणों के लिए एक नियमित आमदनी का स्रोत बनाना। इसके लिए किसान भाई सरकार प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था भी करती है। अगर आप सूकर पालन को रोजगार के रूप में प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप इसका निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसके लाभ क्या हैं, तो सूकर पालन से लाभ की अगर हम बात करेंगे किसान भाई, तो सूकर पालन कम लागत और पूंजी से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सूकर आवास की व्यवस्था एवं प्रबंधन का खर्च अन्य पशुओं की तुलना में काफ़ी कम है। सूकर पालन से बहुत कम समय में आमदनी होने लगती है, क्योंकि मादा सूकर 6 से 8 माह की उम्र में ही व्यस्क हो जाती है और एक समय में 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है। 2 से 3 माह की उम्र में सूकर के बच्चों को बेचकर धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक सूकर बच्चे से हमें 1500 से 2000 रुपये का लाभ मिल सकता है। सूकरों के प्रजनन में अल्प समय का अंतराल रहता है, जिस कारण एक मादा सूकरी वर्ष में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। इस कारण हमें एक वर्ष में 16 से लेकर के 24 बच्चे प्राप्त होते हैं, जो व्यस्क होने पर प्रजनन कार्य हेतु उपयोग में लाए जाते हैं या स्थानीय बाजारों में बेच दिए जाते हैं। नर सूकर 6 से 8 माह की उम्र में औसतन 70 से 80 किलोग्राम की हो जाती है। मांस के लिए तैयार प्रत्येक सूकर को स्थानीय बाजार में बेचने से 6000 से 7000 रुपये तक का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। सूकर की शारीरिक वृद्धि दर भी ज़्यादा होती है। किसान भाई, सूकर में खाद्य परिवर्तन की क्षमता अत्यधिक होती है। जहां अन्य पशुओं को 1 किलोग्राम मांस बनाने के लिए 10 से 12 किलोग्राम भोजन देना पड़ता है, वहीं सूकरों को मात्र 3 से 4 किलोग्राम भोजन पर्याप्त होता है। किसान भाई, सूकर बेकार खाद्य पदार्थों जैसे होटल या मेस की जूठन सामग्री, खाद्य पदार्थों के कारखाने से निकले पदार्थ, हड़िया बनाने के बाद बेकार बची सामग्री, जंगली फल, घास, खराब दाना आदि का उपयोग कर पौष्टिक मांस में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अन्य व्यवसाय जैसे दूध और अंडा उत्पादन की तरह पूरे दिन सूकर पालन में देखभाल की जरूरत नहीं रहती है। एक विकसित बड़ा सूकर साल भर में करीब 1 टन खाद दे सकता है। स्थानीय मूल्य के हिसाब से खाद बेचकर भी लाभ कमाया जा सकता है। सूकर खाद का उपयोग खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी आप कर सकते हैं। तालाब में सूकर खाद का उपयोग करने से मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। किसान भाई, सूकर पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, जिसे कम जगह में कम लागत में आप इसे पाल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का सूकर पालना आपके लिए फायदेमंद है या इसकी उन्नत नस्लें कौन कौन सी हैं। तो किसान भाई, सबसे पहला है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। इस नस्ल का मूल स्थान उत्तरी इंग्लैंड है,
ये बहुत अधिक बच्चा पैदा करने वाली प्रजाति है। सूकरी एक साथ 10 से 14 बच्चे देती है। यह सबसे

अधिक दुधारू नस्ल है, देसी नस्ल को सुधारने और बढ़िया बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नस्ल के सूकर का रंग सफ़ेद होता है। यह बहुत अधिक लंबा, भारी और ठोस मांस वाला होता है। इसके कान पतले, लंबे और खड़े होते हैं। गर्दन लंबी और कंधे तक भरी हुई होती है। पीठ लंबा एवं सीधा होता है। दोनों पार्श्व भारी, सीधे और सुगठित पसलियों वाले होते हैं। टांगे सीधी और सुगठित होती है। एक वयस्क सूकर का वजन लगभग 200 से 300 किलोग्राम तक होता है। दूसरा जो है प्रमुख जो नस्ल है वह है टैमवर्थ। किसान भाई, यह भी एक इंग्लिश नस्ल है जो सुनहरे लाल रंग का होता है। इसके सिर एवं शरीर लंबा एवं पतला होता है। थुथुन लंबी होती है। कान खड़े होते हैं। इसका मांस सबसे अच्छी किस्म का माना जाता है। तीसरी जो है प्रजाति वह है हेम्पशायर। यह अमेरिका में पाई जाने वाली जाति का सूकर है। इसका रंग काला होता है, लेकिन अगले पैर के पास एवं गर्दन के पास सफ़ेद पट्टी रहती है। कभी कभी पूंछ के बाल का रंग भी सफ़ेद होता है। इसके कान ऊपर की तरफ खड़ा रहता है। यह एक छोटा और मांसल नस्ल का होता है। इसकी आँखें काफ़ी बड़ी होती हैं। इसमें हड्डी कम और मांस का अनुपात ज़्यादा पाया जाता है। एक पूर्ण वयस्क नर का वजन लगभग 250 से 300 किलोग्राम और मादा का वजन लगभग 200 से 250 किलोग्राम होता है। अब हम दूसरा अगर नस्ल की बात करें किसान भाई, तो यह है लेंडरेस। इस नस्ल के सूकर डेनमार्क से हमारे देशों में लाए गए हैं। इसका रंग सफ़ेद होता है, लेकिन काले धब्बे वाले सूकर भी देखने को मिलते हैं। इसके पांव छोटे होते हैं, कान लंबे और बड़े होते हैं जो आँखों की ओर झुके होते हैं। इसकी वृद्धि बड़ी तेजी से होती है और इसमें मांस ज़्यादा तथा चर्बी कम होती है। इसके कारण इसके मांस की मांग बाजार में ज़्यादा रहती है। किसान भाई, मांस उत्पादन के लिए बेहतर है। अब अगर हम बात करें संकर नस्ल की, तो किसान भाई, हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विदेशी नस्लों का उपयोग प्रजनन के लिए हो रहा है।

देसी का और 50% गुण विदेशी सूकर का है। इस तरह के संकर नस्ल के सूकर हमारे वातावरण के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ज़्यादातर प्रांत में लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर को प्रजनन के लिए उपयोग किया जा रहा है। रांची पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में टैमवर्थ नस्ल का प्रयोग देसी सूकर से प्रजनन के लिए किया गया तथा वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से एक नई नस्ल जिसका नाम टी एंड डी है विकसित की गई, जो कि झारखंड हमारा जो प्रदेश है इसके वातावरण में यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। यह नस्ल देसी नस्ल की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक लाभकारी। टी एंड डी का रंग काला, शरीर चिकना, कान छोटे एवं खड़े तथा थुथुन मध्यम आकार का होता है। इस टी एंड डी नस्ल के सूकर पालन को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो किसान भाई, अगर आप सूकर पालन करना चाहते हैं तो आप टी एंड डी जो हमारे झारखंड के लिए उपयोग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी नस्ल है और इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं और बहुत सारे किसान भाई टी एंड डी का भी पालन कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जो देसी नस्ल है उसकी तुलना में यह नस्ल जो है 4 से 5 गुना अधिक लाभकारी है। अगर हम बात करें किसान भाई सूकर आवास की व्यवस्था की, तो किसान भाई सूकर पालन में सूकरों के लिए आवास की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से होनी चाहिए। अच्छा उत्पादन एवं अच्छी आमदनी के लिए अच्छे सूकर आवास का होना अति आवश्यक है। सूकर आवास की बनावट वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए ताकि वे साफ सुथरे हवादार रहे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सूकरों का आवास मनुष्य के आवास या शहर से थोड़ा दूर स्थित होना चाहिए। सूकरों के आवास को थोड़ी ऊंचाई पर बनाना चाहिए। सूकर आवास में बिजली की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि रात में भी सूकरों की देखरेख हो सके। जमीन या फर्श सीमेंट और कंक्रीट का बना होना चाहिए एवं बाहर की तरफ ढालू होना चाहिए। प्रत्येक कमरे में पानी पीने का एक नाद होना आवश्यक है। प्रत्येक कमरे के बाहर की ओर नाली बना होना चाहिए जो ढालू हो, जिसकी निकासी सूकर गृह से दूर अथवा तालाब में। कमरे की दीवार 4 से 5 फीट पक्का होनी चाहिए। सूकर गृह का छत एस्बेस्टस या ढलाई कर बनाया जा सकता है, किंतु कम लागत के लिए खपड़ा अथवा घास फूस का छत भी आप बना सकते हैं। तो किसान भाई सूकर आवास बेहतर हो तभी आपका सूकर स्वस्थ रहेगा और फिर से आप आमदनी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तो बातें हुई सूकर पालन की, आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता।

0: तमाम किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, हमारे किसान भाई लोग, जितने भी ग्रामीण भाई बहन हैं, अब खरीफ की तैयारी से अपनी फसल उत्पादन को प्राप्त करने की के पायदान पर पहुंच चुके हैं और बहुत से किसान भाई अब रबी की तैयारी में जुट गए हैं। रबी की तैयारी में बहुत सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है किसान भाइयों, विशेषकर यंत्र के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। कैसे हमें खेती करनी चाहिए, इसकी तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, इन सारी बातों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। और आज हम यंत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करेंगे पलामू जिला कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार, जोहार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि अभी रबी के लिए उनको किन किन यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन फसलों के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी।
1: जी हाँ, अभी किसान भाई खरीफ फसल का उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन इस बार तो खरीफ फसल काफ़ी कम हुई है क्योंकि बारिश पलामू में बहुत कम हुई। पलामू क्या पूरा झारखंड में ही बारिश की काफ़ी कमी महसूस की गई है और खरीफ फसल बहुत कम में आच्छादन हुआ है। और अब किसान भाई रबी फसल की उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि जब खरीफ फसल नहीं तो रबी फसल लेना ज़रूरी है। किसान भाई को इस जीवन यापन के लिए रबी फसल जब तक नहीं अच्छी होगी उनकी जीव को उपार्जन में काफ़ी दिक्कत होगी। तो रबी फसल के उत्पादन में किसान भाई जो तैयारी कर रहे हैं खेत की, उसके लिए अब कुछ तो रबी फसल लगा भी रहे हैं, जैसे अभी जो है राई बहुत जगह लगा भी चुके होंगे और लगा रहे होंगे अभी।
0: अच्छा।
1: है ना, तो उसके लिए खेत की तैयारी, कुछ दिन में जो है गेहूं की भी बुआई करेंगे, है ना। तो ये सारे की तैयारी के लिए किसान भाई कृषि यंत्र का अगर उपयोग करेंगे तो काफ़ी उनको फायदा होगा, क्योंकि खेत की तैयारी से लेकर के जो फसल की कटाई तक भी है जो काफ़ी कृषि यंत्र का उपयोग उसमें होता है। अगर कृषि यंत्र का उपयोग किसान भाई करके खेती करते हैं तो उनकी लागत खर्च काफ़ी कम आएगी और उनका जो बचत होगा वो फायदे में महसूस होगा। तो इसके लिए किसान भाई कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी में आप जो है गेहूं की बुआई करना है, चाहे राई की बुआई करना है, या आप अभी जो कुल्थी की भी बुआई किए हैं, कुछ किसान भाई कर भी रहे हैं, है ना, उड़द की भी बुआई करना है, तो ये सारे में खेत की तैयारी एक विशेष महत्व रखता है कि खेत की तैयारी कैसे किया जाए। खेत की तैयारी में जैसे आप अगर आप मोल्ड बोल्ड जैसे हल आती है, एक मोल्ड बोल्ड हल से अगर खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें जो आपका बहुत सारा जो उसमें घास वगैरह है, खरपतवार है, वो मिट्टी में दब जाते हैं और मिट्टी में दब जाने से क्या है कि वो उसका उत्पादन, उसका जो बढ़वार जो है कम हो जाता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि रबी फसल में एक मेन प्रॉब्लम आती है खरपतवार का। खरपतवार अगर ज़्यादा आ जाता है तो रबी फसल का उत्पादन काफ़ी घट जाती है। तो उसमें अगर उससे उपयोग करके फिर कल्टीवेटर चला करके खेत की तैयारी करते हैं, प्राइमरी जुताई, प्रथम जुताई, तो आपका उससे अच्छी होती है। उसके बाद बुआई के लिए आपको सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए। कोई चीज़ की बुआई करते हैं तो सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए। सीड ड्रिल का उपयोग करने से क्या होता है कि वो लाइन में बुआई होती है और बीज से बीज की दूरी और कतार से कतार की दूरी जो है मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, जिससे कि आपकी फसल का बढ़वार जो है अच्छा होगा और उसका उत्पादन अच्छा होगा और उसको मैनेज करने में भी आसानी सुविधा होती है। उसी तरह से जैसे गेहूं की बुआई कर, तो गेहूं की बुआई में भी एक खर्च आती है, खेत की जुताई में एक अच्छा खर्च किसान को हो जाता है। तो उसमें भी अगर जीरो टिलेज मशीन की से गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें भी किसान की काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि ऐसा किसान भाई देख रहे हैं कि गेहूं की बुआई में जो है थोड़ा ज़्यादा समय पर नहीं बो पाते हैं किसान भाई।
0: अच्छा।
1: समय के पर नहीं बोने से उसके उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। ऐसे देखा गया है रिसर्च से कि अगर गेहूं की बुआई में एक दिन की भी देरी होती है तो उसके उत्पादन में करीब प्रति कट्ठा 1 केजी का उत्पादन घट जाता है। अगर सही सारे बीज और वही सेम रहे तो पर भी सिर्फ बुआई के लेट होने से आपका उत्पादन में 1 केजी का प्रतिदिन के हिसाब से घट जाती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन किसान भाई क्या होता है कि धान की जो खेती करते हैं उसी में गेहूं की खेती भी करते हैं, क्योंकि सिंचाई की सुविधा वहाँ उनको रहता है। जहाँ सिंचाई की सुविधा रहता है वहीं गेहूं की खेती करते हैं। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जिस खेत में धान की कटाई के बाद ही उसमें गेहूं की बुआई करते हैं, तो धान की कटाई में थोड़ा सा अगर देर हो जाती है और अगर खेत में नमी नहीं है तो खेत में नमी लाने के लिए उसमें सिंचाई भी करना पड़ता है। तो सिंचाई करने से क्या होता है कि आपका और देर एक कर कम से कम जो है 10-15 दिन और देरी हो जाती है, जब तक उसमें जोतने इतना नमी नहीं आती है फिर उसकी जुताई नहीं कर पाते हैं किसान भाई। तो धान काटने के बाद भी 15 दिन की देरी हो जाती है धान गेहूँ की बुआई में, तो इसके कारण जो है किसान को काफ़ी उसमें घाटा होता है। इसके लिए जो है तो धान काटने के बाद उसमें किसान भाई को गेहूं की बुआई में कम से कम 15 दिन की देरी हो जाती है। अगर उस स्थिति में किसान भाई जीरो टिलेज मशीन का उपयोग करते हैं तो समय पर उनकी बुआई हो जाती है, क्योंकि जीरो टिलेज मशीन में क्या होती है कि धान काटने के बाद उसमें तुरंत जो है जीरो टिलेज मशीन से गेहूँ की बुआई, चना की बुआई, मसूर की बुआई आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आज धान काटे अगर उसमें नमी कम भी है तो पर भी बुआई कर सकते हैं, और थोड़ा अगर नमी ज़्यादा भी है तो पर भी उसमें गेहूं की बुआई आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एडजस्टमेंट रहता है कि आपके बीज को किस डेप्थ पर गिराना है तो उसमें एडजस्टमेंट रहता है। तो इस मशीन से बुआई करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो खेत की जुताई करने में जो खर्च आती है वो बच जाती है, जुताई करने नहीं पड़ती है खेत की। दूसरी जो है कि खेत की जब जुताई नहीं होती है तो उसमें जो खर पतवार उगते हैं वो खरपतवार नहीं के बराबर उगते हैं। तीसरी फायदा ये होती है कि उसमें जो है सिंचाई में जो पानी लगती है वो पानी कम लगेगा, कम पानी में आपका ज़्यादा जो है खेत की सिंचाई हो जाती है। किसान भाई को ट्रिपल फायदा होता है उसमें। और तीसरी चौथी फायदा ये होती है कि इस तरह से बुआई करने पर कम करीब करीब उत्पादन जो है 10% बढ़ जाती है।
0: अच्छा,
1: तो ये उत्पादन कैसे बढ़ती है, क्योंकि इस मशीन से बुआई करने पर क्या होता है कि ये जीरो टिलेज मशीन में बीज गिरने का और खाद गिरने का अलग अलग पाइप से जो बना हो रहा है, इसमें क्या होता है एक फाल होता है जीरो टिलेज मशीन में जो खेत में एक चीरा लगाते जाता है और उस चीरा में ही गेहूं का बीज और खाद दोनों गिरता है। खाद ऐसा एडजस्टमेंट रहता है उसमें कि खाद जो है बीज से नीचे गिरता है,
0: अच्छा,
1: बीज थोड़ा ऊपर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि बीज से जैसे ही अंकुरण निकलता है उसको तुरंत खाद से पौष्टिक पदार्थ मिलने लगता है।
0: अच्छा,
1: तो शुरू से ही पौधा जो है काफ़ी हेल्दी रहता है और पुष्ट रहता है, जिसके कारण उसका उत्पादन करीब करीब जो जनरल बोते हैं उससे 10% उत्पादन ज़्यादा आता है।
0: और राई वगैरह में,
1: राई सब सारे मेरे राई थोड़ा सा इसमें जीरो टिलेज से बोने नहीं बोया जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है। इसमें आप चना बो सकते हैं, मसूर बो सकते हैं, थोड़ा मोटा जो बीज है उसको बोने में आसानी हो। तो इस तरह से अगर जीरो टिलेज मशीन से बुआई करते हैं तो काफ़ी किसान भाई को फायदा हो सकता है और उससे उत्पादन ज़्यादा आता है। तीसरी मशीन जो है कि जो मल्टी क्रॉप प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर से भी जो है किसान भाई खेती कर सकते हैं और अपना जो गेहूं, चना, मसूर जो है उसकी रबी फसल की बुआई कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है खेत की, इसमें जो है खेत की तैयारी करना पड़ता है, खेत की तैयारी करके आप जो है मल्टी क्रॉप प्लांटर से आप जो है बीज को खेत में बो, इससे क्या होता है कि आपका पौधा से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन रहती है और उसको मैनेज किया जा सकता है। तीसरी है कि अगर किसान भाई खेत की तैयारी करके बोना चाह रहे हैं कोई चीज़ तो उसमें सीड ड्रिल भी का भी उपयोग कर सकते हैं। सीड ड्रिल में क्या होता है कि सीड ड्रिल मैनुअल भी आती है और पावर चालित भी आती है और बैल चालित भी आती है।
0: अच्छा,
1: तो तीनों तरह के सीड ड्रिल आती है, उस सीड ड्रिल से किसान भाई बीज को बुआई कर सकते हैं। तो मैं किसान भाई से यही कहूँगा कि जो छींटा विधि से जो बुआई करते हैं किसान भाई, छींटा विधि से ना करके अगर ये सारे मशीन का उपयोग करके किसान भाई करते हैं तो आपका बीज भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छा आएगा और खर्च में कमी आएगी। तो किसान भाई को ये मैं सजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप खेत में कृषि यंत्र का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएँ, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो।
0: वास्तव में किसान भाइयों, कृषि यंत्रों का खेतीबाड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें ज़रूरत है कि जिस फसल के लिए जिस यंत्रों की आवश्यकता हो उसका हम उपयोग करें। और उपयोग करके हम बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम पूंजी लगा देते हैं किसान भाइयों, और पूंजी लगाने के बाद हमारी आशा होती है कि हम दोहरा तिहरा मुनाफा प्राप्त करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम, आज कृषि आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है, हमें कृषि यंत्रों का अवश्य सहयोग लेना चाहिए। हमें कृषि यंत्र अनुदानित दर पर भी मिलते हैं। हमें आत्मा से संपर्क करना चाहिए, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना चाहिए, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान से संपर्क करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और कृषि यंत्रों से जुड़ी जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। किसान भाई, अभी का जो समय है, क्योंकि हमारे जिले में आसपास के अन्य जिलों में इस बार मानसून किसानों के साथ रहा है, धान की बुआई हमारे किसान भाई कर चुके हैं। अब जो उनके लिए जो महत्वपूर्ण जो समय है वह है धान में खर पतवार नियंत्रण। किसान भाई, जब भी आपको किसी भी फसल से बेहतर उत्पादन लेना है तो फसल में जो उगने वाले अवांछित जो खर पतवार हैं उन्हें हटाना जरूरी होता है। ये किसान भाई भी अच्छी तरह जानते हैं। खर पतवारों का वो लोग निराकरण भी करते हैं, निकालते भी हैं। तो ऐसी अभी का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब खरपतवार जब बड़े हो जाएंगे, जो पोषण मुख्य फसल को मिलना चाहिए वो खरपतवार शोषित कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन कम हो जाएगा, आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। तो ऐसी गलती किसान भाई ना करें जो भी फसल आप लगाते हैं, क्योंकि जब तक से आप खरपतवारों का विधिवत नियंत्रण नहीं करते, निकाई गुड़ाई नहीं करते, तो उसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है और आपका मेहनत, आपकी लागत, आपके हौसले को पस्त करता है। क्योंकि जो भी खरपतवार होता है, क्योंकि जो भी आपके खेतों में खरपतवार अनायास उग आए, तो निश्चित यह मान लीजिए कि वह मुख्य फसल का जो भूमि से जो प्राप्त होना चाहिए उसको वह खरपतवार शोषित कर लेते हैं, उसका लाभ जो है मुख्य फसल को नहीं मिल पाता है। तो खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें, चूँकि धान लगा चुके हैं तो उसमें खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। तो आज की बात अब यहीं तक। दीजिए अपने दोस्त प्रदीप को इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कृषक महिलाओं का कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

स्वागत है आपका कृषक महिलाओं का कार्यक्रम ग्रामीण सभा में। सबसे पहले आज बात करेंगे बकरी पालन पर। बकरी पालन का क्या महत्व है यह जानना जरूरी है, और हमारा जो प्रदेश है झारखंड में, बकरी पालन की समस्या क्या है और संभावनाएं, इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बकरी पालन का महत्व इसमें है कि गरीब से गरीब किसान या मजदूर अथवा महिलाएं बकरी पालन कर सकती हैं। बकरी पालन हेतु किसी विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कम लागत एवं विपरीत परिस्थितियों में भी पाली जा सकती है। बकरी 9 से 12 महीने के आयु में प्रजनन करने लगती है। सामान्यतः एक वर्ष में दो बार बच्चे देती है, प्रत्येक बार में दो या दो से अधिक बच्चे भी देती है, कभी कभी एक भी बच्चे देती है। यह पूरे वर्ष रोजगार प्रदान करती है। कम समय में इसे दूध एवं मांस प्राप्त किया जाता है। बकरी का दूध मनुष्य के बच्चों के लिए अधिक पौष्टिकारक है। इनसे अच्छी गुणवत्ता वाली मांस की प्राप्ति होती है तथा इनका मांस अन्य पशुओं की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके, अभी हमने बात की महत्व के बारे में, अब हम बात करेंगे हमारे प्रदेश में बकरी पालन की समस्याएं एवं संभावनाओं पर। झारखंड में बकरी पालन का कार्य सदियों से किया जा रहा है। यहाँ के आदिवासियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रहने वाले गरीब लोगों के बीच मांस एक लोकप्रिय आहार है। बकरी अन्य पशुओं की तुलना में यहाँ के किसानों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल या चारागाह की कमी नहीं है। बकरी पालन कम से कम लागत में किया जा सकता है और इस पर बहुत कम खर्च करना पड़ता है। बकरी का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण पालन पोषण बड़े पशुओं की तुलना में आसान होता है। परिवार की महिलाएं या बच्चे आसानी से बकरियों की देखभाल कर सकते हैं। इनमें बीमारियां भी अपेक्षाकृत कम होती हैं। ये आमदनी एवं मांस के महत्वपूर्ण स्रोत है, इसीलिए इसे ग्रामीण क्षेत्र में इसको ATM भी हम लोग कहते हैं। किसान भाई, यह जो है बकरी पालन, झारखंड के किसान बकरी पालन अधिकतर मांस के लिए करते हैं। राज्य में ब्लैक बंगाल जाति की बकरियां ज़्यादा

पालन की समुचित एवं वैज्ञानिक जानकारी नहीं होने के कारण बकरियों से किसानों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। देसी बकरियों के नर बच्चों का वजन 6 महीनों की उम्र में औसतन 7 से 8 किलोग्राम होता है, जिससे हमारे बकरी पालकों को 700 से 800 रुपये प्रति बच्चा ही प्राप्त हो रहा है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की मदद से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में एक बकरी फार्म खोला गया है, जिसमें बीटल नस्ल के बकरों से देसी बकरियों का प्रजनन कराकर ऐसी संकर नस्ल की बकरी तैयार की गई है जो इस क्षेत्र में पाले जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संकर नस्ल के बच्चों का शारीरिक वजन 6 माह की उम्र में 14 से 15 किलोग्राम तक हो जाता है एवं संकर बकरियां दूध भी करीब 1 लीटर प्रतिदिन देती हैं। और खास बात यह है कि इनकी प्रजनन क्षमता भी यहाँ की देसी बकरियों जैसी ही है। अगर हमारे बकरी पालक भाई या जो महिलाएं संकर नस्ल की बकरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान दें तो देसी बकरियों की तुलना में होने वाली आय में 3 गुना वृद्धि की जा सकती है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां बकरी पालन के लिए काफ़ी उत्तम है। यहाँ पाई जाने वाली ब्लैक बंगाल बकरी से यदि बीटल नस्ल के बकरे का प्रजनन कराया जाए तो इससे संकर नस्ल की बकरियाँ प्राप्त होंगी और इस संकर नस्ल के बकरों का प्रजनन संकर नस्ल के दूसरे गांव की बकरियों के साथ जिनका आपसी संबंध ना हो कराया जाए तो ऐसे में यहाँ के किसानों को एक अच्छे नस्ल की प्राप्ति होगी, जिसमें ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता तो ब्लैक बंगाल की होगी परंतु शारीरिक आकार एवं दूध देने की क्षमता बीटल नस्ल की। इससे किसानों को मांसवर्धक नस्ल के साथ साथ दूध की भी प्राप्ति होगी एवं इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अब हम बात करेंगे इनके प्रमुख जो है जो हमारे देसी जो नस्लें हैं। वैसे तो पूरे विश्व में कई तरह की प्रजाति की बकरियां पाई जाती हैं, 102 से भी अधिक प्रजाति की बकरियां लगभग पाई जाती हैं, लेकिन हमारे देश में 20 प्रजाति की बकरियां पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से मांस उत्पादन हेतु उपयुक्त है। जैसे ब्लैक बंगाल नंबर 1 में आता है, जो हमारे झारखंड में हमारे जो किसान भाई पालते हैं ब्लैक बंगाल। दूसरा है जमुनापारी, तीसरा है बारबरी, चौथा है सिरोही, पांचवा है बीटल, छठा मारवाड़ी, सातवां मालाबार, आठवां जकराना, दसवां कश्मीरी, गंजम, कच्छी, चेगू, गिद्दी इत्यादि कई तरह के। तो अगर हम ब्लैक बंगाल की बात करें किसान भाई, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आप ब्लैक बंगाल को बीटल से अगर आप मेल कराते हैं तो जो संकर नस्ल आपको प्राप्त होगा वह ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो लोकल जो हमारी जो बकरी है ब्लैक बंगाल, इस नस्ल की बकरियां हमारे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा एवं बांग्लादेश में पाई जाती है। इसका रंग मुख्यतः काला होता है और कुछ बकरियाँ भूरा एवं सफ़ेद बाल देखने को मिलता है। काले रंग के कारण इसे ब्लैक बंगाल कहा जाता है। अगर हम किसान भाई बात करें जमुनापारी की, तो जमुनापारी अन्य जो नस्ल है इसकी तुलना में यह जमुनापारी ऊंची तथा लंबी प्रजाति है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले तथा गंगा, जमुना एवं चंबल की तराइयों में पाया जाता है। इस नस्ल की बकरियों के नाक काफ़ी उभरे हुए होते हैं, जिसे रोमन नोज कहते हैं। सिंग छोटा और चौड़ा होता है और वयस्क नर का औसत वजन 70 से 90 किलोग्राम एवं मादा का 50 से 60 किलोग्राम।

अगर हम बीटल नस्ल की बात करें किसान भाई, तो इस नस्ल की बकरियां देखने में जमुनापारी बकरियों की तरह होती हैं, किंतु ऊंचाई एवं वजन की तुलना में कुछ छोटी होती है। इनका कान लंबा चौड़ा और लटकता हुआ होता है, नाक जमुनापारी की तुलना में कम उभरा हुआ होता है, सिंह बाहर एवं पीछे की तरफ घुमा होता है, कान की लंबाई जमुनापारी की तुलना में कम होती है। इसके शरीर का रंग भूरे रंग पर सफ़ेद धब्बा लिए होता है। इसका शरीर गठीला एवं बेलनाकार होता है। और यह जो है किसान भाई, सभी जलवायु के लिए बीटल नस्ल उपयुक्त माना जाता है। अब हम बात करेंगे बारबरी, जो प्रमुख नस्ल है। इस नस्ल की बकरियां मूल रूप से मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिन्हें सर्वप्रथम भारतवर्ष में पालरियों द्वारा लाया गया था, या उत्तर प्रदेश के आगरा मथुरा एवं अन्य लगे क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। यह छोटे कद की बकरी है। इसका शरीर काफ़ी गठीला होता है और इसमें जो है मांस और दूध यह दोनों के लिए उपयुक्त माना जाता है, जो बारबरी है। दो वर्ष में तीन बार बच्चों को जन्म देती है और एक बयान में दो से तीन बच्चों को जन्म देती है। वयस्क नर का वजन तैयार होने पर 35 से 40 किलोग्राम और मादा का वजन 25 से 30 किलोग्राम होता है। और एक प्रमुख नस्ल है किसान भाई, उसकी भी हम बात कर लें, सिरोही। किसान भाई, इस नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से राजस्थान के सिरोही जिले में पाए जाते हैं, या गुजरात एवं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इस नस्ल की बकरियों का रंग सफ़ेद एवं भूरा मिश्रित होता है। इसके कान लंबे होते हैं, शरीर पर बाल मोटा एवं छोटा होता है, पूंछ मुड़ा हुआ एवं पूंछ के बाल खड़े होते हैं। यह सालाना एक बयान में दो बच्चों को जन्म देती है। इस नस्ल के बकरों का प्रयोग भी अन्य छोटे नस्लों के नस्ल सुधार हेतु किया जा रहा है। तो किसान भाई, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं और उससे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप ब्लैक बंगाल के लिए जब भी आप बकरा खरीदें, तो या तो सिरोही खरीदें या बीटल खरीदें, क्योंकि यहाँ के मौसम के लिए उपयुक्त है, और उसको आप संकर नस्ल में कन्वर्ट करें, तब्दील करें, और उससे आप मांस और दूध दोनों प्राप्त करें। वैसे विदेशी नस्लें भी है, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो माताएँ बहनें हैं, वो भी नस्ल पालती हैं, लेकिन वह पालना आपको, क्योंकि यहाँ उन लोगों को समय लगता है, यहाँ का जो मौसम है, चूँकि ठंडे प्रदेशों की बकरियाँ हैं, हमारा प्रदेश जो है गर्म है, तो उसमें उन लोगों को सेट करने में यहाँ के मौसम में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर वैसी सुविधा उनको व्यवस्था दी जाएगी, तो आप उसे यहाँ भी पाल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे उनके आवास की व्यवस्था, उनकी आवास की व्यवस्था कैसी हो। तो किसान भाई, अगर आप बकरी पालन करने के लिए उत्सुक हैं, या करते हैं या कर रहे हैं, तो उसके लिए बकरियों को सर्दी, गर्मी, वर्षा एवं जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें निश्चित आवास में रखें, परंतु बहुत लंबे चौड़े घर की जरूरत इन्हें पालने के लिए नहीं होती। हमारे देश में शहरों तथा गाँव में बकरियाँ पाली जाती हैं, देहातों में अधिकांश समय उनका बाहर चरने और घूमने में बीत जाता है। रात में उन्हें घर के किसी कोने में बंद कर दिया जाता है, या किसी पेड़ के नीचे या ओसारे में बांध दिया जाता है। किंतु शहरों में बकरियों को प्रायः घर पर रखा जाता है। फॉर्मों में बकरियों के लिए किसी न किसी प्रकार की गृह व्यवस्था करना जरूरी होता है। ऐसे मामले में सबसे पहले विचार करने योग्य बात यह है कि बकरियों को रखने के लिए तैयार किए जाने वाले घरों में पर्याप्त स्थान होना चाहिए, प्रकाश एवं वायु के आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, एवं जल निकासी के लिए भी अच्छा प्रबंध होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से आप उनके गृह की व्यवस्था कर सकते हैं, और ऐसे स्थान पर उन्हें रखें जहां जल जमाव ना हो, वर्षा से उन्हें बचाएं, क्योंकि और एक प्रमुख बीमारी होती है बकरियों में, जिसे हम लोग PPR के नाम से बोलते हैं। उन्हें समय पर पशु चिकित्सक की सलाह से स्वस्थ बकरियों को
उसका टीका आप अवश्य लगवाएं, क्योंकि यह बहुत तो भयंकर और खतरनाक बीमारी है, जानलेवा है। और जो भी आप पशु अगर बकरी आपका बीमार है तो स्वस्थ पशुओं से उसे अलग बांधें, ताकि वह बीमारी अन्य पशुओं में न फैल पाए, इस बात का ध्यान रखें। और सरकार तो भाई प्रशिक्षण इसके लिए भी प्रशिक्षण देती है, अगर आप चाहते हैं तो आप निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करके इसे व्यवसाय के रूप में अपना कर आप अपनी आमदनी सुदृढ़ कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये तो बात हुई बकरी पालन की। आइए अब सुनते हैं वार्ता। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वार्ताकार हैं सुषमा श्रीवास्तव।

यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि के बेहतर उत्पादन के लिए तथा अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उन्हीं प्रयासों में से एक है। उन्नत खेती के लिए अच्छी सिंचाई बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। यह पहली बार वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था। इसका मुख्य प्रतीक हर खेत को पानी है। इसका गठन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया था। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को यह जानना आवश्यक है कि वे इसके लिए पंजीयन या आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों के पास प्रधानमंत्री कृषि योजना 2023 के दस्तावेज, आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन के कागजात का रहना आवश्यक है। PMKSY की शुरुआत के 3 महीने की अवधि के भीतर DIP और SIP को अंतिम रूप से दिया जाना है, जो कि जिला स्तर पर होता है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी के उपयोग को बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रति बूंद का बड़ा ही महत्व है। स्प्रिंकल और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल संचरण संरक्षण पर केंद्रित है। यह कम तकनीक वाले सिंचाई उर्वरक के उपयोग, श्रम व्यय और इनपुट लागत को कम करता है। प्रति बूंद अधिक फसल PMKSY ढांचे की कला को अपनाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 2023 की बात करें तो देश के हर खेत को पानी पहुंचाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग में होने वाले नुकसान को रोका जा सके। इस योजना के लिए केंद्र द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा और 25% खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह यह योजना केंद्र और राज्यों का सामूहिक प्रयास होगी। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 50,000 करोड़ की राशि निवेश की है। इस तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की रूपरेखा तैयार है। हम देखते हैं कि इसमें 2 बातें हमारे सामने आती हैं। पहला, सिंचाई की विभिन्न तकनीकों द्वारा फसल को पर्याप्त पानी पहुँच

0: बचाना और पानी के दुरुपयोग को रोकना। दूसरा, कृषि लायक भूमि का विकास और उसका संवर्धन करना। इस योजना के अंतर्गत वाटर सेड डेवलपमेंट को भी अपनाया गया है। खेत का बड़ा हिस्सा यदि असिंचित रह जाता है तो ऐसे में हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सीधे बहाव के माध्यम से एवं ऊपरी भाग में डीजल पंप के माध्यम से सिंचाई की जा सकती है। हम इस योजना के बारे में यदि झारखंड के संदर्भ में जानना चाहेंगे तो यहाँ करीब 8 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। बोकारो को 1.21, दुमका को 2.16, गुमला को 2.57, लातेहार को 1.9, लोहरदगा को 2.94 तथा पलामू के 1.49 करोड़ रुपए का भुगतान होना तय हुआ है। प्रति बूंद अधिक उपज के तहत रांची को कराए गए कार्यों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। इस तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमारे सामने है। आवश्यकता है हमें जागने और चेतने की, ताकि हम सही वक्त पर आवेदन करके अपने खेतों के लिए सिंचाई को सुनिश्चित करें और अपने हित के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करें।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, वार्ताकार थी सुषमा श्रीवास्तव। अब हम बात करेंगे पशुओं में गांठदार त्वचा रोग के बारे में, जिसे हम लैम्पी स्किन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। मुख्यतः गौ जाति एवं भैंस जाति के पशुओं को संक्रमित करने वाला एक विषाणु जनित छुआछूत की बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित मक्खियों, मच्छरों एवं चमोकन के काटने से होता है। बीमार पशु के आँख, नाक के स्राव, लार एवं घावों के स्राव एवं खोटी के संपर्क में स्वस्थ पशु के आने पर भी इस बीमारी के प्रसार की संभावना रहती है। बीमार जो दुधारू पशु है उसके थन में घाव हो जाने के कारण दूध पीने वाला बाछा जो बाछी है उसमें भी यह बीमारी फैल जाती है। गाभिन गाय भैंस यदि इस रोग से संक्रमित हो गई है तो उससे जन्म लेने वाला जो बाछा बाछी है उसमें भी यह बीमारी जन्म से आ जाती है। संक्रमित जो सांड भैंसा है उससे भी पाल दिलाने पर यह बीमारी फैल जाती है, या संक्रमित जो सीमेन है उससे भी यह बीमारी फैल जाती है। इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं कि संक्रमण जब हो जाएगा, संक्रमित आपका पशु हो जाएगा, तो संक्रमण के प्रारंभ में आँख एवं नाक से स्राव का आना, लसिका ग्रंथियों में सूजन, तेज बुखार, दुग्ध उत्पादन में गिरावट, त्वचा पर गांठदार घाव का उभरना जो कुछ समय के बाद लगभग पूरे शरीर में फैल जाता है, आमतौर पर मादा पशुओं में थनैला होना देखा गया है। कुछ बीमार पशु इस रोग के संक्रमण से निमोनिया के शिकार हो जाते हैं और इस बीमारी से मृत्यु दर लगभग 10% तक है। इस बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए किसान भाई समय समय पर स्वस्थ पशुओं को टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुओं में बीमारी के लक्षण पाए जाने पर इसकी सूचना अविलंब नज़दीकी पशु चिकित्सक को दें। बीमारी के प्रारंभ में ही पशुओं का उपचार कराएं। बीमार पशु को अलग रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, मच्छर मक्खी एवं चमोकन पर नियंत्रण हेतु कारगर उपाय करें, यथा गौशाला के पास जल जमाव न होने दें, नालियों को साफ रखें, बाह्य परजीवी नियंत्रण हेतु दवा का उपयोग करें, संक्रमित पशुओं को बाहर चारागाह में चरने हेतु न भेजें, संक्रमण के दौरान पशुओं का क्रय विक्रय भी न करें, गौशाला में आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रखें। इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप इसे बीमारी को रोक सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गांठदार त्वचा रोग के लिए। अब हम बात करेंगे मौसम के मिजाज का। राजस्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32

2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 83% जबकि शाम की आर्द्रता 72% दर्ज की गई। वर्षापात शून्य। तो इसी के साथ ही मौसम की जानकारी के साथ आज का कृषक महिलाओं का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त प्रदीप को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कृषक महिलाओं का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर

0: अंदर सोएं।
1: बुखार होने पर ओझा गुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
0: व्यक्ति जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
3: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
2: अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
3: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
2: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
4: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड।
6: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
7: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
8: कंडो
7: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
9: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
10: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा को प्रदेश भाजपा ने बताया कूटनीतिक जीत। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा पारंपरिक झारखंडी स्वाद के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा पलाश कैफे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा के परिणामों पर भाजपा ने फिर उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने पूजा समितियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। सीसीटीवी लगाने और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में 17 सितंबर तक गरज के साथ अच्छी बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
12: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
11: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के नई दिल्ली घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा को लेकर झारखंड में भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश भाजपा के नेता प्रतुल शाहदेव ने इसे भारत की शानदार कूटनीतिक जीत बताया है। उन्होंने आज रांची में कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षमता को दर्शाता है।
13: ये बहुत ही शानदार कूटनीतिक जीत है भारत की, प्रधानमंत्री जी के ये नेतृत्व क्षमता का आपको एहसास दिलाता है। सब एक मंच पर आते हैं और कहते हैं पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ था, चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया था, बेहद ही निंदनीय है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का सबसे बड़ा हाई पॉइंट यही है कि एक स्वर में सबने पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म की निंदा की है।
11: इधर प्रदेश कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार से पूछा कि ब्रिक्स से भारत को क्या हासिल हुआ, ये जनता को बताना चाहिए।
14: कि इतने बड़े ब्रिक्स के सम्मेलन में और बहुत सारी बातें हुई हैं, तो उसको आप हाईलाइट नहीं करके जो स्वाभाविक बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि इसमें किन देशों ने उस वक्त जब पहलगाम में

0: हमला हुआ तो इस घटना की प्रशंसा की थी या उस पर खुशी जाहिर किया था, तब तो हम मानेंगे कि बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है।
1: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि पलाश दीदी कैफे झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के हुनर को रोजगार, सम्मान और बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई राह खोल रहा है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक झारखंडी स्वाद को पहचान देते हुए ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंत्री ने कहा कि पलाश कैफे में हर स्वाद के साथ एक दीदी के सपने को नई उड़ान मिल रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि उनके जनता दरबार में बिना किसी भेदभाव के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आज उन्होंने कहा कि हर धर्म और वर्ग के लोग विश्वास के साथ अपनी समस्याएं लेकर जनता दरबार में पहुंचते हैं। श्री अंसारी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि देश में 280,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सहायता सुविधाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सहायता को मजबूत करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 142 नए वरिष्ठ नागरिक गृह स्वीकृत किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। गिरिडीह जिले में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागपुरी भाषा से संबंधित परीक्षा में परिणाम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इसकी निष्पक्ष जाँच जरूरी है। श्री साहू ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की जाँच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई।
2: किस प्रकार से झारखंड के बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको नौकरी नहीं देकर के झारखंड से बाहर के बच्चों को नौकरियां बेची गई है, किस प्रकार का प्रावधान किया था कि रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, क्या मैं उस विषय की परीक्षा में भी जो नागपुरी का ना जानता हो, प्रथा का पता ना जानता हो, लेकिन झारखंड के बच्चे जो बोलते वो पास नहीं किए, दूसरे राज्यों के बच्चे पास है।
1: राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन ने झारखंड सरकार से विधवा महिलाओं को भी मैया योजना की तर्ज पर 2,500 रुपये प्रतिमाह देने की मांग की है। रांची में आज आयोजित सम्मान समारोह और सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती बेहरा ने कहा कि विधवा महिलाओं को वर्तमान में मिल रही 1,000 रुपये की पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये की जानी चाहिए।
3: झारखंड सरकार से इतना मांग करती हूँ कि मैया योजना के तहत जो 2,500 रुपया सबको मिल रहा है वो विधवा महिलाओं को भी मिले 2,500। भेदभाव ऐसा क्यों, ये 2-3 साल होने जा रहा है, पैसा मिल रहा है सबको। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसमें ज्यादातर ज्यादा लोग घर का काम करके अपना पेट पालते बपालता, ऐसे सिचुएशन में सरकार ने अनदेखा विधवा महिला लोग को कैसे कर दिया।
1: आगामी दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने पूजा समितियों और आयोजकों के लिए सुरक्षा और विधि व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने पंडाल निर्माण में अग्नि और विद्युत सुरक्षा का ध्यान रखने तथा महिला पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अलावा पंडालों में अग्निशमन यंत्र, पानी, बालू, प्राथमिक उपचार और पर्याप्त सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची की सोनाहातू में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से आज पति और पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सिल्ली रांगामाटी मुख्य मार्ग जाम कर दोनों शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण मुआवजे और सड़क सुरक्षा की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और स्थिति सामान्य की। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 17 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि रांची, रामगढ़ और हजारीबाग सहित राज्य के कई जिलों में इस दौरान अच्छी बारिश होने की अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों

0: अच्छी बारिश हो सकती है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम को जूनियर एशिया कप 2026 में खिताबी जीत के लिए हॉकी इंडिया ने पुरस्कृत किया है। इसके तहत हर खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस खिताबी जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने जूनियर विश्व कप के लिए भी स्थान पक्का किया है। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने भी कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा को प्रदेश भाजपा ने बताया कूटनीतिक जीत। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा पारंपरिक झारखंडी स्वाद के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा पलाश कैफे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा के परिणामों पर भाजपा ने फिर उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने पूजा समितियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। सीसीटीवी लगाने और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में 17 सितंबर तक गरज के साथ अच्छी बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आपकी चाय। EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
1: कैसे?
2: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना इजी?
2: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
2: ना भाई ना। अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं।
5: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
4: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
5: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
6: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
9: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
10: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
11: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
10: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
11: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
10: माहवारी प्रारंभ होती है,
11: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
10: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: प्रस्तुत है विनय में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संचालित टपक सिंचाई योजना के माध्यम से गुमला जिला के किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस योजना का लाभ उठा रहे किसानों ने बताया कि
2: पहले बहुत बेरोजगार और बहुत गरीबी स्थिति से है, लेकिन हमें मन कुछ जमीन लीज में लेके एक टमाटर गोदी बैगन मिर्चा ये सब लगाए के और फिर शिमला लागे को वाला है 20 तारीख के, फिर शिमला भी आओ थे रायपुर से ओके लगाए के अपन छुआ पोता के बढ़िया से पढ़ा थी लिखा थी और अपन जीविका चला थी बढ़िया से, कोई वैसा दिक्कत ना खे दो चार पैसा ले सोचे नहीं पड़ेला।
1: केंद्र सरकार मछली उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े किसानों के आय में वृद्धि तथा अन्य किसानों को भी इस क्षेत्र से जोड़ने को लेकर 6 वर्ष पूर्व 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से जुड़कर गुमला जिला के किसान भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। गुमला जिला के किसान बताते हैं कि

0: मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़कर मैं मछली पालन का कार्य कर रहा हूँ बीते एक वर्षों से, और मुझे इसमें काफी अच्छा लग रहा है। इसमें इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ धान और गेहूँ मड़ुआ इस सब का ही खेती करता था।
1: वहीं इस संबंध में जिला मत्स्य प्राधिकारी ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे भारतवर्ष में 2020 में प्रारंभ की गई थी, और ये 5 साल के लिए फेज 1 स्टार्ट किया गया था। 2020 में गुमला जिला में मत्स्य उत्पादन लगभग 9,000 मेट्रिक टन था, और वर्तमान के समय में हमारा प्रोडक्शन जो है फिश प्रोडक्शन ये 20,000 मेट्रिक टन हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आने से यहाँ पे निजी क्षेत्र के कई ऐसे बेरोजगार मत्स्य कृषक, जो युवक और युवतियाँ जो बाहर चले जाते थे, पलायन कर जाते थे रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए, उन्हें इसी जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए साधन मिले। और इसमें बहुत सारी मत्स्य के क्षेत्र में नवाचार भी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हमारे गुमला जिले में 202 योजनाएं आई 2020 से लेकर के अभी 2024 तक, और इसमें लगभग हमारे 6,500 से 7,500 किसान आज मासी के क्षेत्र में जुड़ चुके हैं। इन लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रुका है काफी हद तक, और अर्थव्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है, और अर्थव्यवस्था के साथ में इनकी सामाजिक स्तर भी काफी बढ़ा है। और जो लोग पहले मत्स्य पालन को एक पारंपरिक तरीके से करते थे, आज वो वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए हमारा फिश प्रोडक्शन काफी बढ़ा है।
1: बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेकर गुमला जिला के किसान न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि जिला से पलायन भी रुक गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
3: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गीत एवं गजलों का प्रोग्राम स्वरांजलि।

फौजी साथियों, वो पल वो मौका जब तक फौजियों के जीवन में ना आए तब तक उनके अंदर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिशें हिलोरी लेती रहती हैं। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जीवन में उस कहानी की शुरुआत हुई जब 1999 में वे 12 बिहार बटालियन में सेवारत थे और उनकी यूनिट जम्मू कश्मीर में तैनात थी, जहां उन्हें आतंकवादी विरोधी अभियानों का जिम्मा सौंपा गया था। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी घातक टीम के प्लाटून कमांडर नियुक्त किए गए थे, जिस टीम को जम्मू कश्मीर के अग्रिम सुरक्षित क्षेत्र में स्थित फौलाद पोस्ट पर तैनात किया गया था। अचानक दुश्मन सैनिकों ने भारी तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए थे और पोस्ट पर हमला बोल दिया। चारों तरफ भयंकर गोलों की गूंज फैल रही थी। इधर से भी जवाबी हमले किए जा रहे थे। देखते ही देखते भारतीय सेना के जवानों ने उनके हमले को विफल कर दिया और कैप्टन गुरजिंदर सिंह ने अपने जवानों को तैनात कर दिया था कि दुश्मन की हर एक चालों को नाकाम कर दिया जाएगा। वहीं दुश्मनों की लगातार कार्यवाही हो रही थी, वे अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे थे। इधर भारतीय सेना ने सुनियोजित अभियान शुरू कर दिया था कि वे दुश्मनों को करारा जवाब देकर ही रहेंगे। इस अभियान को ऑपरेशन बिरसा मुंडा नाम दिया गया। ये नाम भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक के नाम पर रखा गया था। फौजी साथियों, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई और बंकरों को एक एक करके खाली कराने की मुहिम शुरू कर दी। इसके चलते एक सैनिक घायल हो गया था। दुश्मन वहां पर भी अपने हथियार से गोलियां बरसा रहे थे।

तभी कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने अपनी राइफल उठाकर दुश्मन के दो सैनिकों पर वार कर मार गिरा दिया। देखते ही देखते दुश्मनों की ओर से गनों में शांति छा गई, लेकिन इसी दौरान उनकी बाह में दुश्मन की गोली जा लगी। अपनी परवाह किए बगैर उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व जारी रखा और एक बंकर में हथगोले फेंक दिए। फिर वे भी उस बंकर में घुस गए और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। होनी यहाँ पर होकर रही, अचानक दुश्मनों ने ग्रेनेड चला दिया जो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जा लगा। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी चोट को अनदेखा कर वे मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने अस्पताल जाने से मना कर दिया और अंतिम सांस तक अपने फौजी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गए। 25 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और शहीदों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए। उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण सेवा भाव हमेशा याद किया जाएगा।

फौजी साथियों, इस युद्ध में दुश्मन सैनिक भी मारे गए और उनके कई बंकरों को नष्ट कर दिया गया था। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को उनकी असाधारण वीरता जाबाजी के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2000 में मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया और इस तरह वे सेना आयुध कोर के पहले अधिकारी बने जिन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ।

रुकना नहीं, झुकना नहीं, ना ही टूटना है, हारना सीखा नहीं मेरे देश के जवानों ने, उन्होंने तो बस मौत को जीतना सीखा है। फौजी साथियों, ऐसे वीर अदम्य साहसी कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को दिल से नमन प्रणाम करती हूँ।

के विशेष जयमाला कार्यक्रम की कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर मंत्री वर्मा का और संपादन मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाया प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले ने। तो अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम
1: पूरे हिंदुस्तान भर

0: से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे मास्टर इब्राहिम अजमेरी का क्लैरिनेट। आज की फिल्में हैं गंगा जमुना और कन्हैया।

अभी आपने मुकेश की आवाज में सुना कन्हैया फिल्म का गाना, आज आपने मास्टर इब्राहिम अजमेरी का क्लैरिनेट सुना। अब आज का इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल में हम आपको सुना रहे हैं वीएम आनंद का लिखा प्रहसन राजेश और राकेश, निर्देशक हैं श्याम सुंदर प्रसाद।
1: डैडी डैडी,
2: ओहो, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। अरे भाई, आखिर बात क्या है?
1: डैडी, मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ।
2: खुशखबरी? वाह वाह वाह, तो फिर सुनाओ भाई, क्या खुशखबरी है?
1: वो राजेश है ना।
2: राजेश? कौन राजेश?
1: वही राजेश जो हमारे घर आया करता है। उसने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है।
2: क्या? तो तुम्हारी शादी और उससे? ये कभी नहीं हो सकता।
1: क्यों नहीं हो सकता? हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं।
2: लेकिन मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: टैडी, आप राजेश को अच्छी तरह नहीं जानते। वो बहुत अच्छा लड़का है। आज मैंने उसे घर पर इनवाइट किया है।
2: अरे आने दो उस बदमाश को, मैं उसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा।
1: अरे राजेश, आ गए तुम? अंदर आ जाओ। टैडी, ये है राजेश।
3: लेकिन मैं तो
2: बच्चू रोज छुप छुप कर मेरी बेटी से मिलते थे, आज मेरे जंगल में आ गए हो। अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहाँ है मेरा हंटर?
1: डैडी, आप क्या कह रहे हैं?
3: सुनिए सर, सुनिए मेरी बात तो सुनिए।
2: अरे ये ऐसे नहीं मानेगा
3: सर, मेरी बात तो सुनिए।
1: डैडी रुक जाइए, डैडी रुक जाइए, मत मारिए मेरे राजेश को। इस हंटर से ना मारो मेरे दीवाने को।
2: तो बरकरार कैसी पिटाई लगाई मैंने?
3: मर गया मर गया। सर, पिटाई तो आपने बहुत अच्छी की, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि मैं आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? हाय
2: क्यों उठाई? अबे अबे, तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा बेशरम। पहले तो तुम हाथ धोकर बेटी के पीछे पड़ गए और अब उससे शादी करना चाहते हो?
3: जी
1: राजेश, हिम्मत रखो, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैं डैडी को मना लूंगी, हमने प्यार किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया
3: है। अरे किस कमबख्त ने तुमसे प्यार किया है? मैं मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तुमसे प्यार करूं?
2: देखा देखा बेटी, चार हंडल पड़े और प्यार प्यार सब भूल गया।
1: ये तुम क्या कह रहे हो राजेश?
3: अरे कौन राजेश? मैं राजेश नहीं हूँ, नहीं हूँ।
1: नहीं नहीं, ऐसा मत कहो राजेश, ऐसा मत कहो। प्यार करने वाले छोटे मोटे पिटाई की परवाह नहीं करते, वो तो हंसते हंसते जान दे देते हैं।
3: ओहो, मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं राजेश नहीं हूँ, मैं उसका पत्नी सिर्फ जुड़वा भाई राकेश हूँ।
1: क्या जुड़वा भाई राकेश?
2: क्या कहा तुमने, राकेश?
1: लेकिन तुम तो बिल्कुल राजेश नजर आते हो।
3: हाय, यही तो रोना है। सिर्फ हमारी शक्लें ही नहीं बल्कि हम कपड़े भी एक ही तरह से पहनते हैं। हाय,
1: तो फिर कहाँ है तुम्हारा भाई राजेश?
3: हाय, राजेश ने मुझे बताया था कि वो इस वक्त यहीं होगा, मैं उसे एक जरूरी मैसेज देने आया था। हाय।

0: था। अरे मुझे तो पहले ही शक पड़ गया था कि तुम वो नहीं हो। अरे बेटा तभी तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा।
1: जी
0: हाँ,
1: यानी कि आपने कुछ नहीं कहा?
0: नहीं
1: बिल्कुल, आपने तो कुछ कहा ही नहीं।
0: तो तुम्हारा क्या नाम है? राकेश। सुनो भाई, सुनो भाई, तुम जल्दी से घर जाओ और अपने जुड़वा भाई, क्या नाम है यार उसका, राजेश, उसको यहाँ भेज दो।
1: जी राजेश को यहाँ भेजू?
0: हाँ, हाँ, उसकी ये हिम्मत, ये मजाल कि मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अरे देखता हूँ कैसे करता है वो मेरी बेटी से शादी।
1: जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया, मैं उसे अभी जाकर भेजता हूँ।
2: डैडी, आपने उसके जुड़वा भाई की पिटाई कर दी, मैं बर्दाश्त कर गई। अब अगर आपने राजेश को कुछ कहा तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी।
0: अरे बेटी, तुम तो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो, अब मरोगी तो कुछ खाकर ही मरोगी ना। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ।
2: राजेश, तुम आ गए, कहाँ थे तुम?
0: मैं ये हंटर लेकर कब से तुम्हारे इंतजार में हूँ। हंटर खाने के लिए तैयार हो जाओ।
2: नहीं नहीं, ये पहले रसगुल्ले खाएगा।
0: ये पहले हंटर खाएगा?
2: ये रसगुल्ले खाएगा।
0: ये पहले हंटर खाएगा?
2: रसगुल्ले खाएगा।
0: हंटर क्यों बे कभी दे है? अब कभी जाओगे मेरी बेटी से मिलने के लिए?
1: अब किसे मारे जा रहे हैं?
0: किसे मारा हूँ? किसे मार रहा हूँ? अरे अरे राजेश को मार रहा हूँ, और किसे मार रहा हूँ? अरे क्या बदतमीजी है, है? आज तुम मार खा के भी हंसे चले जा रहे हो यार, कमाल की चीज हो।
1: मैं तो आपकी नादानी और नासमझी पर हंस रहा हूँ।
0: मतलब?
1: मतलब कि आप जिसे मार रहे हैं वो राजेश है, पिट रहा है राकेश।
0: राकेश? अरे अरे राकेश तो पहले आया था भाई।
1: जी हुजूर, मैं वही राकेश हूँ जो पहले आया था और जिसे आपने पहले पीटा भी था।
0: और फिर दोबारा पिटने आ गए हो क्यों?
1: मैं तो आपको ये बताने आया था कि राजेश अभी घर पर नहीं है, वो शायद एक घंटे में आएगा।
0: ओपो, आई से गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस।
1: मैं जा रहा हूं।
0: ओह माय गॉड, आई एम फेड अप। राजेश, राकेश, राजेश, राकेश, राकेश, राजेश, राकेश, अब कौन है? जाकर देखो कौन है।
3: नमस्कार।
0: अबे अरे फिर आ गए तुम?
3: जी मैं तो
0: आज से यू गेट आउट। देखो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है, तुम राकेश ही हो ना?
3: जी नहीं सर, आप फिर गलती कर रहे हैं।
0: मतलब
3: ये कि मैं राकेश नहीं हूँ, मैं राजेश हूँ।
2: ओह राजेश, तुम कहाँ थे अब तक?
0: अरे अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा इस राजेश और राकेश के चक्कर में। राजेश, राकेश,
3: मैं सर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं राजेश हूँ, राजेश हूँ। वही बदनसीब राजेश जिसने आपकी बेटी से प्यार किया, जो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। वही बदनसीब राजेश जिसके भाई राकेश को आपने दो दो बार हंटर से पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि उसका भाई राजेश आपकी लड़की से प्यार करता है। अगर अगर आपने पीटना ही है तो शौक से मुझे पीटिए, उठाइए अंतर। अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी यतीम खाने में भर्ती हो जाऊंगा, या मेलिया एक्सप्रेस गाड़ी पर बिना टिकट के सवार होकर छलांग लगा दूंगा, या किसी नदी में कूद पड़ूंगा, या आपकी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा, वही आपके खटारा गाड़ी के नीचे। लेकिन लेकिन आप, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जैसे जल्लाद बाप की बेटी से मैं शादी घर के नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
2: नहीं, ऐसा ना कहो राजेश, ऐसा ना कहो।
0: हाँ, और मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि तुम जैसे बदतमीज लफंगे से शादी करने की बजाय मैं अपनी बेटी को किसी स्विमिंग पूल में धकेल दूंगा।
2: मुझे स्विमिंग आती है डैडी।
0: और यू शट अप। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई राकेश से कर दूंगा।

0: राकेश?
1: हाँ।
0: अरे वही डरपोक राकेश जो दो दो बार आपसे हंटर खाकर और उसने ऊफ तक नहीं की।
1: हाँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि राकेश ने जिस प्यार और जिस हिम्मत से मेरे हंटर खाए हैं वही मेरा दामाद बन सकता है।
2: डैडी,
1: क्या है?
2: डैडी ये अब क्या कर रहे हैं? मैं प्यार राजेश से करूं और शादी राकेश से? कभी नहीं होगा डैडी, कभी नहीं।
0: बिल्कुल नहीं।
1: तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेटी? दोनों का एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही आवाज है और एक ही शक्ल है। देखो बेटी, ये वक्त मत बर्बाद करो। तुम जाओ, तुम जाओ
0: जी।
1: और राकेश को यहाँ भेज दो। उससे कहना पूरे 5 बजे वो यहाँ पहुंच जाए, नहीं तो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
0: पूरे 5 बजे क्यों?
1: मैंने फैसला कर लिया है कि राकेश और मेरी बेटी की रिंग सेरेमनी आज ही 5 बजे हो जाएगी।
0: जी, रिंग सेरेमनी?
1: और हाँ, कहना दोनों अंगूठियां मैं ही बाजार से लाऊंगा। बस वो सिर्फ 5 बजे यहां पहुंच जाए।
0: अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं अब यहां रुककर क्या करूंगा? अलविदा, मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए।
2: नहीं नहीं, मत जाओ राजेश, मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुमसे जुदा।

0: पांच बज गए और ये राकेश का बच्चा अभी तक नहीं आया। क्यों आया?
1: मुझे क्या पता, अगर आप मेरी शादी राजेश से करते तो देखते कि वो कितना पंक्चुअल है।
0: आओ आओ बेटा राकेश, अंदर आ जाओ, तुम्हारी इंतजारी कर रहा था। अरे अरे मेरे लाल, अरे बेटा तुम्हारे पीठ में दर्द वर्द तो नहीं है बेटा? बातें वादे बाद में करेंगे बेटा, पहले रिंग सेरेमनी। ये लो ये अंगूठी, तुम मेरी बेटी की उंगली में पहनाओ। और बेटी चलो इधर आओ, इधर ये अंगूठी। और ये अंगूठी तुम राकेश बेटे के हाथ में पहनाओ। अरे जल्दी करो, नहीं तो वो बदमाश राकेश आ गया ना, तुम एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। हाँ
1: डैडी, डैडी आप क्या कर रहे हैं?
2: लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए।
0: अरे अरे बेटा सुनना क्या है, अरे तुम यही कहना चाहते हो ना कि जिस लड़की से तुम्हारे भाई ने प्यार किया है तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं कहता हूँ पहनाओ एक दूसरे को अंगूठी, मजा वरना वरना देखो मेरा हंटर।
2: हंटर लीजिए पहना दे आंटी।
0: वेरी गुड। अब बेटी बेटी तुम भी अंगूठी पहनाओ, पहनाओ। हाँ ऐसे पहनाओ, मत रो बेटी मत रो, जो तकदीर में होता है वो होके ही रहता है। और बेटा राकेश, लड़कियों को रोते सुना था, तुम क्यों रो रहे हो?
2: मैं तो रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं।
0: खुशी के आंसू? कैसे खुशी के आंसू?
2: जी जी ये खुशी के आंसू हैं।
0: क्या मतलब?
2: मैं राकेश नहीं हूँ, मैं वही बदनसीब राजेश हूँ।
0: क्या?
2: जी मैं तो बताने आया था कि राकेश 5:30 बजे आएगा।
1: राजेश तुम
0: चाहता था कि मेरी बेटी की शादी राकेश से हो। अरे शादी तुमसे हो रही है, मेरी किस्मत।
1: आपको क्या फर्क पड़ता है डैडी?
0: क्यों नहीं पड़ता?
1: एक ही रंग,
2: एक ही रूप,
1: एक ही आवाज।
3: राजेश और राकेश हवा महल में अभी आप वीएम आनंद का लिखा यह प्रहसन सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया श्याम सुंदर प्रसाद ने। यह थी आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म राज 3 के इस गाने के साथ। इसे गाया है जावेद अली ने, गीत और संगीत राशिद खान का है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब सुनते हैं लूडो फिल्म का गाना जुबिन नौटियाल और ऐश किंग की आवाजों में। गीत संदीप श्रीवास्तव और श्लोक लाल का है, संगीत प्रीतम का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
2: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के लिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श

0: में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
2: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तू तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
7: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह

0: ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावे चल रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निदेश श्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक इको निज़ाम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली अलामिये के सभी फैसलों पर मुकर्रर वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें की। इसके साथ साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैन-उल-अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियां जारी रखीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलमी रहनुमा की हैसियत इख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। हॉकी में भारत की मर्दों और खवातीन की टीमों ने चीन के शहर मुखी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं और क्रिकेट में खवातीन के T20 एशिया कप में दुबई में भारत और दिफाई चैंपियन श्रीलंका के दरमियान फाइनल मैच जारी है। उधर नई दिल्ली में 3 मैचों की मर्दों की T20 सीरीज का पहला मैच भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को उजागर करने के साथ इख्तिताम पजीर हुई कि ब्रिक्स के तनवों की बुनियाद पर इसकी शनाख्त तआवुन और तहरीक बरकरार रहेगी और इसकी तरक्की से इंसानियत के मकसद को तआवुन हासिल होता रहे। दो रोजा सरबराह मीटिंग के आज आखिरी दिन अपने अख्तामी कलमात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ब्रिक्स महज कोई मुल्कों का एक ग्रुप नहीं है बल्कि ये मामलात के हल का एक इको निज़ाम है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में जो मुज़ाकरात हुए उनसे इस मकसद को मजीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: सरबराह मीटिंग में मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिये से एक मुश्तरका तसव्वुर और मुस्तकबिल के तआवुन के लिए एक वाज़ह सिमत फराहम होगी। उन्होंने इस जरूरत पर भी जोर दिया कि तमाम फैसलों पर मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर अमल दरामद किया जाए जिससे तमाम तर लोगों को फायदा हासिल हो।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने इफ्तिताही कलमात में कहा था कि ब्रिक्स ग्रुप में मजबूती में इजाफा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है क्योंकि वबाई बीमारियों, आबो हवा से मुतल्लिक कुदरती आफात और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से इस बात का अंदाजा हुआ कि आज की बाहम मरबूत दुनिया में कोई बहरान महज एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: इस 2 रोजा सरबराह मीटिंग में मजबूती, इख्तिरा, तआवुन और पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई और 50 से ज्यादा हिकमत अमली हैसियत के फैसले किए गए। सरबराह मीटिंग में बड़े आलमी और इलाकाई मामलात पर बातचीत की गई जिनमें आलमी हुक्मरानी में इसलाह, बैन-उल-अक़वामी तिजारत, दहशतगर्दी, अमन व सलामती, मस्नूई जहानत, आबो हवा में तब्दीली, हिफ्जान सेहत और पायदार तरक्की के मौजूद शामिल हैं। रहनुमाओं ने वबाई बीमारियों के तनाजुर में तैयारी के मैदान में एक मजबूत तर तआवुन और मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले से खबरदारी के एक मजबूत निज़ाम की हिमायत की। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में ब्रिक्स रहनुमाओं ने ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल इख्तियार करने, मुज़ाकरात व जमहूरियत की हिमायत की और शहरियों व शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की और इसके तई हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई अपने अहद का इजहार किया। उम्मीद है कि नई दिल्ली में एलामिये से इकतसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी, हिफ्जान सेहत, आबो हवा में तब्दीली और आलमी हुक्मरानी के मैदान में ब्रिक्स के तआवुन को फरोग देने का रास्ता हमवार होगा। नीज आलमी जुनूब की आवाज़ को तकवीत मिलेगी। ये सरबराह मीटिंग आलमी सियासत, मईशत और कसीर मुल्की तआवुन के तनाजुर में इंतहाई अहम रही। मगरबी एशिया में सूरत हाल और बैन-उल-अक़वामी अमन व सलामती से मुतालिक मामलात पर बातचीत की वजह से

0: ये वाजे हो गया है कि ब्रिक्स अब मजीद महज इक्तसादी तआवुन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये आलमी सियासी तनाजुर में इसके रोल की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। न्यूज डेस्क से अंकित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से अलग आला सतह की बहुत सी दो तरफा सरगर्मियाँ अंजाम दीं। पिछले 3 दिन में जनाब मोदी ने सरबराहान मुमलकत हुकूमत के साथ 15 मीटिंग्स का इनेकाद किया। इसके अलावा उन्होंने बैन अल-अक़वामी इदारों के आलमी रहनुमाओं और सरबराहान के साथ भी बहुत सी मीटिंगें कीं। इन मीटिंग्स से दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने, बाहमी मफाद के मामलात पर बातचीत करने और इलाकाई और आलमी तरक्यात पर तबादला ख्याल करने का एक मौका फराहम हुआ। वज़ीरे आज़म मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिपीन, जनूबी अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें कीं। वज़ीरे आज़म ने कजाकिस्तान के कासिम जमरत तुर्गेव से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासत, तिजारत, दिफा और सलामती, कनेक्टिविटी, तवानाई, अहम मादनियात, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, तख्लीकी मईशत और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों समेत बहुत से मैदानों में तआवुन का जायजा लिया। वज़ीरे आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी के साथ भी एक मीटिंग का इनेकाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मामलात, खासतौर पर इलाकाई तरक्यात और भारत मिस्र शराकत दारी पर बातचीत की। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ अपनी मीटिंग के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक बहुत से शोबों में अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने का अमल जारी रखेंगे। जनाब मोदी ने फिलीपींस के सदर फेडिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कुदरती आफात की सूरत में मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए इत्तेहाद में शामिल होने के फिलीपींस के फैसले का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के साथ अपनी मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने भारत जनूबी अफ्रीका अहम शराकत दारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया, जिसमें भारत SSCU तजारती समझौता, कानकनी और अहम मादनियात, बुनियादी ढांचा, खुराक की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा, उभरती हुई टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी शामिल हैं। बुरुंडी के सदर इवारिस्ते एनदीए शीमे के साथ अपनी मुलाकात में जनाब मोदी ने अफ्रीकी यूनियन की सदर नशीनी इख्तियार करने पर बुरुंडी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने नाइजीरिया के नायब सदर काशिम सिटेमा से भी मुलाकात की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और भारत और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी तआवुन को मजीद आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर उज़्बेकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर इक्तसादियात व मालियात जमशेद कुचकरोस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने दो तरफा इकतसादी और मालियाती तआवुन को मजबूत बनाने पर बातचीत की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने आज कहा है कि नई दिल्ली अलामिया में रवायती, तकमीली और लाजमी दवाओं TCIM की निशानदेही रवायती दवाओं के शोबे में आलमी तआवुन को मुस्तहकम बनाने की जानिब अहम कदम है। वजीर मौसूफ ने एक बयान में खासतौर पर कहा है कि ब्रिक्स सेहत ट्रैक के तहत TCIM से मुतालिक ब्रिक्स का माहरीन का मुजवजा वर्किंग ग्रुप रुकन मुल्कों को एक बामानी प्लेटफार्म फराहम करेगा, जिस पर एक दूसरे को मालूम फराहम की जा सकेगी और तहकीक और शवाहद पर मबनी जदीद तरीन नजरियात को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। दाखिली उमूर और बाहमी और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज भारत की जवाहरात और जेवरात की सना से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाए कि लैब में तैयार किए गए हीरों का पूरा इको निज़ाम और मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला भारत के ही हाथों में पुख्तगी से बरकरार रहे। मुंबई में जवाहरात और जेवरात के 52वें अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरों की वजह से अब इसकी तजारत में तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरों की मार्केट उम्मीद है कि अपनी गुंजाइश के एतबार से मौजूदा मार्केट का तकरीबन 50 गुना हो जाएगी। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा मौका करार दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत के पास बुनियादी ढांचा, सलाहियतें, एहसास है और कारोबारी जज्बा और सलाहियत मौजूद है, जो इस मौके से फायदा उठाने के लिए दरकार है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि विज्ञान केंद्रों और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसानों से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के मसाइल के हल के लिए काबिले एतमाद मराकज में तब्दील करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि किसानों को दुरुस्त साइंसी मशवरे मिलें और उन्हें मकामी सतह पर नई टेक्नोलॉजीज तक रसाई हासिल हो। भारत गुजरात के शहर गांधीनगर में सर्कुलर मईशत के फोरम

0: 2026 की मेजबानी करेगा। फोरम का इनेकाद इस महीने की 15 से 18 तारीख तक किया जाएगा। फोरम का मौजू है सर्कुलर मईशत, अवाम और खुशहाली के लिए तब्दीली, माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ मंगल को मुश्तरक तौर पर इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। बिहार के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद और बचाव की कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। बिहार में 15 जिला में 48 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अब तक 1251 इज्तिमाई किचन के जरिए 88 लाख से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया जा रहा है। 13 इमदादी कैंपों में 12,000 से ज्यादा अफराद को खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के वजीर रत्न सदा ने बताया कि सैलाब से मुतासर हर खानदान को 7,000 रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। तकरीबन 3,68,000 पॉलीथीन शीट्स, 65,400 खुश्क राशन के पैकेट्स और 1,400 तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। मुतासर इलाकों में 1,688 कश्तियां काम कर रही हैं। मवेशियों के चारे की 12,844 क्विंटल से ज्यादा मकदार भी फराहम की गई है। इमदादी और बचाव की कार्रवाइयों में एसडीआरएफ की 27 और एनडीआरएफ की 10 टीमें मसरूफ अमल हैं। नदियों की सतह पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुल्तानगंज में गंगा नदी की आबी सतह कम हो रही है। कोसी, बूढ़ी गंडक, गंगा, पुनपुन, बागमती और घाघरा नदियां कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना से निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी राजस्थान, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी कल तेज बारिश का इम्कान है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडोनेशिया में खराब मौसम के सबब आज जावा समुद्र में एक जहाज के उलट जाने से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें 240 अफराद सवार थे। तकरीबन 130 मुसाफिर और अमले के अरकान अब भी लापता हैं। बचाव के काम में मसरूफ इंडोनेशियाई अहलकार ने बताया कि अब तक 107 अफराद को बचाया जा चुका है। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जब यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत ने बहीरह अहमर के साहली इलाकों में हौसियों की हालिया पेशकदमी को एक तशवीशनाक और तकलीफ देह सूरत हाल से ताबीर किया है। हॉकी में मर्दों और खवातीन की भारतीय टीमों ने आज चीन के मोकी शहर में जूनियर एशिया कप के खिताब जीत लिए हैं। मर्दों की भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में आज जनूबी कोरिया को 4-1 से हराकर अपने खिताब का दिफा किया। इस जीत के साथ मर्दों की भारतीय टीम टूर्नामेंट की तारीख में लगातार 4 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इससे कबल टीम 2015, 2023 और 2024 में भी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। भारतीय खातून टीम ने भी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से मैच का वाहिद गोल साइका चंद्रकांत माने 17वें मिनट में किया। खवातीन की क्रिकेट में दुबई में जारी खवातीन टी20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने दफाई चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ अब से कुछ देर पहले तक 18 ओवर्स में 3 गेंद पर 3 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। इससे कबल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देने से पहले अपने तीनों ग्रुप में जीतकर फाइनल में पहुंची है। मर्दों की क्रिकेट में 3 मैचों की सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 157 रन का निशाना रखा है। अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए। इससे कबल भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जगह तजुर्बाकार संजू सैमसन को तरजीह दी है, जबकि चोट के बायस जसप्रीत बुमराह ने टीम में वापसी की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक ही को निज़ाम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली एलामिया के सभी फैसलों पर मुकर्रा वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। वज़ीरे आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें की। इसके साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियां जारी रखीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलमी रहनुमा की हैसियत अख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। और हॉकी में भारत की मर्दों और खवातीन की टीमों ने चीन के शहर मोकी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: दोस्तों, ये गाना फिल्म परदेश का था और परदेश महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। और मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतुस थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है एंड आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है।

0: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
1: दार्जिलिंग को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हु त्यो त्यही दार्जिलिङ मा सिकेको। अन्त हाम्रो नेपाली भाइ बहिन को बटै सिकेको। अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
0: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेश में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेश के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेश ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोक और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी।

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसी विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा। फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी करगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेस में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां मैं। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में, जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओं, ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

छाया गीत में आज मैं लेकर आया हूं ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष आवाज में, दूसरा महिला आवाज में। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। अंधेरा, घना अंधेरा, आंसू, सर्द आंसू, तन्हाई, बेपनाह तन्हाई, एक सजा है तन्हाई, एक जुल्म, एक मुश्किल।

अफसोस के नगमे, उदास नगमे। क्यों अच्छे लगते हैं सबको ये उदास नगमे? क्यों मुकेश की उदास आवाज हमारी तन्हाइयों की साथी है? क्यों हम तन्हाई में थाम लेना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज का दामन? दो उदास नगमे, दो उदास मौसम।

एक चेहरा, एक मिजाज, एक शख्सियत कैसे बयां करें कुछ अल्फाज में। शब्दों के मायने छोटे लगने लगते हैं और हर बार हमें लगता है पूरी तरह हम नहीं कह पा रहे अपनी बात।

दुनिया की दो अलग अलग छोर, इन अलग अलग हिस्सों में पले लोग बने होते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी अजीब बात है, कहते हैं जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं और बहुत खुशनुमा इत्तेफाक होते हैं।

अच्छा या गीत में आज थे दो संस्करणों वाले गाने। इन गानों को हमने किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: दूल्हा दुल्हन इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: चंदन सबदन
2: चंचल चितवन
0: सरस्वती चंद्र इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: कभी कभी मेरे दिल में
2: ख्याल आता है
0: कभी कभी साहिर लुधियानवी खयाम आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को नमस्कार

0: कृत कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला और गड्डी ले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ढलती जाए रात

0: अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट

0: देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर

इसके बाद हिंदी में आई एक नई संवेदना, महादेवी वर्मा। उनकी लेखनी में करुणा थी, संवेदना थी और स्त्री मन की गहरी अनुभूति। महादेवी वर्मा का एक गीत फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल था, जिसे बड़े ही सुंदर ढंग से छाया गांगुली ने स्वर दिया और जयदेव का संगीत था।

मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र और समाज की चेतना को स्वर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने ओज भरा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने हिंदी कविता को अलग अलग रंग दिए और इसीलिए हिंदी साहित्य कोई एक रंग की तस्वीर नहीं, ये तो रंगों से भरी एक विशाल चित्रशाला है। यहाँ आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, जिसे आशा भोसले ने गाया है।

आज हिंदी भारत की सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैको जैसे अन्य कई देशों में भारतीय मूल के समुदायों के बीच हिंदी की अपनी अहम उपस्थिति है। डिजिटल युग ने तो हिंदी को एक नया आकाश दे दिया। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, हिंदी के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में देखी जा रही है। हिंदी किताबों के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी सांस लेती है। फिल्मी गीतों ने हिंदी के शब्दों को उन श्रोताओं तक भी पहुंचाया जिन्होंने शायद कभी कविता की किताब भी न खोली हो। और यहाँ हमें याद आते हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविता मंच से लेकर सिनेमा तक पहुंची, वो हैं बाल कवि वैरागी। उनके साहित्य में मालवा की मिट्टी की खुशबू थी, लोक जीवन की सहजता थी और शब्दों में आत्मीय मिठास। फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्होंने लिखा ये गीत।

0: गीत केवल एक फिल्मी गीत बनकर नहीं रह गया दोस्तों, उसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति का ऐसा सम्मोहन था कि गीत सुनते ही लगता है जैसे रेगिस्तान की रात में चांद उतर आया हो। बाल कवि बैरागी ने दो बूंद पानी, वीर छत्रसाल, क्षितिज, रानी और लालपरी, जादू टोना और अनकही जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। अनकही में उनका गीत मुझको भी राधा बना ले नंदलाल बहुत ही पसंद किया गया। हर दौर में कवियों का कविता के साथ साथ गीतकारी का सफर चलता रहता है और कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। जाने माने लेखक, फिल्म समीक्षक, गीतकार और लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने अपने विचार साझा किए हैं।
1: जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हिंदी में हजारों किताबें आई। थोड़ा सा अगर बढ़ के हम 25 से 30 साल का दायरा करें तो मैंने कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं किताबें। उसमें अगर हम नॉन फिक्शन या कथेतर के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी, जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है, जो किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर।
0: जी जी।
1: दूसरी किताब शिखर पाठक की दास्ताने हिमालय मुझे लगती है भाषा के स्तर पर भी, और हिमालय को समझने के लिए उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में।
0: जी।
1: और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
0: क्या बात है।
1: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टरपीसेस मुझे लगते हैं

0: एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ढंग का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उसमें लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर, तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादंबरी, दूसरा है अनामिका जी का त्रिनधरी ओठ, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मातृसत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का अर्धसत्य बहुत समझ में आती है, इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो, और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से एक पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की, आलो अंधारी, दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की उड़ान, जिसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेकर, राजनीतिक पक्षों लेकर बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का। और वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैलांचल, गोदान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वेदिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की डायरी और संस्मरणों की किताब है धुन से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह, भाष्य की तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाएं तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो तीन वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेन ज़ी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की टीका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए, और सारी किताबें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए
1: जी।
0: और राहुल जी की किताब वोल्गा से गंगा, तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बुलती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की,
1: अच्छी
0: हिंदी कैसे सीखें, पढ़ें, समझें, ये बातें। जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत